0: जानकारी मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

दुशा सभी सुनने वालों को नमस्कार। ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए एक नया मेकानिज्म लागू करने पर विचार कर रही है। आईसीटी मंत्रालय इस संबंध में जल्द ही परामर्श शुरू करेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य फर्जी जानकारी, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हानिकारक सामग्री पर रोक लगाना है। कई महीनों तक चले देशव्यापी परामर्श के बाद विजन 2050 पहल का नागरिक संवाद चरण प्लेंदी पापाई में समाप्त हो गया। 1200 से अधिक लोगों ने

0: देश के भविष्य को लेकर अपने विचार और सुझाव साझा किए। मंत्री ज्योति जितन ने नागरिकों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। अब इन सुझावों के आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए मॉरिशस की विकास कार्य योजना तैयार की जाएगी। इंटरमीडिएट कोर्ट के फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने तिजोरी मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उन पर कानूनी सीमा से अधिक नकद भुगतान प्राप्त करने से जुड़े 23 आरोप थे। बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए जांच में हस्तक्षेप और अत्यधिक देरी का आरोप लगाया था। मॉरिशस में किशोरावस्था में गर्भधारण के मामलों में प्रभावित युवतियों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके तहत परामर्श, घर पर निगरानी और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जाता है। पोर्ट लुई स्थित एक आश्रय केंद्र मनोवैज्ञानिक सहायता, समूह चिकित्सा तथा पढ़ाई दोबारा शुरू करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहयोग देता है। वहीं 2025 से स्कूलों में यौन शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि प्रजनन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े और कम उम्र में गर्भधारण को रोका जा सके। और विदेश में ईरान और इसराइल का कहना है कि वे हमलों को रोकेंगे, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि युद्ध विराम का फिर से उल्लंघन हुआ तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। दक्षिण पूर्व की ओर धीरे धीरे एंटीसाइक्लोन दूर होता जा रहा है। कभी कभार पूर्व से पाए जा रहे बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह ऊंचाइयों पर हल्की बारिश होगी, अन्य इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। दिन के दौरान धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 21 से 24, तटवर्ती इलाकों पर 26 से 29 डिग्री सेल्सियस। रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और ऊंचाइयों पर कभी कभार वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान ऊंचाइयों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं है। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। मोहतरम मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबल खैर प्रोग्राम में आपका हम खैर मकदम करते हैं। सामीन, आज हम इस प्रोग्राम में खराज अकीदत पेश कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जो गुज़िश्ता सदी के सबसे बड़े मुबल्लिग़ आज़म, मुबल्लिग़ इस्लाम हुए। एक ऐसी शख्सियत को जो अपनी ज़ात में अंजुमन रहे, जय्यद आलिम दीन, अज़ीम ख़तीब, अदीब, मुकर्रर, मुबल्लिग़। आप 20वीं सदी के रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदा मौजज़ात में से एक मौजज़ा रहे। आप हैं पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, रहनुमाए तरीक़त, खलीफा आला हज़रत, मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह अलैहि।

0: एक ईमान अफरोज बयान भी समाप्त कर सकेंगे। बाज़ाब्ता मजलिस का आगाज कलाम पाक की चंद आयत मुबारक की तिलावत से किया जा रहा है। समाप्त करके अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

بحق إن كنت قلته فقد علمت وإذ قال

بحق إن كنت قلته فقد علمته.

0: बिलाशुबा सामीन मुबल्लिग इस्लाम मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अपने आप में एक अंजुमन बल्कि एक यूनिवर्सिटी एक अदारा थे और उलमा के नज़दीक जब भी आप मुबल्लिग इस्लाम की ज़िंदगी की खिदमत का मुताला करें नया गोशा नए पहलू सामने आते हैं। हमने जामा मस्जिद के ख़तीब आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादिर रिज़वी दामत बरकातुमालिया से इस बारे में बात की, आपने मुबल्लिग इस्लाम की ज़िंदगी के नए गोशों के हवाले से बात की, समाप्त कीजिए।
1: अम्मा बाद

है अत्तकर्रुब इलल्लाह, अत्तकर्रुब करीब होना, टू बी क्लोज नज़दीक होना, और विलायत की डिफिनेशन या विलायत की रियालिटी है, हकीकत विलायत है अत्तकर्रुब इलल्लाह व इला रसूले, टू बी क्लोज टू अल्लाह अलमाइटी एंड हिज मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से करीब होना और अल्लाह के हबीब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होना, ये हद विलायत है, ये माहियत विलायत है, ये तारीफ़ विलायत है और ये हकीकत विलायत है। फिर विलायत की दो बुनियादी अकसाम हैं, अल विलायतुल आम्मा, द जनरल क्लोजनेस, द जनरल नियरनेस, और नंबर दो अल विलायतुल खासा, द स्पेशल क्लोजनेस एंड द स्पेशल नियरनेस। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत परवाने शमे रिसालत मुय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जत काहिरा आलिया गालिया फायका रायका शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन अशाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल मन्नान ने फतावा रज़विया शरीफ में इन दो विलायत की अकसाम को पूरी डिटेल से डिस्कस किया है। सो आपने फरमाया कि विलायत आम्मा हर मोमिन को हासिल है, विलायत आम्मा की जहत से हर मोमिन वली है, जैसे कि इरशाद बारी है अल्लाह वलीयुल लज़ीना आमनु, कि अल्लाह वली है अहले ईमान का, साहिबान ईमान का। और फरमाया कि विलायत खासा ये फकत औलिया को हासिल है, अहलुल्लाह को हासिल है। इस माना में फरमाया कि अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के औलिया पर ना खौफ होता है न डर होता है ना वो गमगीन होंगे। तो यहाँ औलिया वो हैं जिनको अल्लाह की बारगाह से विलायत खासा हासिल है, जिनको अल्लाह की बारगाह से विलायत खासा हासिल है। फिर कुरान करीम फुरकान हमीद की मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ विलायत को डिस्कस किया गया है तो वहाँ फैज़ान विलायत, द ब्लेसिंग ऑफ अल विलाया को भी डिस्कस किया गया है। मैंने आपके सामने सूरह इख़लास की पहली आयत की तिलावत का इफ्तिखार हासिल किया। अल्लामा राज़ी अलैहि रहमतुल बारी ने अपनी मशहूर ज़माना तफसीर तफसीर अल कबीर में सूरह इख़लास के मुख्तलिफ नाम मेंशन किए, मुख्तलिफ नाम बताए। उन मुख्तलिफ नामों में से एक नाम सूरतुल विलाया है, सूरतुल विलाया, विलायत की सूरत। तो सूरह इख़लास की तजल्ली, उसका रिफ्लेक्शन जब बंदा मोमिन पर होता है तो वो अल्लाह के औलिया में से हो जाता है। मोमिन था, विलायत आम्मा तो उसे पहले से हासिल थी,

लेकिन अब सूरह इखलास से उससे, सूरह इखलास के फैजान से, उसकी बरकत और ब्लेसिंग से उसको विलायत खासा भी हासिल हो जाती है। चुनाचे अल्लामा राजी अलैहि रहमतुल बारी फरमाते हैं कि सूरह इखलास का नाम सूरतुल विलाया इसलिए है, लिअन्न मन क़रअहा सारा मिन औलिया इल्लाह, कि जो मोमिन सूरह इखलास पढ़ता है वो अल्लाह के औलिया में से हो जाता है। किन औलिया में से? जिनके ताल्लुक से अल्लाह ने फरमाया अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के औलिया पर ना खौफ है ना वो गमगीन होंगे। तो सूरह इखलास के फैजान से, उसकी बरकत से, उसकी ब्लेसिंग से बंदे मोमिन अल्लाह के औलिया में से हो जाता है, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल विलाया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अथर से, हुजूर की हयात ज़ाहिरा फिज़िकल टाइम से लेकर आज तक हर मोमिन को किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी लेवल में सूरह इखलास का फैज़ान विलायत नसीब हुआ है। उनमें सर फहरस्त सहाबे किराम हैं, अहले बैत एज़ाम है, फिर ताबईन, अतबाए ताबईन है, आइम्मा सालिहीन, आइम्मा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन है, हुज़ूर गौसुल बरा है, ख्वाजा ख्वाजगा है, मखदूमुल औलिया है, हुज़ूर दाता अली हजवेरी है, हुज़ूर फरीदुद्दीन गंज शकर है, दीगर औलिया, हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगा है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है, जिनको उनके दर्जे के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से सूरह इखलास का फैज़ान मिला है, और उन्होंने सूरह इखलास की तौज़ी, उसकी तशरीह, उसके बयान और तबयीन से जहां उम्मत मुस्लिमा को फैज़याब किया, सूरह इखलास की तफसीर, तौज़ी, बयान और तबयीन की सूरत में आज जहां एक इल्मी ज़खीरा उम्मत मुस्लिमा के पास इन आइम्मा मुहक्किकीन का मौजूद है, तो वहां उसका फैज़ान सूरह इखलास का, वो भी इन सालहीन की तवस्सुल से उम्मत में तकसीम हो रहा है और फैल रहा है। मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अश्शाब्दुल अलीम सिद्दीकी नवरल्लाहु मरकदहू ने जहाँ अपने वालिद गिरामी, अपने भाई और अपने सिलसिले के बुज़ुर्गों से फैज़ हासिल किया, तो वहाँ आपने बतौर ख़ास आला हजरत से रूहानी फैज़, रूहानी फिक्री हुब्बी और इश्की तरबियत हासिल की। चुनाचे अल्लाह जल्ल मजदहू ने आपको विलायत के मुख्तलिफ मुकामात पर, मदारिज पर फायज करते करते दर्जाए कमाल तक पहुँचाया। आप जहाँ एक आलिम हैं, जहाँ एक मुबल्लिग हैं, तो वहाँ एक वली कामिल भी है, वहाँ एक सूफी कामिल भी है। इल्म तसव्वुफ को इल्म इरफान भी कहते हैं। आला हजरत की बारगाह से जहाँ मुबल्लिग आज़म को शरीयत का फैज़ान मिला, तो वहाँ तरीक़त, मारिफत और हकीकत की बरकतें भी।

बारगाह आला हजरत से अता हुई और आपको खुद ये एतराफ था कि आला हजरत नवर अल्लाह मरकदहू का दिल वो है जहां चश्मे हकीकत, चश्मे मारिफत, चश्मे शरीयत और चश्मे तरीकत बयक वक्त जारी और सारी है। उस चश्मे विलायत से जहां एक दुनिया फैज़याब हुई वहां मुबल्लिग़ आज़म भी फैज़याब हुए। चुनांचे आप खुद फरमाते हैं कि कसीमे जामे इरफ़ान शाह अहमद रज़ा तुम हो, कि आला हजरत जामे इरफ़ान के मारिफत के जाम के तकसीम करने वाले हैं, उसके कसीम हैं, बांटने वाले हैं। सो अल्लाह जल्ल मद्दहू ने उस बारगाह से आपको इल्म इरफ़ान, इल्म तसव्वुफ़ में कमाल अता किया। चुनाचे आपकी मारूफ ज़माना किताब किताब तसव्वुफ़, तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ मज़ामीन और मसाइल पर मौजूद है, जिसमें आपने तसव्वुफ़ और विलायत के मुख्तलिफ मबाहिस को डिस्कस किया। जब आप की ज़िंदगी का मुताला किया जाता है, आपकी लाइफ स्टडी से यह वाज़ेह होता है कि अल्लाह जल्ल मजहू ने आपको अपने अवलियाए कामिलीन में, अवलियाए अकमलीन में शामिल किया है और आपको सूरह इखलास का ख़ास फैज़ान बतवस्सुल इमाम अहले सुन्नत अता किया गया है। सूरह इखलास की पहली आयत में अल्लाह जल्ल मजहू ने फरमाया, कुल महबूब कह दो, हुवल्लाह हुवल्लाह अहद एक है। हुवल्लाह अहद से पहले अल्लाह जल्ल मजहू ने फरमाया, कुल महबूब तुम कह दो। कुल ये तस्किराए महबूब है और ये तस्किराए रिसालत है। अल्लाह अहद हुवल्लाहु अहद ये फिर तज़किरा तौहीद है। मैंने बताया था कि हकीकत विलायत है अल्लाह से करीब होना और अल्लाह के महबूब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा से करीब होना। तो कुल हुवल्लाहु अहद से पहले अल्लाह जल्ल मजनू ने फरमाया, कुल महबूब तुम कह दो। कुल ये तज़किरा महबूब है और ये तज़किरा रिसालत है। अल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद ये फिर तज़किरा तौहीद है। मैंने बताया था कि हकीकत विलायत है अल्लाह से करीब होना और अल्लाह के महबूब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा से करीब होना। तो कुल हुवल्लाहु अहद इस पहली आयत में जहाँ तकर्रुब इलल्लाह है वहाँ तकर्रुब इलल मुस्तफ़ा भी है। इस पहली आयत में हकीकत विलायत और मदारिज विलायत को अल्लाह जल्ल मजहू ने बयान किया है। चुनाचे औलिया के चार दर्जे हैं, अल्लाह पाक ने वो चारों दर्जे और वो चारों मदारिज सूरह अल-इख़लास में बयान किए हैं। उनमें सबसे ऊंचा दर्जा और सबसे ऊंचा मुकाम वालहीन का है। वालहीन ये औलिया का वो तबका है जो हर वक्त अल्लाह के अनवार और अल्लाह के जल्वों में, अल्लाह की तजल्लियात में फना होते हैं, गुम होते हैं। तजल्लियात बारी के समंदर में गौतज़न होते हैं। इनकी निगाह दाएं बाएं सामने जहां भी होती है तो इनके सामने जलवा हक होता है।

इनके सामने जलवा नूर होता है। अल्लाह जल्ल मजहू ने मुबल्लिग आज़म को औलिया वालहीन का ये कामिल दर्जा अता किया। इसलिए कि जो रसूलुल्लाह के दामन को थाम लेता है, रसूलुल्लाह को अपना वसीला बनाता है, तो फिर रसूलुल्लाह उसको बारगाह मौला तक पहुंचा देते हैं। इसलिए आला हजरत ने फरमाया कि मोमिन उनका क्या हुआ कि अल्लाह ही का हो गया, और काफिर उनसे क्या फिरा कि अल्लाह ही से फिर गया। उनका यानी मुस्तफा का होना हकीकत में अल्लाह का होना है, और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ना ये दर हकीकत अल्लाह से और अल्लाह की बारगाह से मुंह मोड़ना है। तो अल्लाह की विलायत विलायत मुस्तफा से जुदा नहीं है, और मुस्तफा की विलायत अल्लाह की विलायत से अलग नहीं है। मुबल्लिग आज़म को जहाँ अल्लाह की विलायत हासिल थी, वहाँ विलायत मुस्तफ़विया भी हासिल थी। इसलिए आदत फरमाते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फिर औलिया में एक तबका होता है जिसको कहते हैं तबका वासिलीन। वसल का मतलब होता है मिलना, वासिल मिलने वाला। तो तबका वासिलीन ये औलिया वो हैं जो बारगाह मुस्तफ़ा से हर वक्त जुड़े होते हैं, अल्लाह की बारगाह से मिले होते हैं। जैसे किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा कि उधर अल्लाह से वासिल, इधर मखलूक में शामिल, खवास इस बरज़ख़े कुबरा को है हरफ़े मुशद्दत का। जैसे हुजूर की शान है अल्लाह से वासिल है, मखलूक में शामिल है, फिर वली की शान ये होती है कि वहाँ मुस्तफ़ा से शामिल वासिल है, यहाँ मखलूक में शामिल है। मुस्तफ़ा अल्लाह से वासिल है, अल्लाह से फैज़ लेते हैं, मखलूक में शामिल, उन्हें वो फैज़ अता करते हैं। और उम्मत का औलिया का तबका वासिलीन बारगाह है मुस्तफ़ा से वासिल है, वहाँ से फैज़ लेते हैं और उम्मत में उस फैज़ान को ये औलिया तकसीम करते हैं। यही हाल मुबल्लिग आज़म नंबर अल्लाह मरकदहू का हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया में जा बजा फैज़ान विलायत को, फैज़ान मारिफत को अदब मुस्तफ़ा की शक्ल में, इश्क मुस्तफ़ा की शक्ल में, और हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ की जहत की शक्ल में, हुजूर अलैहिस्सलाम से इर्तिबात कनेक्शन और लिंक की शक्ल में आम किया है। पूरी दुनिया में दरसगाहें कायम की, मसाजिद बनाए, यतीम खाने बनाए, बेवा खाने बनाए, इल्मी मराकिस बनाए, वो सब आपकी विलायत कामिल पर और विलायत कामिला पर, विलायत खासा पर शाहिद हैं और आदिल हैं। आपने जिंदगी इस तड़प में गुजारी जो आला हजरत की बारगाह से अता हुआ कि करूं तेरे नाम पे जान फेदा, न बस एक जान दो जहां, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करो जहां नहीं। इस तड़प में जिंदगी गुजार कर मदीना मुनव्वरा में इस ख्याल से मुकीम हो जाते हैं कि यहीं पे मौत आए। सो ऐसा ही हुआ, और जब यार के फिराक से तंग आ गए और अब फिराक बर्दाश्त न हुआ तो फरमाया अली में खस्ता जा, तंग आ गया दर्द हिजरा से, इलाही कब वो दिन आए कि मेहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मौत को मोहम्मद के मेहमान होने का नाम दिया है।

0: और इसमें बता दिया कि मोमिन की मौत मुस्तफ़ा का मेहमान होना है, बस यही है मोमिन की मौत की हकीकत। जैसे डॉक्टर इकबाल ने फरमाया कि मौत को समझा गाफिल ने इख्तिताम ज़िंदगी है, ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। तो अल्लाह पाक ने जन्नतुल बकी में उनको मदफन अता किया, जो दलील है उनके कारनामों के इफ्तिखार की और कबूल होने की। अल्लाह जल्ला मजदहू उनके मरकद मुबारक पर हमारे तमाम उलमा, असातिज़ा, मुरब्बीहीन, मशाइख के मराकद और मज़ारात पर अपने रहमत और रिज़वान की बारिशों का नुज़ूल फरमाए। मैं आला हजरत के कलाम के इस शेर पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमाए और हमें ज़िंदगी का इफ्तिखार अता करे, आखिरत का इफ्तिखार अता करे। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वमा अलैना इल्ला बलाग।
1: सामीन, मुफ्ती इसहाक कादिर रिज़वी दामद बरकातुहुमालिया की ज़बानी आप मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक कुछ नई बातें समाअत कर रहे थे। रब्बे कायनात हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

दुनिया में लाखों करोड़ों बेतादाद इंसान पैदा होते हैं और मरते हैं, लेकिन बाज लोगों की पैदाइश ऐसी पैदाइश होती है कि जो अपने अंदर कोई ना कोई तारीखी असर रखती है। आम इंसानों की तारीख में और जिंदगी में जब ऐसे हालात पेश आते हैं तो उनकी पैदाइश की तारीख को यादगार के तौर पर मनाया जाता है। किस लिए? ताकि उनका कैरेक्टर, उनके आमाल, उनकी वो तारीखी जिंदगी कि जिससे उन्होंने दुनिया के अंदर कोई बेहतरीन खिदमत अंजाम दी, कोई बेहतरीन काम अंजाम दिया, उसका नमूना लोगों के सामने पेश किया जाए और दूसरे भी उस नमूने को देखकर उनके कदम ब कदम चलने की कोशिश करें। आम तौर से बगैर कैद मजहब और मिल्लत आप देखेंगे कि दुनिया का ये एक आम दस्तूर है। इसलिए कि फितरत इंसानी का तकाजा कि अगर वो किसी दिन बीमार हुआ है और सख्त बीमारी से उसे मुकाबला करना पड़ा तो जब साल पूरा होगा और वही दिन वही तारीख आएगी तो उसको खामखा ख्याल पैदा होता है कि ओहो इस दिन मैं बीमार हुआ था और इस दिन मुझे ये तकलीफ पहुंची थी। इसी तरह अगर कोई राहत होती है, कोई आराम मिलता है, तो जब वो तारीख आती है, वो दिन आता है, वो वक्त आता है, साइकोलॉजिकली नफसियाती उसूल से इंसान के कल्ब के ऊपर एक असर पैदा होता है कि आज वो तारीख है जब मैंने दुकान खोली थी, आज वो तारीख है जब मुझको इतना मुनाफा हुआ था, आज वो तारीख है जब किसी को सल्तनत मिली थी, आज वो तारीख है जब फलाना मुल्क हमने फतह किया था, वगैरह वगैरह। एक नफसियाती उसूल से इंसान की फितरत का ये तकाजा। तो जरा गौर कीजिए कि जब मामूली मामूली वाकया के पैदा होने और जाहिर होने की तारीख फितरती तौर पर हमारे नफसियात के ऊपर असर डालने वाली हुआ करती तो ऐसे वाकया जो दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर देने वाले हों, आलम की काया को पलट देने वाले हों, दुनिया की हस्ती के अंदर ऐसी जबरदस्त कैफियत पैदा कर देने वाले हों कि जिसकी कोई नजीर तारीख के अंदर न मिलती हो, कोई मिसाल तारीख में न मिलती हो, जब वो वाकया पेश आए तो उस वक्त सोचो कि क्यों न फितरती इंसानी पर एक असर पैदा। मैं कहता हूं और यकीनन कहता हूं फलसफियाना जुबान में नहीं, आम इंसानों की

0: के एतबार से अर्ज करता हूं कि उसमें उसके एतबार से यकीनन इंसान ऐसी हालत को महसूस करता है और अपने दिल में ख्याल लाता है कि आज वो तारीख है जब आलम के अंदर ये इंकलाब पैदा हुआ। मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व असहाबी व बारक वसल्लम की तशरीफ आवरी और दुनिया में जाहिर होना क्या कोई मामूली वाकया है? कोई मामूली सी पैदाइश है जैसे और इंसान दुनिया के पैदा हुआ करते हैं इसी तरह से उनका भी पैदा होना था? अगर उनकी जिंदगी एक आम जिंदगी होती, अगर वो भी दुनिया के आम इंसानों की तरह से पैदा हुए दुनिया में जिंदगी गुजारते तो यकीनन उनका पैदा होना भी एक मामूली इंसान के पैदा होने की तरह से था, कोई खास बात नहीं। उनके अम्मा और अब्बा और उनके दादा और उनके परदादा उनके पैदा होने की खुशी मना लेते, सालगिरह कर लेते जैसे आप अपनी औलाद की कर लिया करते। लेकिन ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर वो जबरदस्त काम अंजाम दिया है कि जिसको उन पर ईमान लाने वाले उनके मानने वाले और उनके चाहने वाले ही नहीं बल्कि जो उनके दुश्मन है वो भी पहचानते हैं और मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम की कायम रखी है और दुनिया के अंदर एक बड़ा जबरदस्त इंकलाब है जो पैदा फरमा दिया।
1: मुबल्लिग़ इस्लाम की शख्सियत को जब हम गौर से देखते हैं तो उनके कालिब में एक बेकरार आशिक रसूल की रूह मचलती हुई नज़र आती है। हकीकत यह है कि इनके तमाम कारनामे इसी मोहब्बत रसूल की जलवा सामानिया हैं। हुजूर आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुबल्लिग़ इस्लाम इस कदर गर्क थे कि शहरे यारे मदीना और मदीने पाक ही को अपना मकसद बना लिया था। कायद अहल सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हज़रत मुबल्लिग़ इस्लाम बीमार थे, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना तकलीफ दे था, इसी बीमारी में रमज़ान का महीना भी जलवा अफरोज हो गया। चूँकि कराची में हमारी रिहाइश गाह ऊपरी मंजिल पर वाक़े है और मस्जिद तक जाने का ज़रिया सीढ़ियाँ, वालिद माजिद ने अपनी तकलीफ़ के पेश नज़र मुझे हुक्म फरमाया, इस मरतबा नमाज तरावी में कुरान मजीद मुझे तुम यहीं घर पर ही सुनाओगे। चुनांचे नशिस्त गाह में ही नमाज तरावी का इंतज़ाम किया गया, चंद लोग भी नमाज में शरीक हो जाते। वालिद माजिद कभी बैठकर और कभी खड़े होकर नमाज पढ़ते, नमाज से फरागत के बाद मसाइल बयान फरमाते, कोई आयत की तफसीर दरियाफ्त करता और कोई नाते पाक सुनाता। एक रोज़ दौरान गुफ्तगू एक साहब कहने लगे कि हुजूर आज से काफ़ी साल पहले दौरान तकरीर आपसे एक शेर सुना था जो मुझे बड़ा पसंद है, मैं अक्सर उसे पढ़ता रहता हूँ। वालिद माजिद ने फरमाया कौन सा शेर? उन साहब ने अर्ज़ किया मदीने जाऊँ फिर आऊँ मदीने फिर जाऊँ तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। फिर वालिद माजिद ने फरमाया कि अब मैं इस शेर को तरमीम के साथ इस तरह पढ़ता हूँ मदीने जाके न आऊँ वहीं पे रह जाऊँ दरे हबीब पे किस्सा तमाम हो जाए।

मुबल्लिग़ इस्लाम के इश्क़ रिसालत की आग उस वक्त तेज़ से तेज़ तर हो गई जब इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से वाबस्तगी हुई। गोया पैकर इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की पाकीज़ा और निगाह फैज़ असर ने सोने पे सुहागे का काम किया। उस शाख़ की दुनिया ही अजीब होती है, उनके अंदाज निराले होते हैं। इश्क़ का रंग चढ़ जाने के बाद फिर उन पर कोई दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। आखिर में तकालीफ और सजाएं देने की नित नए तरीके ईजाद करके उनके इश्क व वफा का सख्त तरीन इम्तहान भी लिया जाता रहा, मगर उनका ईमान चीख कर बस यही कहता कि हम मुस्तफ़ा के जाम मोहब्बत के मस्त हैं, ये वो नशा नहीं जिसे तरशी उतार दे।

0: सामीन सबाल खैर में आज हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह को। आपने 63 साल जिंदगी पाई जिसमें 40 साल से ज़्यादा तबलीग़ इस्लाम के लिए सर्फ किए, 35 से ज़्यादा ममालिक का दौरा आपने किया और परचम इस्लाम को बुलंद बाला किया। इन्हीं ममालिक में एक जज़ीरे मॉरिशस भी है जिसका आपने 5 मरतबा दौरा किया और हर बार आपने बड़ी तादाद में लोगों को बशर्फ इस्लाम किया। और जब आप तीसरी मरतबा मॉरिशस तशरीफ लाए बिलखसूस 3 मई 1939 को, तो आपने पहली मरतबा के लिए जज़ीरे मॉरिशस में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूमधाम तज़क्को एहतशाम के साथ मनाया और इसमें हज़ारों की तादाद उशक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लेकर अपने अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी जोश व खरोश के साथ हर साल जज़ीरे मॉरिशस के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। सामीन मुबल्लिग़ इस्लाम सफ़ीर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मिरठी रहमतुल्लाह अलैह पर यह ख़ास प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ। आपकी तवज्जो के लिए शुक्रिया। अगली मुलाकात तक अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: आमीन सलाम अलैका।

0: धान धान दिकिट दिकिट दकिन धान धाकर धान दिकिट टकर धी धी धी धान धान गंता
1: इधर उंगल आरंभ से वानुल उंगल तेनी से अरंगम निगच्ची
0: काचा विरग नरग श्री रक्षकमाला यत्तने मुरिना नेंगी चावे इत्तवने यने आकुलवाया सूडिया वाडले सूडिया वाकड़ा वाडिया सिंदे गुरुंबत्ता पूदगी आग पनित्तिडवाया पावे विरगम परिगिडवाया आयर दम्माया नीवा आयर दम्माया नीवा
1: विसरूपम पड़त पाडल उन्ने कानादे ना शंकर महादेवन अवर्कल कुरली

0: 94.6 98.2 मेगाहर्ट्ज ऑरेंज फ्री
1: सकाळ बीट्स
2: सकाळ बीट्स

0: 94.6, 98.2 તમે સાંભળી રહ્યા છો RM3 રેડિયો.
1: Continuous music.

94.96 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।

शक्ति। मंगलवार 9 जून, घड़ी मिला लीजिए दिन के 10:45 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति में शक्ति लेकर हम आपकी सेवा में आ गए हैं। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम से आप जुड़ चुके हैं और अभी से लेकर दिन के 11:30 तक जो है हम आपका साथ देने वाले हैं। कहते हैं कि जीवन में एक दूसरे का साथ देना बहुत आवश्यक होता है, एक दूसरे के लिए खड़ा होना बहुत आवश्यक होता है, एक दूसरे का सहयोग करना बहुत आवश्यक होता है, जीवन में एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे के प्रति एक कृतज्ञता रखना बहुत आवश्यक होता है। और ये सारे मानवीय मूल्य हैं जो हमें जीवन में और भी अच्छा बनाते हैं और जीवन में कहीं ना कहीं हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। तो चलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही अच्छे गुणों द्वारा हम जो है अपने जीवन को सदैव बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहे। जीवन में कठिनाई किसके नहीं आती है, सबके आती है, लेकिन कठिनाइयों से पार होकर ही तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं।

श्रोताओं, ईश्वर के शरण में हर कोई जाना चाहता है, ईश्वर की कृपा को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आजकल इस व्यस्तता भरे जीवन में सदैव हमारे मुख में एक ही बात होती है कि हमारे पास समय नहीं है। हम बहुत परेशानी में हैं, हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हमारे पास काम बहुत है और इसके चलते हम ईश्वर का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि एक दिन में सभी को 24 घंटे समान रूप से दिए गए हैं, और जब सभी को समान रूप से 24 घंटे दिए गए हैं तो इस 24 घंटों का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप अपने 24 घंटों में कितना समय अपने आप को दे रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, अपने कर्तव्यों को दे रहे हैं, अपने उन सभी कार्यों को दे रहे हैं जिससे आपका जीवन और भी बेहतर होता है, जो आपको सफलता की ओर ले जाता है, जो आपको उन्नति प्रगति की ओर ले जाता है। वहीं पर थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए

जी हाँ, सच्चे मन से जो कोई ध्यावे उसका बेड़ा पार है। जी हाँ, मन की सच्चाई, मन की अच्छाई, मन की पवित्रता ही तो मायने रखती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसका हृदय पवित्र होता है, जहाँ पर कोमलता होती है, जहाँ पर सरलता होती है, ऐसे ही हृदय में तो ईश्वर का वास होता है। और हम बच्चों के लिए तो माता पिता हमारे ईश्वर के समान होते हैं, और माता पिता का जो है कभी भी हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सदैव उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन तो हमें उन्हीं के कारण मिला है।

0: शक्ति।
1: तो चलिए रेडियो मनोरंजन पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं और आज मंगलवार है। मंगलवार के दिन तो हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है और कहते हैं ना हनुमान जी जो है भगवान श्री राम के परम भक्त है और भगवान राम की भक्ति करने से कहते हैं हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलता है और जहाँ पर भी भगवान राम का नाम लिया जाता है कहते हैं किसी न किसी रूप में हनुमान जी भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो चलिए इस भक्ति गीत द्वारा भगवान श्री राम का स्मरण करते हैं।

शक्ति। तो चलिए यहाँ पर भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम के लगभग हम अंत तक आ पहुँचे हैं। दिन के 11:15 बजे से अभी तक आपने हमारा साथ दिया। ईश्वर की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और इसी मंगल कामना के साथ हनुमान जी की आरती के साथ आज के कार्यक्रम का समापन हम करते हैं। 11:30 बजे आप चाइनीज भाषा में कार्यक्रम सुन पाएंगे जिनकी प्रस्तुति में, तो हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: one and only station.
1: ला लीजिए, दिन के 12 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ विद्यमान। नमस्कार आपको।
2: नमस्कार, मैं निशमा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। गुजबा में मोटरवे पर हुए एक वायरल विवाद के मामले में पीड़ित के आधिकारिक शिकायत के बाद संदिग्ध आइवान मोदेस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस घटना पर एक विभागीय जांच भी शुरू की है ताकि मौके पर मौजूद अधिकारियों के हस्तक्षेप की परिस्थितियों की जाँच की जा सके और ये निर्धारित किया जा सके कि की गई कार्रवाई पेशेवर दायित्वों और लागू परिचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप थी या नहीं। संदिग्ध के खिलाफ कम से कम 3 अस्थायी आरोप लगाए गए हैं। 5 महीनों में ऑनलाइन उत्पीड़न के 742 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस वर्ष पहली जून के बीच 1000 से अधिक महिलाएं सोशल मीडिया की शिकार हुई हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण को मजबूत करने पर विचार कर रही है। देश भर में कई महीनों के इलाकाई परामर्श के बाद विजन 2050 पहल एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। नागरिक बैठकों का चरण इस सप्ताह पोम्पलुमसर जिले के प्लेंडेपापाई में समाप्त हो गया। देश के भविष्य के लिए उनके विचारों, चिंताओं और आकांक्षाओं को जानने के उद्देश्य से आयोजित इन चर्चाओं में 1200 से अधिक मॉरिशस वासियों ने भाग लिया। और विदेश में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के टायर शहर के लिए एक नया निकासी आदेश जारी किया है। यह आदेश ईरान द्वारा लेबनान पर हमलों को रोकने के आह्वान के एक दिन बाद आया है। एक इजरायली प्रवक्ता का कहना है कि वे पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने हिजबुल्ला पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। ताहिरबाग सेंटर प्लेनवेद पोटली में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के जनाब यूसुफ गुलाम मोहम्मद तुरावा लालू इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दोपहर 3:30 बजे ताहिरबाग सेंटर प्लेनवेद पोटली से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए रिश्ते की मस्जिद ले जाया जाएगा और फिर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रस्तान। फ्यूनरल टूडे एट 3:30। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दो फ्लाक में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लीलावती नागवा, पैदाइशी नाम कोयला और जो शांति नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर 3:30 बजे उनके बेटे जगदीश नागवा के घर पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दो फ्लाक से उठाकर मौलुबा पॉइंट दो फ्लाक की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। रॉयल रोड खोंगुब में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री बसंत लुलचंद, जो सुनील नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रॉयल रोड खोंगुब से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
3: Continuous music.

0: 12:08 हो चुके हैं दोस्तों, नमस्ते आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। कहते हैं ना, काम चलता रहेगा, लिस्ट भी पूरी हो जाएगी, जो भी आपने कामों की लिस्ट रखी हुई है। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लीजिए। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और गानों की ये महफिल सज चुकी है। हम यहाँ पर चलाएंगे आपकी पसंद के पुराने नगमे, जितने भी पुराने गाने हैं, चाहे वो कैसे भी कहते सैड हों या प्यारे भरे हों, चाहे मोहब्बत से भरे हों, चाहे इश्क वाले हों। तो गाने हम चलाते रहेंगे, बस अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान रखेगा। और चलिए निकलते हैं इस सुहाना सफर में। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और ये है आपका फेवरेट प्रोग्राम RM3 पर सुहाना सफर।
1: RM3 रेडियो।
2: कि जैसे तपते हुए सहराओं में सदियों बाद बरसात हो गई,

0: RM3 Radio.
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं?

0: सफर।
1: 12:20 हो चुके हैं दोस्तों, और इस समय जो टाइम है ना, क्या होता है कि सबको दिल करता है कि कुछ खा लिया जाए। और कई लोग इस समय बैठ के सोच रहे होंगे कि चलो कुछ देखें किचन में क्या है, या फ्रिज खोल के देख रहे होंगे कि कुछ बना है या नहीं बना, कुछ पड़ा हुआ है रात का तो वो यही काम चला लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये काम मत कीजिए, बस कुछ कुछ फ्रेश फ्रेश बना लीजिए और बस खाइए, इंजॉय कीजिए, क्योंकि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। बचा कुचा मत खाओ, पर हाँ फ्रेश बनाओ, चाहे हल्का सा लाइट सा, बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए हमारे साथ 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है रंबा जी स्विट्जरलैंड से, अमृता, अमीशा और जॉन्टी, और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं, और प्लीज़ कह रहे हैं कि गाना ज़रूर चलाना क्योंकि किसी अपने के लिए है। तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। ललित जी हमारे साथ यूएसए से साथ दे रहे हैं, और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे कोई तो हमें प्यार कर लो। अरे बिल्कुल करेंगे, सारे जने करेंगे आपको प्यार। सूरज शर्मा, साजदा जी जुड़े हुए हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। तो जहाँ पर शुरुआत अच्छी होती है वहाँ अंत भी अच्छा होता है। तो इंजॉय कीजिए आपके एक गाने।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। 12:30 हो चुके हैं दोस्तों, और मुझे पता है कि आपको इंतजार है अपने गाने का, तो एक एक करके सबके गाने बजेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर हैं ही हैं, आपकी फरमाइशों को सुनते हैं और आपके लिए आपकी फरमाइश के गाने चलाते हैं। तो चलिए भाई, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और एक हमारी बहुत सी प्यारी सी दोस्त हैं, वो हैं, कह रही हैं कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैंने बोला हाँ जी बोलो। कह रहे हैं कि इतने प्यारे गाने चला रहे हो और मेरी अब्बी सिस्टर ने अमृता, अमीशा और जीजू और सारे परिवार जान

0: ही परिवार, उनके भाभी और भाई सारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनका एक फेवरेट गाना सुनना चाहती हैं। और शांति जी बस इतना कहना चाहती हैं कि जब कोई गाना ऐसा चलता है ना जो बहुत ही दिल के करीब होता है, जब वो गाना बजता है रेडियो पे तो ऐसा लगता है, एहसास होता है कि भैया हमारी आज का तो दिन बन गया। तो चलिए भैया आपका दिन बनाते हैं, उससे पहले कि ललित जी का एक गाना चलाते हैं और कहते हैं कि सब जने एक दूसरे को प्यार करें और इंसान के जैसे, मतलब ये कहते हैं ना कि कभी कभी हम टेंशन में आ जाते हैं, अरे गाना कौन सा चल गया, पर हर किसी के गाने को पसंद करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अपना गाना पसंद हो। चलिए भाई इंजॉय करते हैं ये वाला गाना।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: हालत कुछ अपनी भी ऐसी है मेरी जान, लेकिन कश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं। ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। उफ़, तुम्हारी आंखें, आज तुम्हारी आंखें प्यार के शरारे बरसा रही हैं, और इनकी ताब लाने के लिए मुझे सहारा चाहिए, जाम का। अगर आपकी इजाजत हो तो
2: आज तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन जल्दी।

0: खाना सफर।
1: 12:43 हो चुके हैं और 9 तारीख, भाई 9 जून, आप ही क्या पता भी नहीं चलता कैसे टाइम निकलता चला जाता है। और मंगलवार, प्यारा सा दिन जहाँ पे हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, प्लानिंग करने होते हैं पूरे वीक की और उसके बाद अगले हफ्ते की भी। तो चलिए भाई, ये सारे काम होते रहेंगे, साथ साथ इन्जॉय करते हैं अपने गानों को। तो हम बढ़ते हैं 2-3 मैसेजेस की और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं माधुरी जी, जो कि अपनी सिस्टर उनकी सिस्टर शोभा जी का बर्थडे है और सभी सिस्टर्स उनको विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम हमारे साथ हो तो हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है। सो स्वीट ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। उसके साथ में ही हमारी एक जयश्री जी हैं जो कि सूरी नाम से हैं और वो अपनी मामा के लिए, कल उनकी मामा का बर्थडे था और उनको बस इतना कहना चाहती हैं, तुम लाखों में बहुत ही प्यारी हो माँ, क्योंकि जब से मैं बड़ी हुई तब से मैंने तुमको जाना समझा। आज तुम बीमार हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी आँखें फेर लूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। चाहे रात को मुझे कितनी बार भी उठना पड़ता है तुम्हारे लिए, पर मेरा दिल करता है हमेशा तुम्हारी सेवा करूँ। सो नाइस, ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी है और हम सब के लिए सीख भी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ जुड़े और आपने ये बात कही। मैं यही चाहती हूँ कि हर कोई अपने मामा पापा को या अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार और मोहब्बत देता रहे। उन्होंने आपको इतनी प्यार दिया होगा तभी आज उनको आप इतना प्यार दे पा रहे हैं। साथ में हमारे एक बहुत सारी प्यारी सी अमीशा है जो कि इस समय स्विट्जरलैंड है और वो नानी और रंभा और मॉम याशना के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और वो कह रही हैं कि अब वो लोग स्विट्जरलैंड में हैं। उसके साथ में अमीशा के साथ में एक और है अमृता, आई थिंक सो, यस अमृता, दोनों स्विट्जरलैंड गई हैं घूमने के लिए और वो कह रही हैं कि हम घूमने तो आए हैं पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है और हम इतना ही कहना चाहते हैं, हमने यहाँ जितनी इन्जॉयमेंट की है वापस आ गए मॉरिशस में फिर और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए भाई, इन गानों के साथ अपना कार्यक्रम चालू रखते हैं और कहते हैं कि ये गाना आप सबके लिए है।
2: RM3 Radio.

0: खाना सफर।
1: आज बहुत लोगों का बर्थडे है तो और कई जनों का एनिवर्सरी भी है, तो हम सभी को विश करेंगे, चाहे आपके मैसेजेस आए ना आए, पर हमारा दिल और हमारा पूरा एमबीसी टीम आपको विश करता है, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और अपनी अगर आपकी एनिवर्सरी है तो एंजॉय कीजिए, और आपका अगर दिन है तो दिन को एंजॉय कीजिए, और अगर आपके यहाँ पर रात हो रही है तो रात में आराम से, कहते हैं ना कि बहुत ही प्यारी सी नींद को पूरा करना आप। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग तो जुड़े हुए हैं, ज्योति जी, आशनी, रेखा, सुरेखा, AMD मधुक फैमिली के लिए गाना सुनना चाहती हैं, और हम अभी चलाएंगे आपकी पसंद का फूलवंती जी, जो कि मुझे मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं, चाहे वो अपना कोई गाना नहीं बताती पर ये जरूर कहती हैं, आशीर्वाद देती हैं सभी लिसनर्स को और हमेशा कॉल करती हैं, थैंक यू, मुझे आप बहुत ही प्यारे लगते हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस या कॉल के लिए। ज्ञान बिहारी जी अपनी वाइफ सविता, सिस्टर गीता, संजीव, सुनील, रानी, भामा के साथ जुड़े हुए हैं और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं, तो बस हम अभी चलाएंगे आपके लिए भी। उसके साथ में ही माधुरी जी भी जुड़ी हुई हैं और उनकी सिस्टर का बर्थडे है और सारी सिस्टर्स उन्हें विश कर रही हैं, तो हम आपको भी कहेंगे हैप्पी बर्थडे डियर, हमेशा खुश रहिए। जीवंत जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में और वो कह रही हैं कि वो अपनी मम्मी पापा के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं, बट सॉरी मैम

0: आपका गाना जो है मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर मैं आपके लिए जो आपकी फीलिंग्स है उसकी बहुत कदर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी मम्मा पापा को प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आप ज़िंदगी में सभी को प्यार करते होंगे। और आपने बताया कि आप बीमार थी तब भी आप ये कॉल करने आई हैं और गाना सुनना चाहती हैं, तो फिर भी आप हम आपको यही कहेंगे कि जल्दी से ठीक हो जाइए, अपना ध्यान रखिए, और जब आएंगे वापस ठीक होके तो फिर दूसरे गाने की फरमाइश दीजिएगा, हम चलाएंगे। प्रकाशवंती जी बेल्जियम से जुड़ी हुई हैं और बता रही हैं कि उनके वहाँ पे कितनी गर्मी है, तो चलिए भाई अपने गानों के साथ में इंजॉय भी कीजिए और अपने घर के काम भी साथ साथ करते रहिए, और अगर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हो तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, काम भी होते रहेंगे। चलिए तब तक उसके बाद थोड़ी इस गाने के बाद थोड़ी देर बाद सुन पाएंगे आप संक्षिप्त समाचार।
1: RM3 Radio.

नमस्कार मनीष, मां श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। इंटरमीडिएट कोर्ट की फाइनेंशियल क्राइम्स डिवीजन ने नवीन राम गुलाम के खिलाफ चल रही मामले की कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। उन पर 23 आरोप लगाए गए थे, जिनमें 5 लाख मॉरिशस रुपए की निर्धारित सीमा से अधिक नकद पेमेंट स्वीकार करने का आरोप शामिल था। हालांकि अदालत का मानना है कि मुकदमे को जारी रखना न्याय की भावना के विरुद्ध होगा, क्योंकि पुलिस जांच में गंभीर खामियां पाई गई हैं। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन यानी डीपीपी के कार्यालय ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। रोशबा मोटरवे पर हुई मारपीट की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद संदिग्ध आइवान मुदेस्त को पीड़ित की आधिकारिक शिकायत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच पुलिस ने विभागीय जांच शुरू की है, ताकि घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों की कार्रवाई की परिस्थितियों की जांच की जा सके और ये निर्धारित किया जा सके कि उनके कदम पेशेवर दायित्वों तथा प्रचलित परिचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप थे या नहीं। आइवान मोदेस्त के खिलाफ कम से कम 3 अस्थायी आरोप दर्ज की गई है। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी मिलें बोंसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी होंगी। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता और टिकाऊ विकास की गारंटी माना जाता है, जो पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और अनुकूल है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी के तहत मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को बोंसिको इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। गंगा तालाब प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल के कई घटनाक्रमों के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल पर आने वाले आगंतुकों की गतिविधियों को बेहतर ढंग से विनियमित करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से कल कला एवं संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में स्थल का दौरा किया गया, ताकि प्रस्तावित उपायों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलीपींस के दक्षिणी क्षेत्र में आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद सैकड़ों झटके महसूस किए गए हैं। इस आपदा में अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। मिंदनाओ द्वीप पर हुई तबाही की वास्तविक तस्वीर अब सामने आ रही है, क्योंकि राहत और बचाव दल तटीय शहरों और कस्बों तक पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या, जो फिलहाल 37 है, और बढ़ सकती है। 487 लोग घायल बताए गए हैं। भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई हैं तथा सड़कें या तो दरारों से क्षतिग्रस्त हो गई हैं या भूस्खलन के मलबे में दब गई हैं। द्वीप के बड़े हिस्सों में अभी भी बिजली और दूरसंचार सेवाएं बहाल नहीं हो सकी हैं। कल सुबह आए इस भूकंप के बाद इंडोनेशिया, मिंदनाओ के दक्षिणी क्षेत्रों और जापान के प्रशांत तट पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, जिसके चलते हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रारंभिक आंकलन के अनुसार लगभग 2000 घर और 6000 सरकारी विद्यालय क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। प्लेनवेयत पोर्ट लुइस में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के जनाब यूसुफ गुलाम मोहम्मद तुगावा, जिन्हें लालू के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा ताहिरबाग सेंटर से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए आज 3:30 बजे गिश्तिया मस्जिद ले जाएगी, फिर दफनाने के लिए गिश्तिया का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 3:30 PM। रॉयल रोड ग्रांगोब में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री बसंत लोलचन, जिन्हें सुनील के नाम से बिल्कुल ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर ग्रांगोब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। पंचम रोड लापोत प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 79 ईयर्स ओल्ड की 69 साल की श्रीमती लीलावती नाहुआ
ये शोक समाचार फिर एक

0: बाफी सुन लेते हैं. पंचम रोड लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक में 79 साल की 79 years old की श्रीमती लीलावती नाहुआ, श्रीमती लीलावती नाहुआ पैदाश्रम कोयला जिन्हें शांति के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके बेटे जगदीश नाहुआ के घर लापोर्ट प्रोविडेंस पोस्ट दे फ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौलुबीन पोस्ट दे पॉइंट दे फ्लाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे 3:30 PM. शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Continuous music.

0: सुहाना सफर।
1: 1:11 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम सुहाना सफर के साथ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। तो चलिए भाई, ये बहुत सारे गाने तो हम चला रहे हैं एक एक करके आपकी पसंद के, पर कई बार जब मैसेजेस आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है और ऐसा एहसास होता है कि हाँ भाई, ये मैसेजेस आने की ज़रूरत थी। तो मुझे भी लगता है कि ये वाला मैसेज आपको सुनना चाहिए, तो बस कान लगा लीजिए और हमारे पास चले आइए। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिद्वाग विदेशी जी और कह रहे हैं अपनी प्यारी सी अनुषा को एक ही बात, कह रहे हैं मुझे पता है कि तुम गुस्सा करती हो और तुम जानती हो जब तुम गुस्सा करती हो तो कितनी अच्छी लगती हो, और जब जब तुम गुस्सा करती हो तब तक मुझे एहसास होता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनता जा रहा हूँ, क्योंकि तुमने धीरे धीरे गुस्सा करते करते मेरी सारी जितनी भी गलतियाँ थी उसको निकाल दिया। तुम्हें नहीं पता, मैं हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता रहता हूँ तुम्हारा चेहरा देख के, बट तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इरीटेट कर रहा हूँ, पर यह सच बात है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाउ स्वीट ब्यूटिफुल मैसेज, और ये प्यारा सा मैसेज आपके लिए बिद्वाग विदेशी जी। और जो आपने गाना मांगा है हम बिल्कुल चलाने वाले हैं, नेक्स्ट गाना आप ही के नाम होगा। साथ में वीना जी नुवलफोंस से जुड़ी हुई हैं और संडे को उनकी सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी है और वो भी चाह रही हैं एक प्यारा सा गाना उनकी पसंद का है, और उन्होंने कहा जब हमारी बहन की शादी हुई थी तो हम उम्मीद करते थे ये वाला गाना चले, तो वही वाला गाना हम चलाने वाले हैं आपके लिए। उषा जी जो ब्रह्म स्थान से हैं, उनकी सिस्टर शोभा जी का बर्थडे है और वो उनको विश करना चाहती हैं और उन्हें यही कहना चाहती हैं, हमेशा खुश रहो और सबसे बड़ी बात कि जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई एडवाइस की ज़रूरत हो, मैं सामने नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे तुम्हारी एडवाइस हमेशा अच्छी लगती है। तो हाउ स्वीट, यही होता है बहनों का प्यार। तो ऐसे इंजॉय करते रहिए अपने गानों को, ये है आपकी पसंद का गाना।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जो लोग बस हमें रेडियो में सुन रहे हैं इस टाइम, कोई काम नहीं कर रहे, बस कोई जल्दी नहीं है, रेस्ट करो। कुछ टाइम होता है ना हमारे लिए, सिर्फ हमारे लिए होता है, और ये टाइम जो नून का टाइम होता है, इस टाइम आप थोड़ा सा खाओ, रेस्ट करो। बट ये नहीं कि खाते ही सो जाओ। अगर आप खाते ही सो जाएंगे तो फिर आपको इंडाइजेशन होगा और फिर आप कहेंगे अरे आज पूरा दिन खराब हो गया। तो खराब नहीं करना है आपने, बस थोड़ा सा रेस्ट करना है, थोड़ा बैठना है, थोड़ा सा बाहर देखना है, देखो भाई सूरज देखो, थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ी सी क्या कहते हैं नींबू पानी पी लो। और वैसे ठंडक आने आ ही गई है ऑलमोस्ट यहाँ पर, तो अगर आपको ठंड लग रही है तो बस थोड़ी सी कॉफ़ी पियो, चाय पियो, जिससे थोड़ा सा मन भी अच्छा हो और थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ काम किया है। बट जितने भी हमारे जो लिसनर्स हैं जो बहुत ओल्ड हैं, उनके लिए बस इतना ही कहेंगे, थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन काम काम काम काम मत कीजिएगा, अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ये गाना आप सबके लिए, जिनको भी कहते हैं ना कि प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और ये वाला सच में रियली में अगर आप इसे सुनेंगे ना तो सबका एहसास, सबको यही लगता है कि काश ये गाना हमारे लिए होता।
2: RM3 Radio.

0: आपके साथ पूनम, और मुझे पक्के पक्के तरीके से पता है आपने कई बार घड़ी देखी होगी और आपने सोचा होगा अरे थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, कुछ पी लेती हूँ या कहीं पर ये काम करके आता हूँ। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि इतने अच्छे गाने चल रहे होते हैं, समय का पता नहीं चलता, और कई बार ऐसे टाइम बीत जाता है उसका भी पता नहीं होता। तो यही चीज़ है, ज़िंदगी भी ऐसी कभी कभी निकल जाएगी और पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ से छोटे से जवान और जवान से बुढ़ापे में आ गए। पर फिर भी ये गाने जो है ना, इतने पुराने गाने होते हैं फिर भी हमारे दिल के कहीं ना कहीं बहुत ही करीब होते हैं। तो अगर आपके दिल के पास ये गानों में से कोई भी गाना आपको टच किया हो, एक तो होता है कि आपके पसंद के गाने होते हैं, आपको पसंद आते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हो अरे दूसरे ने कितना अच्छा चूज़ किया था ना, तो कभी कभी वो भी गाने आपको पसंद आने चाहिए जो दूसरे ने पसंद किए। तो ये गाने आप सबके हैं, और ये अगला गाना होगा ज्ञान बिहारी जी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बोला ये लाल कब मुझे छोड़ेगा, वही लाल रंग कभी नहीं छोड़ता, लाल रंग होता है तभी तो जिंदगी होती है। तो चलिए इंजॉय करते हैं आपके इस गाने को।
1: RM3 Radio. Radio. Radio.
2: Ye lal rang.

0: सुहाना सफर, सुहाना
1: सफर। तो दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और अच्छे गानों के साथ आज का ये सफर यहीं तक। आपका साथ मिला, आपके मैसेजेस पढ़े, आपने बहुत सारी कॉल्स किए, आप सबका दिल से धन्यवाद। मैं थी आपके साथ पूनम। मेरे बाद आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। बस ये गाने आपके ही पसंद के हैं और ये अगला गाना आएगा उषा उत्थप और उसके बाद महेंद्र कपूर की आवाज़ भी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, ये सुनिए आपका फेवरेट सॉन्ग
2: RM3 रेडियो।

सुदेवी जी आपके लिए गाना चला रहे हैं और साथ में शारदा जी के लिए आपने जो मैसेज किया है बहुत ही प्यारे और लंबे चौड़े भेजे हैं बट आपके लिए इतना ही कहेंगे थैंक यू सो मच

0: RM3 Radio.
1: अभी अलविदा मत

0: 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार प्यारी श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वर्षों के दौरान कृषि भूमि की उर्वरकता प्रभावित हुई है। सरकार अब जैविक पदार्थों, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार की गई रणनीतिक योजना में कृषि पारिस्थितिकी को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है।

0: फ्लक में स्थित फागे का मॉडल फॉर्म 100% जैविक कृषि पद्धतियों का एक ठोस उदाहरण है जिन्हें अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये मॉडल फॉर्म नवाचारी और पर्यावरण अनुकूल कृषि टेक्निकों का उपयोग करता है जो मिट्टी को एक मूल्यवान संसाधन में बदलकर स्वस्थ सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा करती है। नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा को विकेंद्रीकृत करना यानी डिसेंट्रलाइज करना, प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा बढ़ाना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप टेक्निकी उपकरण उपलब्ध कराना, इन सभी प्रस्तावों पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। दृष्टिहीनों के लिए समर्पित शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पुनर्गठन सरकार के एजेंडा में शामिल है। लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड के प्रशासन ने पिछले सप्ताह सरकार को इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। ये वर्तमान ब्रिटिश संगीत जगत के सबसे चर्चित समूहों में से एक है। जाज, आफ्रोबीट और हाई लाइफ संगीत के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध संगीत समूह कोकोको ने 6 जून को पहली बार मॉरिशस में प्रस्तुति दी। एसोसिएशन फ्रांसिस दे मॉरिस में आयोजित ये कार्यक्रम उनके क्षेत्रीय दौरे के समापन पर हुआ जिसने स्थानीय दर्शकों का भरपूर दिल जीता। समूह की प्रस्तुति को दर्शकों ने शानदार प्रतिक्रिया मिली और ये यानी कि दर्शकों का शानदार प्रतिक्रिया मिली और ये संगीत प्रेमियों के लिए एक यादगार सांस्कृतिक आयोजन साबित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में सशस्त्र डाकुओं ने दर्जनों गांव वालों का अपहरण कर लिया। बताया जा रहा है कि उन्हें संभावित शांति वार्ता के संबंध में एक बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। इस घटना ने क्षेत्र की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को उजागर कर दिया है। स्थानीय पुलिस के अनुसार रविवार को उत्तर पश्चिमी जम्फारा राज्य के मरादून क्षेत्र में स्थित मगामीन डिगी गांव के निकट जंगल में आयोजित एक बैठक के दौरान 29 लोगों का अपहरण कर लिया गया। हालांकि कुछ स्थानीय निवासियों और अधिकारियों का मानना है कि अपहरण लोगों की संख्या 50 तक हो सकती है। माना जा रहा है कि पीड़ित लोग एक डाकू सरगना के रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहे थे ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके और समुदाय पर लगाए गए प्रतिबंधों में राहत मिल सके। और अंत में बात करते हैं हम फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत अब केवल 2 दिन दूर है। इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप टूर्नामेंट जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 104 से अधिक मैच खेले जाएंगे। याद रखिए गुरुवार 11 जून से शुरू होगा ये विश्व मुकाबला। उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड पुटसीबिलिया मेबर्ग में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के जनाब रजब खान जुहूर जिन्हें जानू बुशे के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज शाम 3 बजे इनकी बेगम सबीना जुहूर के मकान मेबर्ग से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट बोक्यूस से रिविया दी क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

की कहानी, उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का और फेसबुक पेज पर फॉलो करने वाले हमारे सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं।

0: आज की उड़ान की कहानी हम लेकर आए हैं और आपको बताते चले आज की जो महिला हमारे साथ जुड़ी हैं उनकी कहानी, उनकी यात्रा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंस्पायरिंग और हम कह सकते हैं प्रेरणादायक है। पर सबसे पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिव, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और रत्नमाला जी हमारी प्रोड्यूसर। तो बस हमारा साथ दीजिएगा, मैं हूँ रत्ना, आपके साथ जुड़ चुकी हूँ और इस एक घंटे के सफ़र में जानेंगे एक और सशक्त महिला की कहानी। हम तो यही कहेंगे कि जितनी बड़ी, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफ़ें होंगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है श्रीमती अनुराधा पूरन जी ने। जी हाँ, उनकी ये यात्रा बहुत ही दिलचस्प यात्रा, बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा। उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, यानी उन्होंने फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी की और साथ ही साथ उन्होंने जूलॉजी का भी ज्ञान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, डायरेक्टर भी रह चुकी हैं ग्रैंडमा सीक्रेट इन्फ्यूजन इस संस्था की। साथ ही साथ उन्होंने कई सारे ट्रेनिंग्स दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फूड एंड कल्चर के साथ वे जुड़ी हुई हैं। कई सारी महिलाओं को उन्होंने सशक्त किया है, बहुत सारी महिलाओं को बहुत प्रेरणा दी है, साथ ही साथ उन्होंने ट्रेनिंग दी है और बस अभी फ़िलहाल वे मेडिसिनल प्लांट्स के साथ डील करती हैं। तो इनकी जो यात्रा है बहुत ही लाजवाब यात्रा, तो आइए उन्हीं के जुबानी सुनते हैं उन्हीं की कहानी। आइए स्वागत करते हैं अनुराधा जी का। अनुराधा जी, आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते रत्ना जी, मैं बहुत खुश हूँ आप से बात करते हुए और इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया।
0: पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जानती हूँ आपका जो शेड्यूल आपने मुझे भेजा था बहुत ही ज़्यादा बिजी है, पर आपने इस बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। और आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो यात्रा शुरू हुई ये कैसे शुरू हुई और आज यहाँ तक आप पहुँची हैं, तो प्लीज़ आप हमें बताएँ।
1: मैं तो बहुत छोटे से ही ऐसे काम करने में अच्छी लगती थी, नेशनल पार्टी में और सोशल वर्क में, तो मैंने अपनी दादी से बहुत कुछ सीखी हैं और इस यही मेरी शुरुआत हुई है। मैंने अपनी शिक्षा के दौरान कई क्षेत्रों में ज्ञान प्राप्त किया है। इस यात्रा में मैंने अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जिससे मेरी सोच, समझ और कौशलों के विकास हुए। हर क्षेत्र ने मुझे कुछ नया सिखाया और मुझे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से बेहतर बनने में मदद की। ये शिक्षा यात्रा मेरे लिए सीखने, विकास करने और नए अवसरों का अपनाने का एक महत्वपूर्ण अनुभव रही है।
0: तो मैं पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, आपने जब शुरुआत में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में अपनी पढ़ाई की और साथ ही साथ आपने जूलॉजी भी किया, तो इसमें अंतर क्या है और ये किस तरह से आपको इसमें दिलचस्पी जागी?
1: ठीक है, तो मैंने पहले फैकल्टी और एग्रीकल्चर की शिक्षा में पढ़ाई की जहाँ मुझे कृषि, प्रकृति संसाधनों और उनके व्यावहारिक उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त हुए। इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से जूलॉजी की पढ़ाई की 3 साल तक, इस जिसमें जीवन जंतुओं की संरचना, व्यवहार, फिजियोलॉजी और उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन किया। तो दोनों क्षेत्रों में मुख्य अंतर ये था कि एग्रीकल्चर के केंद्र कृषि उत्पादन और खेती से जुड़े वशाओं पर था, जबकि जूलॉजी जीव जंतुओं और उनके वैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है। तो इन दोनों विषयों ने मुझे जीव विज्ञान को अलग अलग दृष्टियों से समझने का अवसर दिया और मेरी वैज्ञानिक सोच को और अधिक विश्वास किया।
0: बहुत बहुत बढ़िया। और जैसे आपने बताया कि आप पूरी तरह से प्रकृति के साथ जुड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृषि भी प्राकृतिक रूप है और जीव जंतुओं के साथ जुड़ना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये भी प्रकृति के साथ। तो एक तरह से देखा जाए तो आप बहुत ही ज्यादा प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसे आपने अपने बायोडेटा में बताया था कि किस तरह से आप दादी माँ के जो नुस्खे हैं, ग्रैंड माँ सीक्रेट इन्फ्यूजन, इसकी निदेशिका हैं, इसकी डायरेक्टर हैं, तो ये संस्था के बारे में हमें बताएं और ये कहाँ स्थित है, ये यहाँ कैसे कार्य होते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं।
1: ठीक है, तो सबसे पहले जी हाँ, मैं ग्रैंड मा सीक्रेट यानी सीक्रेट गांव में जो हाँ।

0: बल्कि मॉरिशस में सगर और बेचा जाता है
1: जी।
0: तो मैं इस इन्फ्यूजन की डायरेक्टर हूँ। ये एक वुमेन एम्पावरमेंट और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना है। तो हम महिलाओं को ट्रेनिंग, मेंटरशिप, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का अवसर प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी पहचान बना सके और आत्मनिर्भर बन सके।
1: तो ये एक तरह से बिल्कुल बिल्कुल जैसे एक महिला के लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल
0: जी, मेरे विश्वास है कि जब एक महिला साक्षात होती है तो पूरा परिवार और समाज साक्षात होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसीलिए हमारी संस्था महिलाओं को उनकी क्षमताओं को पहचानने, नए अवसरों का लाभ उठाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। डायरेक्टर के रूप में मैं भूमिका संस्था की रणनीति तैयार करना, नए कार्यक्रमों के विकास करना और एक अधिक से अधिक महिलाओं तक हमारी पहुंच सुनिश्चित करना है।
1: तो एक तरह से आप अपने कार्यक्रम के द्वारा या ये संस्था के द्वारा महिलाओं को सशक्त करती हैं, उनको जानकारी पहुंचाती हैं कि किस तरह से दादी माँ के जो नुस्खे हैं उसके साथ भी हम सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल। और जो दादी माँ के नुस्खे जो पुराने ज़माने में जैसे दादी नानी हमारे घर में ही छोटी छोटी जो चीज़ें उपलब्ध हुआ करती हैं उसी से हमारी सारवार करते हैं, उसी से हमारा जो बुखार है, खांसी है, सर्दी है
0: हमेशा
1: वो ठीक होता है। और चलिए आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल अनुराधा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, आप बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी जो लाइफ है बहुत बिजी है, तो आपके अनुभव कैसे रहे? हर क्षेत्र में आपने काम किया हुआ है, तो प्लीज़ आप हमें बताएं, क्योंकि आप लाइफ मेंबर भी हैं ग्लोबल फोरम ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी भी हैं, तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि आप डॉक्टर भी हैं, समाज सेवी का भी हैं और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं, तो आपका अनुभव प्लीज़ साझा करें।
0: मुझे कई संस्थानों के साथ काम करने का अवसर मिला है
1: जी,
0: और हर क्षेत्र ने मुझे कुछ नया सिखाया है
1: जी।
0: शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और समुदाय विकास के क्षेत्रों में काम करते हुए मैंने लोगों की ज़रूरतें को समझना, उनके साथ मिलकर समाधान खोजना और प्रवृत्ति नित्रायन करना सीखा है। तो ये सब
1: आपने सीखा। बिल्कुल। और इसको सीखने के लिए भी आपने कहीं पर ट्रेनिंग खास करके ली है?
0: जी जी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैंने देखा है कि सही मंगदर्शन और अवसर मिलने पर महिलाएं अपने और अपने परिवार की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं
1: जी।
0: सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ने मुझे ये सिखाया कि व्यवसाय के माध्यम से भी सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: शिक्षा और समुदाय ने से जुड़े कार्यों के ने मुझे लगातार सीखा धैर्य रखने और लोगों के साथ मजबूत संबंध बनने का प्रेरणा दी है।
1: बिल्कुल, जैसे धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, पेशेंस रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी अनुराधा जी कि जब आपने ये शुरू किया था, आपको शुरू शुरू में जैसे बहुत सारा आपने काम किया, बहुत सारी पढ़ाई आपने की, तो इतना मुश्किल रहा होगा आपके लिए समय सारा कुछ टाइम मैनेज करना?
0: टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, अगर टाइम मैनेज नहीं हो सकती है तो कुछ भी नहीं कर पाती है।
1: बिल्कुल सही।
0: वैसे तो इन सभी अनुभवों ने मेरी सोच को और अधिक व्यापक बनाया है और मुझे ये विश्वास दिया है कि यदि हम समर्पण और ईमानदारी के साथ काम करें तो समाज में अच्छापूर्ण बदलाव लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही।
0: टाइम मैनेजमेंट हो तो सब कुछ आसान हो
1: सब कुछ है। बिल्कुल। तो मैं ज़रूर अनुराधा जी की इस बात से बहुत ही सहमत हूँ कि जब तक हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसे हमने शुरुआत में कहा ना कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, पर बड़ी मुश्किलों को चैलेंज उस सामना करना ही आपको बड़ी सफलता दिलाता है। तो ये आसान नहीं होता, ये एक दिन दो दिन का काम नहीं होता, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत लगती है, तब जाकर आप सफल बन पाते हैं, तब जाकर आप सशक्त बन पाते हैं। और आज की उड़ान की कहानी अनुराधा जी की कहानी है। चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं और लाजवाब इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे अभी थोड़ी ही देर में।

की कहानी, उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर आप इसे देख पा रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ अनुराधा जी जुड़ी हुई हैं और अनुराधा जी कई सारी ऐसी संस्थाओं के

साथ जुड़ी हुई हैं जो पर्यावरण की बातें करती हैं, प्रकृति के बारे में बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ वे एक सोशल सर्विस भी करती हैं, साथ ही साथ ऐसी कई सारे संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं जहाँ पर ना केवल वो वर्कशॉप्स करती हैं पर साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी महिला

0: पहुंची है। हाँ जी
1: रत्ना जी, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा उन लोगों से मिले हैं जिनके जीवन में हमारा काम के कारण सकारात्मक परिवर्तन आता है, ठीक है। तो जब मैं किसी महिला को आत्मनिर्भर बनते, अपना व्यवसाय शुरू करते या अपने सपनों को पूरा करते देखती हूँ, तो मुझे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है।
0: ओहो, मतलब एक तरह से देखा जाए तो दूसरे जब आगे बढ़ते हैं, दूसरे जब विकास करते हैं, तो अनुराधा जी को बहुत आनंद भी होता है और यही उनको और प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए। और देखा जाए तो सफलता की यही सीढ़ी है कि हम अकेले आगे ना बढ़े, हम दूसरों को भी सहायता दें, दूसरों को भी सहयोग दें आगे बढ़ने के लिए। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी अनुराधा जी, आपके लाइफ में जब चैलेंजेस आते हैं तो आप कैसे देखती हैं उन्हें?
1: तो मेरा मानना है कि हर चुनौती चैलेंजर्स अपने साथ एक नई सीख लेकर आती हैं, इसलिए मैं मुश्किलों को रुकावट नहीं बल्कि विकास के अवसर के रूप में देखती हूँ। समझ की सेवा करना, महिलाओं को साक्षात बनाने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य ही मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
0: बिल्कुल, और मैं समझती हूँ ये ही है सफलता की एक ऐसी सीक्रेट कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो चुनौतियों को अपने लेसन्स की तरह लें। बिल्कुल, मैं समझती हूँ यही हमें सिखाता है कि हम अपने आप में वो सकारात्मक परिवर्तन, वो बदलाव कैसे ला सकते हैं। और दिन ब दिन अपने आप पर मेहनत करना, बस यही है वो राज जहाँ पर हमको आगे जाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और मैं ज़रूर, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प हमेशा किसी ना किसी को चाहिए, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अनुराधा जी, आपके लाइफ में भी कैसे आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा मिली? यहाँ पर हम एक गीत का ब्रेक लेंगे, आते हैं थोड़ी ही देर में, यहाँ पर बिल्कुल एक गीत को सुनते हैं और आते हैं अभी थोड़ी देर में।

0: उड़ान की कहानी,
1: उड़ान की कहानी,
0: उड़ान की कहानी। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर, और बेशक कई बार बीच में कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल आज हमारे साथ श्रीमती अनुराधा पूरन जी जुड़ी हुई हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स में डील करती हैं, नेचुरोपैथ हैं और साथ ही साथ समाज सेविका हैं, बहुत सारी महिलाओं को प्रेरित करती हैं। और आज के इस कार्यक्रम में किसी भी महिला को आगे बढ़ने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, तो चलिए जानते हैं अनुराधा जी को किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ।
2: तो सबसे पहले मेरी यात्रा में बहुत से लोगों ने मुझे सहयोग और प्रोत्साहन दिया है। सबसे पहले मेरे परिवार ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया और हर कदम पर मेरे हौसला बढ़ाया। मेरे शिक्षाओं और मार्गदर्शकों ने मुझे ज्ञान, दिशा और प्रेरणा दी, जिससे मैं अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकी। इसके अलावा जिन संस्थाओं और समुदायों के साथ मैंने काम किया, उनके सदस्यों और संस्कर्मियों ने भी मुझे बहुत सहयोग दिया। महिलाओं के साथ काम करते हुए उनके संघर्ष और सफलता की कहानियों ने मुझे लगातार प्रेरित किया। मैं मानती हूँ कि किसी भी सफर में सफलता सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि उन सभी लोगों के सहयोग के परिणाम होती हैं जो हमारे साथ खड़े रहती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और ऊपर पहुंचने के लिए कहते हैं ना, अकेले नहीं पहुंचाया जा सकता, हम अकेले नहीं पहुंच सकते, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद हमें उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल होना, ये भी उतना ही अनिवार्य है, उतना ही आवश्यक है। और आज हमारे साथ अनुराधा जी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ जुड़ी हुई हैं, और लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो मैं ये भी एक बार फिर पूछना चाहूंगी कि आपके लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस अब तक
2: चैलेंजर आए हैं। हर सफर की तरह में यात्रा में भी कई चौतानियां आई हैं, चैलेंजर आते हैं। एक महिला के रूप में नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए कभी कभी लोगों को
0: उनसे डील करना
2: बहुत प्रॉब्लम होता है। अपनी क्षमता और दृष्टिकोण पर विश्वास दिलाना एक चुनौती रहा। नए प्रोजेक्ट शुरू करना, सीमित संसाधनों के साथ काम करना और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लेकर चलना भी आसान नहीं था। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करते समय मैंने देखा है कि महिलाएं आत्मविश्वास की कमी, सामाजिक बंधनों और अवसरों की कमी का सामना करती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए लगातार जागरूकता, प्रतिक्षण और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। लेकिन मैंने हर चुनौती को एक सीख और अवसर के रूप में लिया। इन अनुभवों ने मुझे और अधिक मजबूत, धैर्यवान और समाधान केंद्रित बनाया। आज मैं मानती हूँ कि चुनौती चैलेंजर्स मतलब कि ही हमें बेहतर इंसान बनाती है।
0: बिल्कुल, लाइफ में चैलेंजेस ना हो,
2: आती होती हैं
0: तो
2: आती मतलब रहती हैं।
0: हम नहीं कह सकते हैं।

0: लाइफ आसान ही होती है, लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस होती है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, यही हमें जीवन में प्रगतिशील बनाता है, विकास की ओर ले जाता है, सक्सेसफुल बनाता है। तो अनुराधा जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप मेडिसिनल प्लांट्स में भी डील करती हैं, जैसे लाचीजान बोलते हैं, तो कई सारे कार्यक्रम आपने अब तक किए हुए हैं और लाचीजान के कार्य में भी आप जुड़ी हुई हैं, तो किस प्रकार के लाचीजान यानी किस प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स आपके पास हैं?
1: हाँ, मैंने MBC की तरफ से बहुत सी प्रोग्राम की हैं, TV रेडियो पर बहुत सी प्रोग्राम की हैं और बहुत लोग मुझे जानती हैं यहाँ पे
0: जी,
1: तो मैं शुक्रगुजार हूँ MBC के लिए। हम तो मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में भी काम करती हैं, हमारा फोकस उन पौधों पर है जो पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए उपयोग किए जा रहे हैं।
0: ओके,
1: हमारे पास बहुत सी मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे कि तुलसी, मोरिंगा, एलोवेरा, लेमन ग्रास, नीम, जिंजर, टर्मेरिक, पेपरमिंट और अन्य कई औषधियों गुना वाले पौधे होते हैं। हमारी तो 45 या 55 वैराइटीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स से हम काम करते हैं, जो हर्बल टी बनाते हैं हम उन्हीं से ये सब बनाते हैं जो हर्बल टी होती हैं। हम उन पौधों के बारे में जागरूक बन रहे, उनकी खेती को प्रोत्साहित करने और उनके आधार पर वेलनेस प्रोडक्ट्स और इन्फ्यूजन्स के विकास पर भी काम करते हैं। हमारा उद्देश्य प्रकृति संसाधनों का उपयोग करते हुए लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति प्रेरित करना और साथ ही महिलाओं के लिए रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर उत्पन्न करना है।
0: तो मतलब ये जो आप खेती करती हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, तो इनका इन्फ्यूजन आप खुद बनाती हैं?
1: जी, हमारी एक फैक्ट्री है ना, तो उस फैक्ट्री में हमारी तो 20 वर्कर्स हैं, जो मैं तो फॉर्मूला बनाती हूँ और उन लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ और वो लोग मिल कर क्रश करते हुए फिर टी बैग में डालकर फिर पैकेजिंग करते हैं और फिर हम बना लेते हैं।
0: तो क्या आप बता सकती हैं अनुराधा जी कि ये जो प्रोसेस है, जो हर्बल टीज बनाते हैं, इन्फ्यूजन्स बनाते हैं, ये प्रोसेस कितना लंबा, कितने दिनों तक चलता है? मतलब मान लीजिए आपने प्लांट्स तो उगा दिए हैं, अब उसको हर्बल टी में बनाना है, उसकी जो इन्फ्यूजन पाउचेस हैं वो बनाने हैं, तो ये कितने समय लगता है इसमें?
1: तो ऐसे समय नहीं बोला जा सकती, क्योंकि जो देखो एक लतर से डायबिटीज़ की जड़ी बूटी बनाने हैं तो इसमें 3 या 4 पौधे होती हैं, इनको मिक्स करना करके ये बनाएंगे। तो सबसे पहले इन सब पौधों को अलग अलग से डिहाइड्रेशन करना है, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग, कटिंग, फिर उसका डिहाइड्रेशन करना है, उसके बाद हम उसको स्टोर करते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो हम उनको
0: मिक्सिंग करना है
1: फिर क्रश करना है और उसके बाद छोटी टी बैग मशीन की उसकी सहायता से
0: अप्रोक्सीमेटली जैसे कितना,
1: एक दिन या दो दिन में हम 500 या 1000 टी बैग बना सकते हैं एक वैरायटी के लिए।
0: ओके, और जैसे डिहाइड्रेशन होता है तो वो आप नेचुरल प्रोसेस से डिहाइड्रेट करते हैं या कोई ऐसा कोई अपैरेटस है या?
1: जी, मॉरिशस में हम नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं क्योंकि डिहाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें, तो हम डिहाइड्रेटर खरीदते हैं, हमने इंडिया से 3 डिहाइड्रेटर खरीदे हैं और उससे तो आसानी से मॉइस्चर कंट्रोल हो सकता है।
0: आई थिंक टाइम भी कंज्यूम नहीं करता वो उतना, बहुत जल्दी से हो जाता है।
1: 8 घंटे या 10 घंटे लेता है, लगता है एक प्लांट्स को डिहाइड्रेट मॉइस्चर रिमूव करने के लिए।
0: यानी मतलब मान लीजिए अगर नेचुरल प्रोसेस करें तो काफी दिन लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर
1: दिन लगेगी
0: और यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है
1: क्योंकि यहाँ की मौसम आज
0: बिल्कुल ट्रॉपिकल वेदर है, कभी भी बारिश हो सकती है, तो ये हमारी जो खेती उसको भी खराब कर सकते हैं, जो पौधे हैं उनको खराब सड़ा सकते हैं, इसीलिए फिर नेचुरल डिहाइड्रेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: इंडिया में होती है लेकिन मॉरिशस में नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल। तो जैसे लाजवाब एक प्रोजेक्ट है जहां पर हम मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर, जैसे अनुराधा जी बता रही हैं कि डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए भी ऐसे हर्बल प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो उनके बीमारी में काम आते हैं एज अ इन्फ्यूजन की तरह से। तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर अनुराधा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि और जैसे आपने बताया डायबिटीज के लिए है, तो ऐसी अन्य और कौन कौन सी बीमारियों के इन्फ्यूजन्स आपके यहाँ तैयार होते हैं?
1: हमारे यहाँ तो 24 बीमारियों की औषधि हम लगभग मिक्स करके लाचीजान बना लेती है।
0: हाँ हाँ,
1: हर्बल

0: रोटी बना लेती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, माइग्रेन, कोल्ड, कफ।
1: और क्या इसके लिए आप उनको कंसल्ट भी करती हैं और उनको प्रिस्क्राइब करती हैं कि कितना समय में कितना इन्फ्यूजन?
0: जी, हर पैकेजिंग में, या हर पैकेजिंग में लिखा हुआ है, ऑल डायरेक्शन तो पैकेजिंग में होते हैं, और जो मिलावट होती है तो सिर्फ मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ।
1: बिल्कुल,
0: तो मैंने इंडिया से सीखी है
1: ट्रेनिंग।
0: और ऐसे ही एक चीज, एक हर्बल्टी नहीं बनाई है हमने, तो जब भी मैंने मिक्स किया है तो उनको भारत भेजा है और वहाँ पर टेस्टिंग हो गई है, और लोगों पर यूज करने के बाद 3 महीने के बाद एक
1: मतलब एक रिसर्च, एक पूरी तरह से ऑफिशियल तरीके से, लीगल तरीके से इसका रिसर्च हुआ है बकायदा, और तब जाकर आपने ये लीगलाइज फॉर्म यहाँ पर अपनाया है।
0: अप्रूवल होती है, SGS की अप्रूवल होती है कि ये सही है, हम इसको यूज कर सकते हैं।
1: और अगर मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा इंसान आता है जो पहले से एलोपैथी की दवाइयाँ लेता है, तो क्या एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली वो ये इन्फ्यूजन्स को ले सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा?
0: ले सकता है, क्योंकि हमारे हर्बल्टी इन्फ्यूजन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जो साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि हमने सब सोच कर ये फॉर्मूला बनाई है।
1: और अब तक के मतलब आपने देखा है आपके करियर में कितने लोगों को इन सारे हर्बल टीज से फ़ायदा हुआ है, यानी खासकर जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस में थे या जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स रही, जैसे डायबिटीज़, तो ऐसे लोगों में से कितने लोगों ने आपको फीडबैक दिया कि उनके ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ा है?
0: हमारे यहाँ तो बहुत से फीडबैक आती है, फेसबुक पे या व्हाट्सएप या मेल पे भेजते हैं, क्योंकि हमारे जड़ी बूटी तो मॉरिशस में चारों सुपरमार्केट में बेचा जाता है, और फिर मॉरिशस ड्यूटी फ्री पैराडाइज में भी है, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत सी फीडबैक आती है। और जितने हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जड़ी बूटी अच्छी है, तो जितनी सेल्स होती है ना, तो सेल्स के
1: उस ग्राफ से आपको पता चलता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी अनुराधा जी, आपके जो सेल्स का जो आपका जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है?
0: तो
1: ये यही नाम से, मतलब आप किसी भी सुपरमार्केट में चले जाइए, सिख गौमेया, हाँ जी, इस नाम से ये लाचिजान या ये इन्फ्यूजन आपको प्राप्त हो सकता है। और जैसे बहुत सारी वैरायटीज, और आपने कहा 24 प्रकार की, 24 यानी 24 प्रकार की वैरायटीज हैं जिसमें आप इनको लेकर बिल्कुल ले सकते हैं। और अनुराधा जी, क्या ये मतलब ज़रूरी है कि मतलब जिनको डायबिटीज़ है वो ही ले, या फिर एक नॉर्मल भी ये इन्फ्यूजन्स को ले सकता है?
0: ये इन्फ्यूजन्स है, हर्बल टी है ना, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि हमें डायबिटीज है, मैं इंजेक्शन करती हूँ तो मैं ये हर्बल टी लेके अच्छी हो जाऊंगी। टाइप 2 हम उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये नॉर्मल हो गई है, और नॉर्मल पीपल भी ले सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को शुगर कंट्रोल करना है ना, तो उसको ले सकती है।
1: तो ये कंप्लीटली हर्बल है, कंप्लीटली हर्बल है, यानी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
0: कुछ भी नहीं मिला हुआ,
1: कोई जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी ही ले, आप नॉर्मल तरीके से भी आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। और बिल्कुल, अगर वैसे तो आजकल कहते हैं ना कि हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है और हेल्थ पर बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है, तो क्यों ना हो कि हम प्राकृतिक तरीके से अपने सेहत का पूरा ध्यान रखें। और हमारे मॉरिशस में ही उपलब्ध है दादी माँ के नुस्खों वाला ये इन्फ्यूजन, और ये इन्फ्यूजन बेशक हमारे हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। जैसे अनुराधा जी ने कहा कि अगर आप सच में, अनुराधा जी मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कंसल्ट करता है और वो पूछना चाहता है कि मैं नॉर्मल तो हूँ लेकिन मुझे कौन कौन से लाचिजान या कौन कौन से हर्ब्स लेने चाहिए या इन्फ्यूजन लेने चाहिए, मान लीजिए अगर किसी को नींद नहीं आती है रात को, तो क्या आप उनको भी कंसल्ट करती हैं? और
0: जी, हमारे हर्बल्टी में स्लीपलेसनेस की लाचिजान है, लेकिन अगर कोई अपने आंगन में कुछ सिट्रोनेला, लेमन ग्रास,
1: हाँ जी,
0: ग्रोइंग करते हैं, तो वो उसको यूज करके मोरिंगा, जो मोरिंगा मॉरिशस में बहुत सी मोरिंगा होती है, तो उनकी एकोस, लाइक वी से एकोस, मोरिंगा की एकोस, ये दोनों मिलाकर एक हर्बल टी बना सकते हैं। थोड़ी सी गर्म पानी में, बॉयल पानी में डाल के रात को पीने, तो ये अच्छा होता है स्लीपलेसनेस के लिए,
1: यानी नींद आती है उससे। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि मान लीजिए हमारे पास

0: तो टी बैग्स नहीं है यहाँ, डिहाइड्रेटेड पाउडर्स नहीं है इन लाचीजान के. तो अगर आपके ही आंगन में आप बता सकते हो, जैसे आपने कहा कि तुलसी है, मोरिंगा है, सिथोनेल है, ऐसे कई सारे प्लांट्स अगर उगाए हैं तो उनको हरे फॉर्म में ही, यानी जो ग्रीन फॉर्म्स है उसी में लेकर हम लोग इन्फ्यूजन्स तैयार कर सकते हैं.
1: कर सकते हैं क्योंकि ये तो अच्छा होता है ना,
0: नेचुरल
1: होता है. क्योंकि शाम को जैसे मॉरिशस में खाने के बाद कोई तो कॉफ़ी पीते हैं, हाँ. कोई तो चाय पीते हैं, तो कॉफ़ी और चाय पीने से तबीयत खराब हो जाती है. लेकिन आप अगर एक इन्फ्यूजन ले, जैसे कि अगर आप तुलसी लें तो ये रिलैक्सेशन के लिए अच्छा है. अगर आपके पास बिगाहट के लीव्स हैं कि हाँ. पत्ते हैं तो ये एंटी स्ट्रेस होते हैं. तो ये सब थोड़ी लेमन ग्रास में मिक्स करके आप उभार के पी सकते हैं, तो आपको आसानी से शाम को
0: रिलैक्स भी फील करोगे और आपको स्ट्रेस एकदम रिलीव हो जाएगा, रिलैक्स कम्प्लीटली फील हो जाएगा. बिल्कुल, ऐसी बहुत सारे हमारे ही हर्ब्स हैं जो हम अपने आंगन में बो सकते हैं, और साथ ही साथ इनको बोने के बाद हम इनका सीधा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हमें अनुराधा जी बता रही हैं. और ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं आज के इस कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अनुराधा जी से. तो बने रहे उड़ान की कहानी को अभी एक गीत के बाद जारी रखते हैं.

0: की कहानी, उड़ान की कहानी। जी हाँ, उड़ान की कहानी। और बिल्कुल अनुराधा जी जैसी ऐसी हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत ही निपुण हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं। और जैसे मेडिसिनल प्लांट्स की खेती करना और साथ ही साथ उनके छोटे छोटे पाउचेस बनाना और इन्फ्यूजन्स बनाकर लोगों तक पहुँचाना, बाज़ार में इस लेवल तक आ जाना कि सभी के हेल्थ का ख्याल रखना, कार्य कोई भी छोटा नहीं होता, बस सोच बड़ी होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और उसे अंजाम देने के लिए तैयारी होनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे मेडिसिनल प्लांट्स में डील करती हैं अनुराधा जी, और आज हमारे शो पर आई हैं, हमारा सौभाग्य है, बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिल रही हैं। तो मैं ज़रूर अनुराधा जी से पूछना चाहूँगी, अनुराधा जी आप जिस तरह से बता रही हैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, तो क्या आप खुद उगाती हैं मेडिसिनल प्लांट्स आपके यहाँ?
1: जी हाँ, मैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स खुद भी उगाती हूँ, लेकिन हमारा फोकस एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल पर है।
0: अच्छा।
1: ओके? तो हम ज़्यादातर महिलाओं को जो घर पर रहती हैं, काम नहीं करती हैं, काम नहीं जाती हैं, उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स उगाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके लिए हम उन्हें बेबी प्लांट्स प्रोवाइड करती हैं ताकि वे अपने घर या छोटे आंगन में उनकी खेती कर सके। तो हम उसको बायबैक लीव्स कहते हैं, एक प्रोजेक्ट है जो हमने शुरू किया है। बायबैक लीव्स मतलब कि हम उनको छोटा बेबी प्लांट देते हैं और जब तैयार हो जाते हैं तो हम लीव्स खरीदते हैं उनसे। तो जब तैयार हो जाते हैं तो हम उन महिलाओं से उनकी पत्तियां वापस खरीद लेती हूँ, इससे उन्हें एक सस्टेनेबल इनकम भी मिलती है और साथ ही वो अपने घर से ही आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
0: ये तो बहुत ही लाजवाब, एक तरह से बहुत ही बढ़िया प्लानिंग।
1: जी, इस मॉडल का मैं उद्देश्य सिर्फ प्लांट उगाना नहीं बल्कि महिलाओं को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है।
0: तो अनुराधा जी, आप महिलाओं को शिक्षित करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं इसके बारे में?
1: जी बिल्कुल, तो उसको सिखाना चाहिए कि कैसे ग्रोइंग करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स नहीं डालना चाहिए, तो
0: बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए।
1: ट्रेनिंग देती है और कैसे उसके आंगन को प्रोटेक्ट करना है ताकि कुत्ता जो भी,
0: हाँ, कोई भी पशु हो तो पशु वहाँ गंदा ना कर सके उसको। तो आप अब तक कितनी महिलाओं को ऐसे प्रशिक्षित कर चुकी हैं अनुराधा जी?
1: तो हम अन्य महिलाओं को शिक्षित और साक्षर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच अपनाते हैं। सबसे पहले हम उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देते हैं जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स की पहचान, उनकी खेती और तरीका, उनका सहयोग अपना समझना जाता है, समझाया जाता है। इसके बाद हम उन्हें हैंड ऑन ट्रेनिंग देते हैं जहां वे खुद बेबी प्लांट्स उगाना, उनकी देखभाल करना और हार्वेस्टिंग का प्रोसेस सीखे हैं। हम वर्कशॉप और अवेयरनेस सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिनसे उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल लिटरेसी और एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में गाइड किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम उन्हें सिर्फ नॉलेज नहीं देते बल्कि एक अर्निंग मॉडल भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आवर बायबैक लीव प्रोजेक्ट, जिससे सीखने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बनती है। हमारा उद्देश्य महिलाओं को सेल्फ रिलायंट बनाना और उनके अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप डेवलपमेंट करना है। तो अब तक मैंने मॉरिशस से लेकर रोड्रिक तक 300 से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। हम सोशल और वुमेन कम्युनिटी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उन्हें मेडिसिनल प्लांट्स, सस्टेनेबल लिवलीहुड और एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में ट्रेनिंग भी दी है।
0: तो ये एक बहुत ही बड़ी शाबाशी हम कह सकते हैं कि मतलब जिन्होंने एक ऐसा उद्देश्य कायम किया जहाँ पर वो केवल आगे, केवल खुद

0: आगे ना बढ़े, पर साथ ही साथ और महिलाओं को भी इसका प्रशिक्षण दे, उन्हें और सिखाएं, और साथ ही साथ और महिलाओं को साथ जोड़ें, खासकर उन महिलाओं को जो घर पर रहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, पर कई बार होता है ना कि बच्चों के कारण, परिवार के कारण बाहर नहीं निकल पाती, पर वो महिला भी घर पर रहकर ऐसा कार्य कर सकती हैं जहाँ पर वो खुद अपने पैरों पर खड़े रहकर काम भी कर सकती हैं, आमदनी भी कमा सकती हैं और दूसरों की भलाई भी कर सकती है, दूसरों के लिए काम भी आ सकती हैं। और यहाँ पर मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आप केवल महिलाओं को सिखाती हैं या आप पुरुष को भी सिखाती हैं अनुराधा जी?
1: दोनों को सिखाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं महिलाओं को सिखाती हैं, क्योंकि मैं बोलना, जैसे आपने बोला है ना, तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सिर्फ स्किल देना नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें अपनी आमदनी खुद कमाने के लिए सक्षम बनाना है।
0: बिल्कुल।
1: मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कई महिलाओं ने इस ट्रेनिंग के बाद अपना छोटा सा बिजनेस भी इनकम सोर्स शुरू किया है।
0: ये एक बहुत ही बड़ी बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बस लगभग अंत तक हम आ पहुंचे हैं, तो मैं पूछना चाहूंगी अनुराधा जी, आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण का जो ये शब्द है, आपके लिए क्या है?
1: मेरे लिए महिला सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ शिक्षा या रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। जब एक महिला अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं, अपनी आमदनी खुद कमा पाती हैं और अपने परिवार और समाज में अपनी पहचान बना पाती हैं, तभी वही सचना सशक्तिकरण होता है। मेरा मानना है कि साक्षात महिला सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और पूरे समाज का विकास करती हैं। इसलिए मैं महिलाओं को स्किल्स, नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज देने पर फोकस करती हूँ, ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें और एक स्वतंत्र जीवन जी सके।
0: बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूंगी अनुराधा जी, जितनी भी महिलाएं, जितने भी लोग इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर वे लोग भी आपसे कोई ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं।
1: ठीक है रत्ना जी, जो भी महिला सीखना चाहती हैं वो हमसे आसानी से संपर्क कर सकती हैं। हम मॉरिशस और रोड्रिग में अपने कम्युनिटी नेटवर्क, लोकल ग्रुप्स और ट्रेनिंग सेशन के थ्रू काम करती हैं। महिलाएं हमारे सोशल मीडिया पेज, व्हाट्सएप ग्रुप या लोकल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकती हैं। ओके, तो हम हमेशा नई महिलाओं का स्वागत करते हैं जो सीखने और आत्मनिर्भर बनने का इच्छा रखती हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप और हमारे बाय बैक लिव प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स में जानकारी देते हैं, ताकि वे अपने लिए सही तरीके से शुरुआत कर सके।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। और एक छोटी, ये एक ऐसा सपना है जिसे मैं समझती हूँ हर एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए ये मन में तय कर लेना बहुत ज़रूरी है कि बढ़ेंगे तो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और तब जाकर हमारा देश, हमारा जो जीवन है वो साकार होगा। तो जाते जाते अनुराधा जी, हमारे जितने श्रोता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: तो रत्ना जी, मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मैं अपने ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हमें हिम्मत करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। घर पर रहने वाली महिलाएं को ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी सिर्फ घर के कामों तक सीमित है। हर महिला के अंदर एक अलग शक्ति और क्षमता होती है। ठीक है, तो महिलाओं को चाहिए कि वे अपने आप पर विश्वास करें और किसी ना किसी साइड एक्टिविटी या स्किल में अपना समय इन्वेस्ट करें, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। जब एक महिला अपने आप से कहती है मैं कर सकती हूँ, तो वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। महिलाओं के पास जन्म देने की शक्ति होती है ना, तो जो एक बहुत बड़ा और अनमोल योगदान है। इस तरह उनके पास समाज में बदलाव लाने और नए सपने साकार करने की भी शक्ति होती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि महिलाएं सबसे बेहतर स्थिति में होती हैं कुछ नया शुरू करने के लिए, बस उन्हें अपना अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा अनुराधा जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। बस अंदर की शक्ति को हमें टटोलना है। और मैं हर कार्यक्रम में कहती हूँ, नारी को यूं ही शक्ति का सम्मान नहीं दिया गया, सच में वे शक्तिशाली है। जो जन्म दे सकती है वो पाल पोस कर बड़ा भी करती है, और साथ कहते हैं ना

0: कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने बागडोर संभाली थी अपने देश को आज़ाद दिलाने की, उसी प्रकार से हम भी आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाने के लिए अपने हाथ में अपनी बागडोर ले सकते हैं। और बिल्कुल इसी के साथ अनुराधा जी, आप यहाँ पर आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, अपना सहयोग दिया, और जो आपका उद्देश्य है, आपके सभी सपने साकार हों, आपका जो व्यवसाय है, आपने जो उद्देश्य हाथ में जो हिम्मत दिखाई है, उसके लिए बस ईश्वर आपको बहुत साहस दें। और इसी के साथ जितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं अनुराधा जी के साथ, और जितनी महिलाएं जुड़ना चाहती हैं, देर ना करें, बिल्कुल अनुराधा जी उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमेशा तैयार है। इसी के साथ हम हमारी टेक्निकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ शिव टेक्निक पर जुड़े रहे, हमारे साथ रहीं दीपशिका और रत्नमाला जी, उनको भी हम तहे दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे। हमारे सभी फॉलोअर्स का, व्यूअर्स का और ऑडियंसेस का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई उड़ान की कहानी अगले सप्ताह, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।
1: उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अर्षिता, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। नेत्रहीन व्यक्तियों की शिक्षा को विकेंद्रीकृत करना यानी डिसेंट्रलाइज करना, प्रशिक्षण के लिए आयु सीमा बढ़ाना तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना, इन सभी प्रस्तावों पर वर्तमान में विचार किया जा रहा है। दृष्टिहीन वालों के लिए समर्पित शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पुनर्गठन सरकार के एजेंडा में शामिल है। लुईस लाजस ट्रस्ट फंड के प्रशासन ने पिछले सप्ताह सरकार को इस संबंध में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी मिलें बोसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी होंगी। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता और टिकाऊ विकास की गारंटी माना जाता है, जो पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और अनुकूल है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी के तहत मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को बोसिको इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। गंगा तालाब प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन हाल के कई घटनाक्रमों के बाद अधिकारी अब इस प्रतिष्ठित स्थल

0: इस प्रतिष्ठित स्थान पर आने वाले आगंतुकों की गतिविधियों को बेहतर ढंग से विनियमित करना चाहती हैं। इसी उद्देश्य से कल कला एवं संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता में स्थल का दौरा किया गया ताकि प्रस्तावित उपायों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा सके। ये वर्तमान ब्रिटिश संगीत जगत के सबसे चर्चित समूहों में से एक हैं। जाज, आफ्रोबीट और हाई लाइफ संगीत के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध संगीत समूह कोको को ने 6 जून को पहली बार मॉरिशस में प्रस्तुति दी। एस्यू फ्रांसे दे मॉरिस में आयोजित ये कार्यक्रम उनके क्षेत्रीय दौरे के समापन पर हुआ जिसने स्थानीय दर्शकों का भरपूर दिल जीता। तो इसके साथ अब हम बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। इसराइल ने कहा कि ईरान समर्थित मिलिशिया और राजनीतिक संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ उसका युद्ध लेबनान में जारी रहेगा। ये संघर्ष तब शुरू हुआ जब हिजबुल्ला ने इसराइल पर रॉकेट दागे, जो ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या के बाद अमरीकी इसराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत के बाद हुआ था। इसके जवाब में इसराइल ने लेबनान पर एक हवाई अभियान चलाया जिसमें 3,600 से अधिक लोगों की मौत हुई जिनमें कई नागरिक भी शामिल हैं। साथ ही इसराइल ने दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और जहां कई गांव पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। बासेन रोड रिवियर जोरोंपो में 70 साल के जनाब फिरोज मेहराली जिन्हें फिरोज के नाम से लोग ज्यादा जानते थे इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज रात 8:30 बजे इनकी बेगम सफीदा मेहराली के मकान रिवियर जोरोंपो से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट लास्को का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। लोरेटो कॉन्वेंट स्ट्रीट क्यूपिप में 77 साल के श्री जय प्रकाशस रामसरन जिन्हें जगदीश के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शांतिबाई रामसरन के घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगहा शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। सुल्फिरिनो नंबर पाँच वाकुआ में 68 साल के श्री धर्मरोध देवी जिन्हें राजेश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे कुशल देवी के घर वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

आज की चर्चा इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस प्रोग्राम को लेकर हम आ गए हैं आपकी सेवा में। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, इस कार्यक्रम को इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर

0: साथ ही इसे लाइव देख पा रहे हैं एमबीसी के चैनल 3 पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर। ये भी बता दें कि इसी प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है आप देख पाएंगे आज ही दोपहर के 4 बजे एमबीसी के चैनल 3 पर, और साथ ही इसे सुन पाएंगे दोबारा रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे से। तो आइए आज की चर्चा प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं। अभी के समय में कम्युनिकेशन हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे तो हमेशा से ही था, लेकिन बदलते वक्त के साथ देखा जा रहा है कि कम्युनिकेशन की बात करें तो हर एक रिश्ते की नींव कहते हैं कम्युनिकेशन होती है। किस तरह से हम अपनी बातों को औरों के सामने रखते हैं, किस तरह से हम अपनी बात को समझा पाते हैं, किस तरह से हमारे हाव भाव होते हैं, किस तरह से हमारा व्यवहार होता है, कम्युनिकेशन जो है इन सभी बातों पर गौर करता है। और आज के इस विषय पर जो है ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच जो है निवेदिता जी जुड़ चुकी हैं, निवेदिता गरोडिया जी, जो कॉर्पोरेट और गवर्नेंस वेलबींग लीड है अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस से है, और आज इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पर हमें बहुत सारी जानकारियाँ देने वाली हैं। तो निवेदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सुमिता जी, एंड अच्छा लगा मुझे आपने इस विषय को चुना, क्योंकि बहुत लोगों को शायद इसकी ज़रूरत है और हम इससे जुड़ेंगे। और
0: बिल्कुल, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कहते हैं ना कि हर एक रिश्ते की नींव ही कम्युनिकेशन होता है, और अभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत सारे रिश्तों में दरार आ रही है, बहुत सारे रिश्ते जो है बिगड़ते जा रहे हैं। और कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सिर्फ हमारे पर्सनल लेवल तक सीमित नहीं है, यानी कि हमारे निजी रिश्तों तक सीमित नहीं है। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, भाई बहन की बात करें, पति पत्नी की बात करें, कम्युनिकेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है घर के बाहर भी। फिर चाहे हम स्कूल में हैं, हम कॉलेज में हैं, या वर्क लाइफ अपने प्रोफेशनल लाइफ में हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन क्या है।
1: बहुत ब्यूटीफुल है ये चीज़ को अगर हम एक बार देखेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं। हम पहले हिस्से में बात करते कि कम्युनिकेशन होता क्या है, किसी से कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जब भी समझा है, कम्युनिकेशन एक पार्ट ऐसा होता है कि जो भी बोल रहे हैं वो कम्युनिकेशन है। जब भी हम बात करेंगे किसी व्यक्ति से, किसी भी चीज़ में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, तो जब वर्ड्स निकल रहे हैं उसे हम कम्युनिकेशन मानते हैं। बट एक्चुअली कम्युनिकेशन बहुत ब्रॉड तरीके से हो सकता है। सबसे पहले हमारा सबसे पहला कम्युनिकेशन है अपने आप से। आप अपने आप को क्या कम्युनिकेट करते हैं डेली बेसिस पे। अब जब मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हैं, तब आपके अंदर क्या विचार आ रहे हैं, उन विचारों पे आप कैसे हर एक विचार के ऊपर आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप अपने आप को क्या नैरेटिव दे रहे हैं, रोज़ क्या बोल रहे हैं अपने आप को कि हाँ कुछ कहीं जगह पर आप कहीं पर आप अटक गए हैं, किसी जगह पर आपकी सीमा मतलब हो गई है कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, नेगेटिव हैं आप, या कहीं जगह पे आप बहुत दबाव में हैं, तब उस समय आपकी क्या कम्युनिकेशन है अपने आप से। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत अपने आप से होती है कि हम अपने आप को बार बार क्या बोल रहे हैं। जब हम अपने आप को बार बार समझने लगते हैं कि हम अपने आप को जो बोल रहे हैं वो ही हम बन रहे हैं, और जब हम बनने लगते हैं तो हमारे एक्शंस में वो आता है। तो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन है हमारा एक्शन, हमारा एक्सप्रेशन। हम क्या लोगों को दिखा रहे अपने एक्शन से, अपने एक्सप्रेशन से, इंस्टेड ऑफ उन शब्दों को बोल के बताना लोगों को कि मैं बहुत बड़ी महान इंसान हूँ, या मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने इतनी इतनी बिजनेसेस में इतना इतना काम किया है। आपको लगता है उन वर्ड्स का कुछ महत्व है? इनसे सबसे ज़्यादा अगर सबसे अच्छा कम्युनिकेशन लोगों से हो सकता है तो पहले खुद से शुरुआत हो कि हाँ मैं क्या हूँ और मैं किस लिए हूँ, मेरा क्या कार्य है और मुझे क्या बनना है। उसके बाद उन्हीं सब शब्दों में मेरा जो डेरिवेशन है लोगों के प्रति वो ही हो जो मुझे बनना है या जो मैं हूँ, एक कंपैशनेट की तरह, एक हृदय से हम लोगों को मिले जब भी मिले, तो वो वर्ड्स और एक्सप्रेशन के थ्रू शुरुआत होती है।
0: बिल्कुल, मतलब कि कम्युनिकेशन के आम तौर पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो लोगों के मन में यह आता है कि हम औरों के साथ किस तरह से बात कर रहे हैं, है ना, औरों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत आपने जैसे की

0: कि कम्युनिकेशन तो सबसे पहले ये है कि हम अपने आप से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसी पहलू को शायद कभी कभार हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कभी कभार हम अपनी ही भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, हम अपने ही जो है इमोशंस को नहीं समझ पाते, और जब हम खुद को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सामने वाले व्यक्ति को कैसे समझ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की शुरुआत हम से होती है, क्योंकि जब तक हम छोटे हैं, माता पिता हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, हमारी देख रेख कर रहे हैं, तब तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारा अपने आप से भी जो एक रिश्ता है वो जुड़ने लगता है, और हमारा अपने आप से रिश्ता कैसा है वो दिखाता है कि हम औरों के साथ कैसे हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं तब तक हम औरों को नहीं समझ सकते। कहते हैं ना कि अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो वो खुशी आप औरों को कैसे दे सकते हैं। तो अपने आप में खुश रहना भी एक तरह का कम्युनिकेशन है जो हम खुद से कर रहे हैं। तो चलिए, आपने एक बहुत ही सुंदर पहलू से इस कार्यक्रम की शुरुआत की कि किस तरह से हमें अपने आप को समझना है। अब इसी कम्युनिकेशन को अगर हम दूसरे स्टेज तक ले जाए या अगले पड़ाव तक ले जाए, तो सबसे पहला कम्युनिकेशन बच्चे का जो है अपने माता पिता से होता है, है ना, क्योंकि माता पिता को देखकर ही तो बच्चा बड़ा हो रहा है, देख रहा है, चीज़ों को जान रहा है। तो इस पर आपके क्या विचार है?
1: जब एक बच्चा शुरुआत से लेकर अपनी जर्नी शुरू करता है, हमेशा पेरेंट्स जो होते हैं या जो माता पिता होते हैं वो उनके फर्स्ट गुरु कह दीजिए या टीचर कह दीजिए, या सबसे पहला एजुकेशन जो हमारा शुरुआत होती है वो हमारे माता पिता से होती है। अब जब अगेन बच्चा देखकर ज़्यादा सीखता है इंस्टेड ऑफ जब वो हम बच्चे को कुछ बोल बोल के समझाते हैं, तो हमें वहाँ पर देखना है कि हम क्या एक्चुअली उनको दिखा रहे हैं। यूजुअली अभी के दिनों में अगर हम देखा जाए तो जैसे माता पिता आज के समय बहुत अपने स्ट्रेस में रहते हैं, अपने कार्य में रहते हैं, अपने आप को इंडल्ज करके रखते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, जहाँ पे इतना समय नहीं दे पाते बच्चों को। तो वो चीज़ क्या है, इनडायरेक्टली उन बच्चों पे इफ़ेक्ट करता ही करता है। जब आप देखेंगे कि वो लोग भी ये चीज़ देख रहे हैं कि हम कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन पे हैं, अपने लैपटॉप में हैं, अपने कार्य में, कि वी कैन नॉट, हम लोग अपने आपका समय उन बच्चों को नहीं दे पाते। सो कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है कि कई जगहों पे हमें देखना है कि क्या हमारे जनरेशन के लिए हम सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल।
0: एग्जैक्टली,
1: आप जो भी बना रहे हैं, अभी जितनी भी अर्निंग कर रहे हैं, आपकी लाइवलीहुड जी रहे हैं, उससे आपके जनरेशन का आप एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। तो हम थोड़ा सा अपने लिए तो समय निकालें कि हाँ, मैं पहले अपने आप को वापस ले आऊँ जहाँ से मैं आया हूँ, और फिर उसी समय अपने जो सामने वाली जनरेशन है, जो मेरा बेबी है, जो बच्चा है, उसके लिए मैं समय निकालना शुरू करूं, ताकि वो उससे सीखना शुरू करे जो आदतें हैं, जैसे वी विल नॉट स्मोक, हम कुछ स्मोकिंग नहीं करें, अल्कोहल नहीं लें, कॉन्स्टेंट फ़ोन पे ना रहें, टीवी पे ना रहें, कुछ ऐसी चीज़ें ना खाएं जो बाहर ले जाके बच्चे को भी खिलानी पड़े। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट है कि वो सीखता है। तो बच्चों के अंदर भी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, इन टर्म्स ऑफ वो फिर अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे अपने माता पिता के अराउंड। जब वो लोग देखेंगे माता पिता खुश हैं, कंपैशनेट है, अगेन वो बच्चों को प्रेम देते हैं, तो वो लोग भी कंफर्टेबल होते हैं पास में आने में। अगर हम आउटरेजियसली थोड़ा सा अपना गुस्सा बार बार दिखाएंगे, टोकेंगे, मना करेंगे, बार बार रोकेंगे, उनके अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि वो भी फिर डरते हैं कम्युनिकेट करने में, बताने में, एक्सप्रेस करने में। तो हमें उनको ओपन छोड़ देना चाहिए।
0: जैसे आपने कहा कि एक बच्चा जो है, जो आप उसे बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उससे ज़्यादा बच्चे जो है कॉपी करते हैं ना। जैसे कि आप अगर बच्चे को ए बोल रहे हो और खुद बी कर रहे हैं, तो बच्चा फिर इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं माता पिता हो गए या टीचर्स ही क्यों ना हो गए, अगर बच्चों को हमें कुछ सिखाना है तो पहले वो सारी चीज़ें हमें खुद के अंदर ढालनी चाहिए, है ना।
1: Exactly.
0: क्योंकि बच्चा तो ज़्यादातर आपके हाव भाव को देखकर सीख रहा है, आपके उठने बैठने के तरीके को देखकर सीख रहा है, आपके बात करने के तरीके को देखकर सीख रहा है, और कहीं ना कहीं हमारा जो बर्ताव होता है वही रिफ्लेक्शन हमें अपने बच्चे में दिखाई देता है। कभी कभार हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है ना। हम तभी नहीं सोचते कि जाने अनजाने में शायद हमने ही कोई ऐसी चीज़ कर दी होगी उनके सामने जो हमें पता नहीं है, लेकिन उस बच्चे ने कैप्चर कर लिया और बच्चा वही कर रहा है। तो एक माता पिता के लिए बहुत कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है ना, कि किस तरह से जो है हम चीज़ों को कर रहे हैं या ले रहे हैं।
1: आप क्या

वाइब्रेशंस इमिट कर रहे हैं. मतलब अगर आप आपके वाइब्रेशंस जितने वाइड होंगे और जितना लवेबल होंगे, कि पहला कि मेरी जो सोच है उससे मेरे वाइब्रेशंस बन रहे हैं, तो मैं हमें

होता है ना कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हमें मिलकर लगता है कि हम काफ़ी समय से इसे जानते हैं, तो एक एक व्यक्ति का वाइब्रेशन ही होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है, या कभी कभार किसी से मिलते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, तो व्यक्ति का वाइब ही होता है जो हमें बताता है कि हमें उनसे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ बोलने के पहले हमारे आसपास जो हमारा वाइब्रेशन है वो सामने वाले व्यक्ति को दिखाता है कि हम क्या है और कैसे है। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ कम्युनिकेशन क्या हम बोल रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, सिर्फ हमारी वाणी या बोली तक सीमित नहीं है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे हाव भाव, हमारे मन के विचार, हम क्या सोच रहे हैं, ये सब पर भी निर्भर करता है। और अब हम टीचर्स पर आते हैं। स्कूल बच्चे जब छोटे होते हैं फिर कुछ साल बाद स्कूल की

0: क्वेश्चन, क्या हम बोल रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं, सिर्फ हमारी वाणी या बोली तक सीमित नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे हाव भाव, हमारे मन के विचार, हम क्या सोच रहे हैं, ये सब पर भी निर्भर करता है। और अब हम टीचर्स पर आते हैं। स्कूल, बच्चे जब छोटे होते हैं, फिर कुछ साल बाद स्कूल की
1: जो है, टीचर्स जो है उनके लिए अपना जीवन देखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप अपने आप को कितना काम डाउन कर पा रहे हैं। आप अपने आप को देखिए कि आपकी जो वाइब्रेशंस है, अगेन आप जो सोच रहे हैं या जो आपके अंदर जो इमोशंस हैं वो बच्चों पे सबसे पहले प्रभावित होगी। तो कैसे मैं उस चीज़ को डराइव करके चैनलाइज करूँ कि ताकि बच्चे मेरे उन डिप्रेशन या इन जो भी इमोशंस हैं उनसे प्रभावित ना हो। तब जाके ब्रॉडरली एक टीचर अपने सब्जेक्ट को, अपने एजुकेशन एस्पेक्ट्स को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर सकता है। बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे कि उनकी जो टीचिंग स्किल्स हैं, जो उनकी जो मेथड्स हैं, वो बहुत अलग तरीके से वो लोग लेकर आते, क्योंकि दे आर नॉट होल्डेड, मतलब वो पीछे नहीं है, रुके हुए नहीं है, उनको पकड़ा नहीं गया है कि आप अपने घर से कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो लेके चल रहे हैं, सोशल लाइफ से कुछ प्रॉब्लम है या वर्क लाइफ, वो चीज़ें उन्होंने छोड़ी, उनको रिलीज़ करना आया, तब जाके वो और एक्सटेंसिवली बच्चों के साथ जुड़ पाते हैं। तो अगेन ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड है, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स के सबसे बड़ा समाज को बनाने का जो सबसे बड़ा कार्य है वो एजुकेटर्स पे है, टीचर्स पे है। आज का जो समाज बन रहा है, पोल्यूशन है या क्राइम है या बहुत ज़्यादा इनजस्टिस है, सबसे बड़ा रोल जो है वो टीचर्स के ऊपर होता है कि कितना टीचर्स जो एजुकेटर्स है वो एजुकेशन में आगे लेके दे रही हैं, उसी से हमारा समाज बढ़ता है और बनता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले एड्रेस करें कि अगेन मेरा कम्युनिकेशन मेरे साथ क्या है,
0: कैसा है। एग्जैक्टली, इसलिए तो कहा जाता है ना, कभी कभार हमें अपने जो है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहिए। यहाँ पर कम्युनिकेशन ही आ जाता है, कम्युनिकेशन का तरीका आ जाता है, क्योंकि हम अपने पर्सनल, अपने सोशल स्ट्रेस को लेकर अगर सामने वाले को एड्रेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे वो इमोशंस भी झलकते हैं उसमें। Exactly. तब फिर हम जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ को जो है उस तरह से नहीं ले जा पाएंगे आगे जिस तरह से हमें ले जाना चाहिए कॉन्शियसली, क्योंकि हम अपने इमोशंस में घिरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने जो है पर्सनल इमोशंस से हमें निकल कर बाहर आना चाहिए ताकि हम जो है बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करें। और अगर बच्चों की हम बात करते हैं तो नौजवानों को हम कैसे भूलें। आजकल नौजवान जो है उनके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आजकल एक बच्चा हमसे ज़्यादा जानता है, एक टीचर से ज़्यादा जानता है कहे तो ना, क्योंकि एक बच्चा अपने आप को ऐसे ही लेता है कि मुझे ज़्यादा पता है, क्योंकि गैजेट्स कहे, लैपटॉप कहे या सोशल, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल जहाँ से हो सके उन्हें हर तरह का नॉलेज मिल रहा है, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना ही पेरेंट्स का कंट्रोल है, ना ही टीचर्स का कंट्रोल है, ना ही खुद उस बच्चे का कंट्रोल है, क्योंकि इतने सारे कॉन्टेंट वो एक दिन में, इतनी सारी चीज़ें वो एक दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। और वहीं पर जब माता पिता और टीचर्स जब कुछ उन्हें बताने जाते हैं तो फिर बच्चा सोच में पड़ जाता है कि मैं इसे फॉलो करूं या उसे फॉलो करूं। तो ऐसे में बच्चे के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। हम कभी कभार उस बच्चे को दोष देते हैं कि आजकल के बच्चे बात नहीं सुनते, लेकिन बच्चा भी अपने आप में अभी के युग में ना, क्योंकि हम अपनी बात करें 80s के सालों की, तो हमारे टाइम में दुनिया अलग थी, फिर बाद में दुनिया अलग है, और अभी के टाइम में दुनिया अलग है। तो जो चैलेंजेस बच्चे फेस कर रहे हैं हमें उनको भी समझना है। तो अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो इन सभी चीज़ों को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं।
1: एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी जो कि अभी रिलीज़ हुई, पब्लिक हुआ, जिसमें देखा जाता है कि जैसे आप अपनी फैमिली के साथ बाहर डिनर पर गए हैं, इवनिंग डिनर है या लंच पर गए हैं, लेट्स सपोज से होल फैमिली गैदरिंग है, सब मिलके बाहर गए हैं, होता क्या है कि जितना समय एक व्यक्ति अपने ऑनलाइन जब व्हाट्सएप कॉलिंग या फेसबुक कॉलिंग या एक वीडियो कॉल पे बिताता है, एक कनेक्शन बनाता है या इतना अच्छे से समय बिताता है, उससे कम समय आप अपने डिनर पे बिताते हैं। वो देखेंगे उस टेबल पे, आप देखेंगे सब कोई व्यक्ति बैठा है, उस प्रेजेंट मोमेंट पे बैठे हैं, बट कोई भी प्रेजेंट नहीं है बिकॉज वो अपने फ़ोन में है। तो उस समय लगता है कि वो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कम्युनिकेट कर रहा है
0: एक दूसरे से।
1: और उसके अपोजिट क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब घर पे होता है अपने खुद के वीडियो कॉल से, फेस टाइम से या कुछ भी कह लीजिए,

0: से ज़्यादा जुड़ता है जितना वो दूर रहता है। तो ये स्टडीज़ बता रही है कि वीडियो कॉल ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है आपको लोगों को घर पे बैठा बैठे, और आपके टेबल पे जब आप बैठते हैं तब आप बात नहीं कर पाते क्योंकि आप फ़ोन पे होते हैं। तो एक सोशल मीडिया का एक अच्छा भी एक इम्पैक्ट है, और एक सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट ऐसा है कि वो हमें उसी के अंदर ले जाया जा रहा है। जब हमें खुल के बात करनी होती है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ, तब हम शायद अपने ही उस रोल में रहते हैं जहाँ पे हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं उस मीडिया के थ्रू, जहाँ पे हमें लगता है कि वो सच है। तो इट्स अ वेरी लाइक कंसर्निंग थिंग अगेन। बहुत ज़रूरी है इसको हमें ध्यान देना कि जब हम बाहर कहीं जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ या फ्रेंड्स या सोशल लाइफ में हैं, हम लोग उस चीज़ में ऐसा रहे कि हम अपने कम्युनिकेशंस को कैसे एक्सप्रेसिवली अगेन बात कर सके, अपने सोशल मीडिया को हम दूर रखें, अपने फ़ोन को दूर रखें और मिलके करें, तब यंगस्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस ज़्यादा कर पाते हैं। एंड एक और चीज़ जो है यंगस्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस समय जब हम इस एज में होते हैं कि हम ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, हम अडल्ट की ओर जा रहे हैं, हमारे जो ग्रोइंग फेज़ है उस समय हमारे जो इमोशंस है वो अप एंड डाउन अपहीवल्स में होते हैं अगेन। तो हमारे जो इमोशंस हैं अगेन, उसे कैसे हम लोग निकालें, नॉट थ्रू सोशल मीडिया बट बाय सेइंग कि किसी भी व्यक्ति को हम कम्युनिकेट करें, जैसे सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट हमारे पेरेंट्स हैं, तो यू कैन एक्सप्रेस दैट आउट। आप लिखिए, कम्युनिकेशन में एक लिखना भी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे ही कम्युनिकेशन हमें क्लियर होते हैं कि हमारे विचार है क्या, चल क्या रहा है, तो हम उसको राइट इट डाउन, लिखना शुरू करें, जितना हो सके लिखें, जितना हो सके अपने आप को डिराइव करें कि यू आर नॉट दोज थॉट्स, आप वो विचार नहीं हैं जो आपको लगता है कि आप परेशान कर रहे हो। और कई जगहों पे जब आपको हेल्प लगा कि आपको लगता है कि यू वांट टू स्पीक, आप जाइए अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिए एक्सप्रेस की। तो यंगस्टर्स के लिए इट्स अ टाइम ऑफ ग्रोइंग चेंज, कॉन्स्टेंट रैपिड चेंज, करियर वाइज, फैमिली वाइज, सोशल मीडिया वाइज, सोशल वाइज, अपने अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उस समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने जो डेरिवेशंस है, मैंने अपने आप को क्या बोलना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो ज़रूर हम देखें।
1: कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की बात करते तो उसमें जर्नलिंग भी आती है, जैसे आपने कहा लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभार बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे ही नहीं बड़े और हम भी हैं, जहाँ पर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो उस समय बहुत से जो है थेरेपिस्ट या है वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप जर्नलिंग करना शुरू करें, आप लिखना शुरू करें, मतलब कि अपने विचारों को लिखना शुरू करें, तब आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मन में इतना कुछ चल रहा होता है कि हम एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम खुद ही नहीं जानते कि हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। और जब हम अपने आप को जो है लिखना शुरू करते हैं, अपने विचारों को जो है नोट डाउन करना शुरू करते, तो ऐसे में हमारे लिए भी एक क्लैरिटी होती है कि हम अपने लाइफ से क्या चाहते हैं। और जब क्लैरिटी खुद के साथ होती है तो धीरे धीरे वो क्लैरिटी सामने वाले के साथ भी आने लगती है। और कहते हैं ना कि जब आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तो आधे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वहीं मिल जाता है, है ना। चलिए, जितने भी श्रोता और दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार बांटना चाहते हैं, तो 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए एक गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

चले एक बार फिर से हमारे सभी श्रोता और सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज की चर्चा इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं और आज इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ जो है निवेदिता जी जुड़ी है। खुद जो है वो यू कैन सी कि काफ़ी कम उम्र की है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए हमें कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी दे रही है। ऐसे आपका भी जो है बहुत से लोगों के साथ मिलना जुलना होता है, आप कॉर्पोरेट लेवल पर भी लोगों को जाकर अभ्यास योग वगैरह के बारे में सिखाती है। तो सिर्फ वहाँ पे योगा के पोस्चर्स ही नहीं, वहाँ पर कम्युनिकेशन भी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, आप चाहे किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, आप चाहे किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो।

0: कम्युनिकेशन हर एक फील्ड की नींव है ना। फिर चाहे आप मेडिकल से जुड़े हुए हो, फिर चाहे आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हो, इंजीनियरिंग से जुड़े हो, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, तो आपसे हम जानना चाहेंगे निवेदिता जी, सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू यू?
1: जब हम कम्युनिकेट करते हैं या जब कम्युनिकेशन की बात आती है, सो सबसे बड़ी चीज़ उसमें होती है आप उस व्यक्ति को कितना सुन रहे हैं। आपके सामने जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को आप कहाँ कितना डीप लिसनिंग कर रहे हैं, एम्पेथिकली आप उसे कितना समझ रहे हैं। क्या आप सिर्फ वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आप वहाँ पे होते हैं कि सिर्फ मेरे को जो पता है, जो मुझे नॉलेज है, या मैं ही बोलूँगी, या मेरे पास ही डोमिनेशन है, पावर है, तो मुझे ही बोलने का राइट है, तो मैं वहाँ पे सिर्फ बोल के आ जाऊँ? या क्या आप लिटरली कम्युनिकेशन जानते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो सबसे पहला होता है डीप लिसनिंग का, या फिर आप समझ लीजिए उसको सुनना।
0: बिल्कुल।
1: आप क्या उस व्यक्ति को अलाउ करते हैं सुनना, कि आप वो जो व्यक्ति बोल रहा है वो आप अलाउ कर रहे हैं, कि आप उसे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति वैल्यू भी फील करेगा।
0: एग्जैक्टली।
1: और जब वो व्यक्ति वैल्यू फील करेगा तो इतनी रिस्पेक्ट से आपको भी वो सुनेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: इंस्टेड के मैं सिर्फ बोल के कि ठीक है स्मिता जी ये चीज़ें हैं, ऐसे करके आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, क्या आप मेरी बात समझेंगे या सुनेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इसमें हम क्या बोल रहे हैं सिर्फ वही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सुनना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और ये सुनना शायद हर एक हमारे जीवन के पहलू पर भी लागू होता है। हम बच्चों की बात करें तो बच्चे माता पिता की बात कितना सुन रहे हैं, या माता पिता अपने बच्चों की बात कितना सुन रहे हैं, है ना?
1: Exactly.
0: अगर हम प्रोफेशनल फील्ड की बात करते हैं, जहाँ काम काज कर रहे हैं, हमारे सुपीरियर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, जब हम उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ हम या क्या सिर्फ वो हमें बोलकर सुना रहे हैं या हमारी भी बात सुन रहे हैं? तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर बोलना जितना ज़रूरी होता है, लिसनिंग स्किल्स भी उतने ही मायने रखते हैं।
1: क्योंकि जब आप सुनेंगे उन व्यक्ति को तो आपकी आधी चीज़ें क्या है वहाँ पर सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी सारी चीज़ें बता रहा होता है कि जो आप बोलने वाले थे ना, उससे पहले ही आपको पता चल जाता है कि नहीं, यहाँ पे किसी व्यक्ति को कुछ और ज़रूरत है।
0: Exactly.
1: जब आप डीप लिसनिंग करते हैं।
0: Exactly.
1: दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में, वो पहला तो है सुनना, डीप लिसनिंग, दूसरा है आप कितना अपनी साइलेंस, अपनी मतलब एक शांत गंभीर होके आप उस जगह पे रह के कितना कम्युनिकेट कर सकते हैं। 10 लोग हैं या 20 पीपल की एक पूरी कम्युनिटी है, या मेंबर्स आर सिटिंग टुगेदर बैठे हैं, उस समय आप कितने शांत हैं, आपके पास विचार बहुत है, आपके पास आइडियाज़ बहुत है, आपको लगता है कि इन आइडियाज़ को लाएंगे तो बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बट उसी समय आपके जो विचार है, जो आइडियाज़ है, वो वर्ड्स में कितने प्रभावशाली डिलीवर होते हैं, वो डिपेंड करता है आप कितनी शांत है उस समय और कितना आप लोगों को अलाउ कर रहे हैं पहले बोलने के लिए।
0: एग्जैक्टली। क्योंकि ये अपने आप में दिखाता है कि आप सामने वाले की कितनी रिस्पेक्ट भी करते हैं ना।
1: Exactly.
0: क्योंकि जब आप खुद ही बोले जा रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि आपने उसे बुलाया है सिर्फ अपनी बात कहने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन टू वे हो, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो वहाँ पर बोलना जितना ज़रूरी है उतना सामने वाले को बोलने देना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाकर हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल प्ले करते हैं और तभी जाकर किसी भी काम को हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं।
1: आपके पास नॉलेज बहुत होगा, इन्फॉर्मेशन भी बहुत होगी, कि आपने बहुत सारी जगह से बहुत इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सब कुछ गेन कर लिया, बट अगर आप देखेंगे तो आज के समय में उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती, क्योंकि हर एक चीज़ आपके डिवाइस में है। आपको जो व्यक्ति वो चीज़ बता रहा होगा ना, वो चीज़ आपको पहले मिलेगी, तो उनकी वैल्यू आज के समय नहीं है जितनी वैल्यू आपके उस व्यक्ति के प्रेजेंस की है। जब आप किसी दुविधा में होंगे, जिस किसी इमरजेंसी में होंगे, किसी पीड़ा में होंगे, या कैसे भी किसी भी सिचुएशन में होंगे, तब उस समय की नॉलेज, उस व्यक्ति की नॉलेज या उस व्यक्ति का सॉल्यूशन देना आपको अच्छा लगेगा, या उस व्यक्ति की प्रेजेंस आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी?
0: बिल्कुल। इस पर एक एग्जांपल ये भी आता है ना कि कभी भी हमें सलाह की ज़रूरत पड़ती थी कि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं ना, या जो एक्सपीरियंस होते हैं, या घर के बड़े होते हैं, या कोई हमारा ऐसा दोस्त होता है

0: जिस पर हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। तो कभी कभार उस व्यक्ति का होना ही आपके लिए काफ़ी होता है कि आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति सभी से अपनी दिल की बात नहीं कह पाता है ना। क्योंकि कभी कभार हम सालों से अपनों के साथ रहते हैं लेकिन दिल की बात उन्हीं से कहते हैं जिनके साथ कनेक्शन होता है, जिस पर विश्वास होता है।
1: तो आपका प्रेजेंस इज ऑल यू नीड, कि आप जब प्रेजेंट होना शुरू करेंगे किसी भी कम्युनिकेशन में, आपकी प्रेजेंस इज़ मोर देन आपके वर्ड्स से। दूसरा, सबसे थर्ड इम्पॉर्टेंट, जो कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि कोई भी चीज़ आप कितने कम शब्दों में उस चीज़ को डिराइव कर देते हैं या बता देते हैं, वो सबसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। एक व्यक्ति है जो कम से कम 11-15 मिनट बताया जा रहा है और वही सेम चीज़ को किसी एक व्यक्ति ने आके कुछ शब्दों में 3-4 मिनट्स में बता दिया, वेरी इजी लैंग्वेज में। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगा कि आप कम शब्दों में सबको बता सकते हैं कि एक्चुअली क्या है, इंस्टेड ऑफ कीप सेइंग के बात करते जाए करते जाए। क्योंकि उससे क्या होता है, आदमी व्यक्ति जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। तो लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स, कम शब्दों का उपयोग करने से भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बढ़ती है, आप और अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। दूसरा, आपकी शांत, आपका गंभीरता और आपका सुनना लोगों को पसंद आता है। आपकी प्रेजेंस जब आप रहते हैं तो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आपके एक्शन से आप कम्युनिकेट कीजिए। सो जो फोर्थ पार्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ थ्रू योर एक्शंस। मैं योग सिखाती हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए और रात को निद्रा अच्छी लेनी चाहिए। चीज़ मैं बोला वही चीज़ अगर मैं नहीं करती तो डिफरेंट है, और वही चीज़ मैं करके दिखाऊँ लोगों को कि हाँ मैं भोजन एक्चुअली अच्छा कर रही हूँ, निद्रा अच्छी ले रही हूँ, लाइफस्टाइल अच्छी है और योग करती हूँ, तब लोग उसको देख के तुरंत अपने आप उतारेंगे। इंस्टेड ऑफ आई गो एंड स्पीक ऑन द माइक एंड कीप सेइंग मैं किसी को बात कर रही थी।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
0: यानी कि आप जब खुद हेल्दी नहीं है तो किस तरह से सामने वाले को आप हेल्दी ऑप्शंस जो है चूज़ करने के लिए कह सकती है ना। क्योंकि आप जब खुद ही उस चीज़ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर रही है तो किस तरह से आप औरों को सलाह दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिसनिंग स्किल्स की बात करें, अभी के समय में हम देखते हैं कि परिवारों में अगर हम बात करें तो ये सभी पर लागू होता है। फिर चाहे हम पेरेंट्स और बच्चों की बात करें, जहाँ पर बच्चे अपनी बात कहते हैं लेकिन पेरेंट्स सुनने को नहीं देखते हैं, पेरेंट्स अपनी बात कहना चाहते हैं बच्चे सुनने को नहीं देखते हैं, और उसी घर में अगर बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो बच्चों के पिता उनके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी होता है कि उनके अनुभव के ज़रिए वो बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। एक दूसरे से कोई सुनना नहीं चाह रहा है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करना चाह रहा है, और स्ट्रेस बढ़ जाता है। और जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ये भी हमारे बीच में जो है कम्युनिकेशन के गैप को और भी बढ़ा देता है ना। क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं तो आप अपनों से बात करने को नहीं देखेंगे, अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे, अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू कर देंगे। या तो फिर कई बार ऐसा होता है कि जो लोग बीमार हैं ना, कि किसी भी कारणवश से, एज की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, बीमारी के चलते भी जो है लोग एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या बीमार होते तो सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो लोग मुझे मेरी बीमारी के बारे में पूछेंगे, तो अपने आप को बंद कर लेते। तो ये सारे फैक्टर्स भी जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इस अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से जूझ रहा है तो वो किस तरह से जो है प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकता है?
1: सबसे पहले जो ये स्टिग्मा है, या उसे कह लीजिए कि ये एक माइंडसेट है, कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाना बहुत अच्छे से जानते हैं, या हम जिस तकलीफ़ में हैं या जिस स्ट्रेस में हैं, जैसे मुझे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं बहुत एंशियस हूँ, या हर वक्त मेरे अंदर विचार बहुत नेगेटिव रहते हैं, तो मैं उन सब चीज़ों को और सप्रेस करना करती रहती हूँ, लोगों को नहीं बताती, बाहर के लोगों को नहीं पता चले, इसलिए मैं और सप्रेस करके अपनी एक फेस अपने आप को मैस्करेट कर लेती हूँ, अपने आप को एक तरीके से मैं कुछ और बताती हूँ। पर जब आप देखेंगे, ये कुछ समय के लिए आपने अच्छा ड्रेसअप कर लिया, कुछ समय के लिए अच्छी आपने एक पर्सनैलिटी गैदर कर लिया कुछ समय तक, बट एट द एंड आप जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति के साथ अपने घर पे भी रहते हैं अब, तो आप देखेंगे कि आपकी रियल पर्सनैलिटी धीरे धीरे शो करती कि आप अंदर से क्या हैं, वही लोगों को पता रहता है, वही लोग को जानकारी

0: पता होती है या जैसे जैसे वो लोग आपसे फिर मिल के करते हैं. जैसे मैं बहुत अच्छे से बाहर अपने आप को अभी आपको एक्सप्रेस करूँगी कि दिस इज़ वो हु आई एम, मैं निवेदिता हूँ, बट मेरा ट्रू नेचर मेरे बिहेवियर से आता है. मेरा ट्रू नेचर मेरे अगेन मेरे बोलने के, मेरे कर्तव्य से, मेरे एक्शन से, मेरे जो कर्म है उनसे आता है. तो मेरे कर्म और मेरे विचार अगेन नहीं मैच हो रहे, बट मेरी पर्सनैलिटी अलग ही है बता रही, तो कुछ समय तक रहता है. इसमें एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है, घर से और करियर, आपके बाहर की जो कॉर्पोरेट लाइफ है, करियर लाइफ है, या बाहर किसी सोशल लाइफ में आप हैं, उन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसा बर्ताव आप अपने घर पे घर वालों के साथ करते हैं, वही चीज़ आपको डिराइव करता है आपके बाहर की करियर लाइफ में.
1: Exactly.
0: आप घर पे किसी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ठीक है आपके माता पिता ओके, या आपकी
1: डिसरिस्पेक्टफुली
0: डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और बाहर आप कॉर्पोरेट में बहुत अपने आप को, अपनी इमेज को एकदम शाइन कर रहे हैं, देन इट विल नॉट वर्क. आपकी सारी इमेज आपके घर से शुरू होती है कि आप घर पे कैसे हैं, वही आपको डिराइव करता है आपके बाहर की लाइफ.
1: तो हम लोग बहुत दिनों तक आप अपने बिहेवियर को जो है छुपा कर नहीं रख पाएंगे, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है.
0: यस, इसको इसी से ही शुरुआत करनी कि जो अनुभव है वो हर एक व्यक्ति के लाइफ में होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट वहाँ से शुरू करें कि जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है. अगर हम किड्स एज अ यंगस्टर्स और एज अ अडल्ट ऑल्सो इफ़ वी, अगर उसको हम शुरू करें सुनना, उनके जो अनुभव होंगे वो हमारे जीवन में कभी नहीं मिलेंगे हमें. तो उन अनुभव को स्टोर करना, उनसे कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना कि उन्होंने जो लाइफ जी के हमें जो लाइफ दी है उसके लिए ग्रेटफुल होना कि थैंक यू, आपने इन सारी चीज़ों को झेला या इस परिस्थिति में गए तब जाके हमें ये कम्फर्ट मिला
1: है. exactly.
0: तो उसके लिए हम कृतज्ञ है कि आपने इन सबको किया, तो वी बिकम मोर ग्रेटफुल कि आप हैं आप पे. कुछ लोगों के पेरेंट्स ही नहीं होते, कुछ लोगों की सीनियर सिटीजन में जैसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कोई लव नहीं होता, तो हम ग्रेटफुल हो जाए कि वो हैं एटलीस्ट, तब जाके वो हम हैं यहाँ पे.
1: एग्जैक्टली. और कहीं ना कहीं लाइफ में ये ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है जो भी कुछ हमें मिल रहा है उसके, क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स की वजह से ही, अपने मेंटर्स की वजह से ही यहाँ है, क्योंकि एक व्यक्ति उठकर ही ऐसे वहाँ तक नहीं पहुँचता है जहाँ पर आज वो है. बहुत सारे लाइफ के स्टेजेस होते हैं जिसे क्रॉस करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसने फेस करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं. और चलिए आज तो हम कम्युनिकेशन पर बात कर रहे हैं, तो निवेदिता जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स से एक व्यक्ति अपने पर्सनालिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है. और ये सिर्फ बच्चे यंगस्टर्स नहीं, हम अगर कॉर्पोरेट लेवल की भी बात करें, खासकर प्रोफेशनल्स की बात करें, तो ये उन पर भी लागू होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति दिखाए जिस पर सामने वाला व्यक्ति आप पर विश्वास कर पाए, है ना
0: जी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको, चीज़ को समझना, जो हमने ऑलरेडी इस चीज़ को पहले भी हमने इस चीज़ पे बात की कि जैसे कॉर्पोरेट लाइफ है तो किसी भी जगह पे अगर हम बैठते हैं या जाते हैं या किसी से भी हमें कम्युनिकेट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले सुनो. सुनना बहुत ज़रूरी है. उस स्किल को अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हमारी जितनी भी बातें हम रखना चाहेंगे लोग हमें रिस्पेक्टफुली सुनेंगे. दूसरा, कितना हम लोग कम शब्दों में किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के समय सबके पास इतना समय नहीं है, प्लस इतनी पेशेंस नहीं है, और सबके पास इतना सारा नॉलेज है कि कोई सुनना ही नहीं चाहेगा.
1: सुनना ही नहीं चाह रहा, exactly.
0: तो उसको हम कैसे उसको एक्सप्रेस करें, तो बहुत अच्छे से कम शब्दों में कितना हम बता सकते हैं उसको वैल्यू दे के. प्लस अगेन, जो भी आप बात करना चाह रहे हैं वो आप बन जाइए, वो आप बन जाइए. जैसे आपकी एक मैनेजर टीम है, आप मैनेजमेंट टीम में हैं, आपकी पूरी टीम है, आप लीड पे हैं, उस लीडिंग रोल में आपको जो अपने स्किल्स को, अपने खुद के ग्रुप को, अपने कोहोर्ट्स को सिखानी है, या आपके टीम मेंबर्स को आपको रिस्पेक्ट करवानी है, जो भी आप बोले वो सुने, उसके लिए आप पहले वो बन जाइए. कि आप वो चीज़ें सारी करने लगेंगे तो वो कम्युनिकेट कर देगा कि इफ़ मेरे जो बॉस है या जो मेरा टीम मेंबर है या जो मेरा लीड मेंबर है, वो व्यक्ति वो चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो मेरे लिए भी ये चीज़ लागू होती है. हम सिर्फ बोले बोले और ना करें तो प्रॉब्लमैटिक होता है.
1: Exactly.
0: तीसरा, सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है हृदय से, हार्टफुली, कंपैशन हो के किसी

0: भी व्यक्ति से आप बात करें, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, कंपैरिजन ना हो, क्योंकि आप अपने आप में सब कुछ है. मतलब आपके पास एक तरह से अथाह है कि अबेंडेंस जो बोलते हैं वो सबके अंदर है, उसको टैप करने की ज़रूरत है. तो हम सब कंपैरिजन में ना आए कि यस आप जितना अच्छा कर रहे हैं उसके साथ साथ मैं भी उतना ही अच्छा कर सकती हूँ, कर रही हूँ. कंपैरिजन ना हो, क्योंकि वो प्रेम है. आपको उस प्रेम से, उस कंपैशन से जब आप बात करते हैं तो वो जुड़ता है व्यक्ति, इंस्टेड ऑफ वो अलग हुआ. तो कंपैरिजन ना हो कभी भी किसी भी कम्युनिकेशन में, कि आपने आगे ले लिया लीड, मैं नहीं हो पाई, इट्स ओके. वो एक अबेंडेंस का काम है जो अपने आप ही आपको ला के देगा. तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ स्किल्स जो बोल सकते हैं, ये बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है, कि लैंग्वेज अच्छी आ जाना या अच्छे आर्टिकुलेशन से आर्टिकुलेट कर देना, वो एक स्किल है. बट वो स्किल तभी काम आ सकता है जब आप इन स्किल्स को अपनाएंगे, कि डीप लिसनिंग करना या कम शब्दों में बोलना.
1: और कहीं ना कहीं किस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, ये भी मायने रखता है ना. और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे हाव भाव कैसे हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है. क्योंकि एक चीज़ जब हम प्यार से कह रहे हैं, बल्कि उसी चीज़ को हम गुस्से में कह रहे हैं, तो उसका भाव बिल्कुल बदल गया. तो कहीं ना कहीं अगर हम कॉर्पोरेट लेवल में कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है. जैसे आपने कहा कि हम दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दो व्यक्ति कभी एक जैसे नहीं हो सकते हैं. किसी में कुछ अच्छा है तो किसी में कुछ अच्छा है. ऐसे ही घर में दो बच्चे होते हैं तो दोनों कभी एक जैसे नहीं होते हैं. किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ बुरा है, कोई ज़्यादा समझता है, कोई धीरे समझता है. तो सब में अपनी स्ट्रेंथ होती है, सब में अपने वीकनेसेस होते हैं. तो हमें सभी को जो है साथ में लेकर चलना है, और उसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. और कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट भी आ जाता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझना भी आ जाता है. और इसी के साथ हमारा प्रोग्राम जो है इसका टाइम भी ख़त्म होने को चला है. कि कम्युनिकेशन अपने आप में इतना एक वास्ट टॉपिक है कि एक प्रोग्राम में इसे ख़त्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है. चले हम आपसे जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग में अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि आज एक बच्चा छोटा है, बड़ा है, या सीनियर सिटीज़न है, या कॉर्पोरेट, हर कोई जो है कहीं ना कहीं इस डिजिटल युग से जुड़ा हुआ है. और इस डिजिटल युग ने हमारे कम्युनिकेशन को काफ़ी अफेक्ट किया है. तो आप इस पर, आपके क्या राय हैं?
0: हमने एक चीज़ देखी थी अभी कुछ समय पहले, हमने जब बात की तो स्मिता जी आपने देखा होगा कि डिजिटल, जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड हमें कैसे सेपरेट कर रहा है. एक ही टेबल पे रह कर
1: जी
0: हम लोग मिलके भोजन कर रहे हैं, बट वो हमें सेपरेट रख रहा है. हम पूरी दुनिया से कनेक्टेड है बट अपनी ही फैमिली से उस समय बात नहीं कर रहे हैं. और कितना डिजिटल जो कम्युनिकेशन है वो कितना प्रभावशाली हो गया है कि हमारे मेंटल पर्सपेक्टिव को ट्वीक करने लगा है. पहले के समय इतना इंफॉर्मेशन कभी आपने देखा था, सोचा था कि होगा? 23 ईयर्स बैक जब आप मॉरिशस आए तब आपने कभी इतना सारा ज्ञान एक साथ लेने की कभी सोची थी?
1: आजकल तो ऐसा लगता है कि हम इतना कुछ एक दिन में देख रहे हैं, जान रहे हैं. कभी कभार शाम के वक्त आपको अपने आप में इतना भारीपन लगता है ना, कि ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय ही निकाल पाए, लेकिन आप अपने आप को इससे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. तो ये डिस्कनेक्ट कैसे करें?
0: कुछ समय नियम बांधने होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे हम सबके लिए मुश्किल है. बट इसको एक तरीके से हम दे सकते हैं कि पहला आप क्या यूसेज कर रहे हैं. डिजिटल वर्ल्ड सबके पास है, अगेन सोशल मीडिया सबके पास है, उसका इफेक्टिव यूज़ कैसे हो सकता है उसको देखिए. कि आप अपने अल्गोरिदम को कितना अच्छे से सेट कर सकते हैं आपके गोल के लिए, आप जो बनना चाहते हैं कि आपका अल्गोरिदम भी वही बताता है, ये आप कर सकते हैं. दूसरा, सुबह का एक मॉर्निंग रूटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है हमें वापस लाने में. सोशल मीडिया को दूर रखना एक बहुत इम्पॉसिबल वर्क हो गया आज के समय, इसके बिना कुछ नहीं है. बट अगर आप इतना समय सोशल मीडिया पे निकाल लें, लेट्स सपोज 3 घंटा आपने सोशल, उसमें से आपको 30 मिनट्स अपने साइलेंस में बिताना. जैसे मॉर्निंग में जब भी आप उठें, ट्राई नॉट टू, मुझे पता है सबके सब ईमेल्स पे भागते हैं, टाइम पे देखते हैं, अलार्म पे भागेंगे, म्यूज़िक पे भागते हैं, कुछ अच्छा देखने पे, बट ट्राई कि उस समय बैठे आप 3 मिनट्स. जैसे आप बेड पे बैठ गए, 3 मिनट सीधा बैठे, सिर्फ 3 मिनट बैठने से क्या होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन पूरे हेड तक वापस से पहुंचती है।

0: जब आप लेटे हुए होते हैं तो सर्कुलेशन हॉरिजॉन्टल होता है, जब आप बैठ जाते हैं तो सर्कुलेशन ऊपर जाने में 3 मिनट लगता है। तो रश करने से अच्छा उस सर्कुलेशन को ऊपर तक पहुंचने दीजिए, उन 3 मिनट में सिर्फ आपकी ब्रेथ पे आप ध्यान दें कि ब्रेथ के साथ जो विचार आ रहे हैं क्या उस विचार को आप नलिफाई कर सकते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे, और एक विचार जो आपको बनाने वाला है उसको ले आइए कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ लेट्स सपोज से, या कोई भी एक विचार,
1: कोई भी एक पॉजिटिव थॉट
0: कि मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है लेट्स सपोज से, लेट्स सपोज
1: जी,
0: उस विचार को आप 3 मिनट देखें और उसी के साथ वार्म वाटर पानी का एक सिप ले सुबह सुबह, कुछ एक वर्ड बोलकर वही एक कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ या मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और पानी पिया और वहाँ से अपने आप को क्लीन करके एक बार बॉडी मूवमेंट किया, ब्रेथ वर्कआउट किया और फिर अपने दिन की शुरुआत की। आप कल ट्राई कीजिएगा, आप पर्सनली खुद ट्राई कीजिएगा, मैं भी करूँगी अच्छे से, आप देखिएगा कि जो चेंज आप दुनिया में लाना चाह रहे हैं वो उधर से शुरू हो जाएगा और डेफिनेटली 100% पूरा डे आपका डिफरेंट शुरू होगा इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग।
1: चलिए मैं बिल्कुल इसे जो है सवेरे उठकर कल पहले इसी को ट्राई करूंगी और आपको फीडबैक भी दूंगी कि कैसे रहा।
0: Sure.
1: और उम्मीद करते हैं जितने श्रोता और जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े, इस छोटे से एक्सरसाइज को आप भी ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि क्या पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। निवेदिता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और कम्युनिकेशन को लेकर इतनी सारी जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल अवेयरनेस को भी धन्यवाद देंगे, वहाँ से आई है, और जितने हमारे श्रोता और दर्शक ने हमारा साथ दिया आज के इस प्रोग्राम में, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी किसी अन्य विषय को लेकर। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम को, हमारी टेक्निकल टीम को, रत्नामाला हमारी प्रोड्यूसर हमारे साथ,
2: नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के भीतर सिंडी प्रणाली को संभालने के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा, ये घोषणा उन्होंने आज दोपहर इबन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के सिंडिक सिस्टम में किए जा रहे इस सुधार से अधिक जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित होने की उम्मीद है, ऐसा मंत्री ने कहा है। इस सुधार को लेकर निवासियों के लिए एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है ताकि उन्हें नई व्यवस्था की जानकारी दी जा सके। रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से वर्षों के दौरान कृषि भूमि की उर्वरकता प्रभावित हुई है। सरकार अब जैविक पदार्थ, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है। खाद्य सुरक्षा के लिए तैयार की गई रणनीतिक योजना में कृषि पारिस्थितिकी एग्रो इकोलॉजी को एक प्रमुख स्तंभ के रूप में शामिल किया गया है। फ्लाक में स्थित फागे का मॉडल फॉर्म 100% जैविक कृषि पद्धतियों का एक ठोस उदाहरण है जिन्हें अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये मॉडल फॉर्म नवाचारी पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीकों का उपयोग करता है जो मिट्टी को एक मूल्यवान संसाधन में बदलकर स्वस्थ सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, साथ ही पर्यावरण की रक्षा भी करती है। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी मिलें बोसिको प्रमाणन प्राप्त कर चुकी होंगी। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता और टिकाव विकास की गारंटी माना जाता है जो पुष्टि करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और अनुकूल है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। इसी के तहत मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को बोसिक्रो इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत अब केवल 2 दिन दूर है। इतिहास का सबसे बड़ा विश्व कप टूर्नामेंट जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी, 104 से अधिक मैच खेले जाएंगे। तो याद रखिए गुरुवार 11 जून को शुरू होगा ये विश्व मुकाबला। उद्घाटन मुकाबले में मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। मॉरिशस में भी फुटबॉल प्रशंसक पहले से ही इस माहौल में डूब चुके हैं और इस बड़े खेल उत्सव का पूरा आनंद लेने की तैयारी भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपब्लिक ऑफ कोंगो में फैल रही इबोला महामारी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहायता जारी है। यूरोपीय संघ ने परीक्षण, निगरानी और मरीजों के उपचार को मजबूत करने के लिए 5 मिलियन यूरो से अधिक की अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है। विश्व

0: स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक 550 मामलों की पुष्टि हुई है और 101 मौतें दर्ज की गई हैं। ये प्रकोप इबोला वायरस के बुगियो स्ट्रेन के कारण फैला है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र इतुरी प्रांत है, जहां कुल मामलों का 94% दर्ज किया गया है। हालांकि सुरक्षा स्थिति राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन रही है, क्योंकि इतुरी में सशस्त्र समूहों की मौजूदगी के कारण स्वास्थ्य टीमों की पहुंच सीमित हो गई है। ये महामारी पड़ोसी युगांडा तक भी फैल चुकी है, जहां 19 पुष्ट मामले और 2 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अभी तक सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के प्रसार का कोई सबूत नहीं मिला है। कंपाला की यात्रा के दौरान WHO के महानिदेशक ने युगांडा की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की, लेकिन साथ ही उन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा बंद रखने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रही सुन पाएंगे एक शोक समाचार। नंबर 7 कैलडरन रोड रेटन स्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में, नंबर 7 कैलडरन रोड रेटन स्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रुचाया जिन्हें रॉय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहली टैगोर रोड फोंडसा के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सबिता रुचाया के घर ईस्ट लंदन इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो और 1:30 PM इन इंग्लैंड। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2 Radio. Your news on NBC Play. NBC Play. NBC Radio.TV. NBC Radio.TV.
2: RM3 Radio.

0: के सितारे।
1: फ्रेंड्स, आज का हमारा ये शो जहां पर हम कर रहे हैं आपका तहे दिल से स्वागत, वेलकम है आपका ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ, और इस गाने के साथ आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ये शो किस एक्ट्रेस के नाम है। सो वेल, सबसे पहले तो आपका वॉर्म वेलकम कर रहे हैं हमारा ये दो घंटों का सफर आपके सितारे, जहाँ पर एक ऐसे एक्ट्रेस के नाम हमने डेडिकेट किया है हमारा ये शो, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड में धमाका कर दिया। ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और स्क्रीन पर हमेशा ग्रेसफुल नजर आने वाली वन एंड ओनली अमीषा पटेल। सो उनके नाम डेडिकेटेड हमारा ये शो आपके सितारे। उन्होंने एक तरफ कुछ ऐसी फिल्में की जो एक आइकॉनिक दर्जा पा गई इन बॉलीवुड, जैसे कि अगर उनकी फिल्म की बात करें सो कहो ना प्यार है से उनकी शुरुआत हुई, जो एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई, और दूसरी तरफ गदर जैसी आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनी वो। सो आज हम बात करने वाले हैं उनके करियर, उनके मेमोरेबल सॉन्ग्स एंड उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। कुछ उनके प्यारे गाने लेकर आए हैं आपके नाम, सो गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ अमीषा पटेल जो हमारा साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। अगला गाना आपके नाम, एंड सभी हमारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250620052506200 पर आपका इंतजार।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो अब एक ऐसा गाना एक ऐसी फिल्म से जिस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया. बात कर रहे हैं अमीषा पटेल की जो आज और 9th ऑफ जून अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. वैसे बॉलीवुड में कुछ कम ही फिल्में की लेकिन जो भी फिल्में की यादगार फिल्में की. बीट का होना प्यार है बी इट गदर आप मुझे अच्छे लगने लगे भूल भुलैया हम राज या फिर हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड सभी फिल्मों में उनके जो किरदार है काफी यादगार रहे. और अभी के लिए लेकर आए हैं कहो ना प्यार है फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग फॉर एवरीवन हुज कनेक्टेड रेडियो मनोरंजन के साथ. चलिए दोस्तों मैं हूं परिया आपके साथ शाम के 6 बजे तक. अमीषा पटेल स्पेशल इन आपके सितारे. एंजॉय दिस वन.

that was a beautiful track. आप मुझे अच्छे लगने लगे या 2000 बॉलीवुड को एक नई हीरोइन मिली और ऑडियंस को मिला एक फ्रेश रोमांटिक पेयर रमेशा पटेल और ऋतिक रोशन की केमिस्ट्री को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया. कहो ना प्यार है के बाद आप मुझे अच्छे लगने लगे. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अमिशा ओरिजिनली इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट थी और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट और बॉलीवुड में आने का उनका पहले से कोई प्लान नहीं था. कहो ना प्यार है मैं सबसे पहले करीना कपूर नजर आने वाली थी ऑपोजिट ऋतिक रोशन, लेकिन यहाँ पर कुछ तो उनकी नोकझोंक हो गई विद द डायरेक्टर राकेश रोशन और उसके बाद रातों रात राकेश रोशन ने डिसाइड किया कि अब इस फिल्म में करीना कपूर नहीं लेकिन अमिशा पटेल नजर आएगी. एंड दैट वॉज कह सकते हैं एक ऐसा टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ का जहां पर बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो गई और एक के बाद एक उन्होंने दी कुछ यादगार फिल्में. सभी के लिए वी हैव ये है जलवा. इस फिल्म में उनका जलवा नजर आया विद सलमान खान.

द दबंग खान ऑफ बॉलीवुड। और यहाँ पर सरिता जी काटरबोन से कहती है कि मुझे अमीषा पटेल की फिल्में बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए सभी के लिए ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम सरिता जी। जितने भी यहाँ पर अमीषा पटेल के फैंस हैं और जितने भी लिसनर्स हैं ऑफ रेडियो मनोरंजन, मैं हूँ परी आपके साथ। कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक्स, अमीषा पटेल की कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स और उनके कुछ बहुत ही यादगार सॉन्ग्स लेकर आए हैं आपके लिए। प्रोग्राम आपके सितारे साथ रहेगा आपका और मेरा शाम के 6 बजे तक।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. So, well, लेकर आए हैं आपके लिए अमिशा पटेल स्पेशल एंड दिस वन गोज आउट फॉर मिस्टर गोविंद रघुनंदन वाकवा से हमारा साथ दे रहे हैं. हैव अ वंडरफुल आफ्टरनून गोज आउट फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वेदा एंड एवरीवन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मनोरंजन. फेरी का साथ आपके सितारे प्रोग्राम डेडिकेटेड ऑन द वेरी ब्यूटीफुल वेरी गॉर्जियस अमिशा पटेल.

You're listening RM Free Radio. Radio. RM3 Radio.

0: के सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड है एक गॉर्जियस एक्ट्रेस जिनका नाम अमीषा पटेल। 2000 के साल में उन्होंने एंट्री करी इन बॉलीवुड और बॉलीवुड को मिला एक फ्रेश न्यू चेहरा, जहां पर उनकी खूबसूरती को सबने पसंद किया, उनके लंबे घने बालों को लोगों ने पसंद किया एंड दैट ब्यूटिफुल स्माइल जिसे लोगों ने सीधा दिल में उतार लिया। सो आज हम लेकर आए हैं अमीषा पटेल के कुछ ब्यूटिफुल सॉन्ग्स और उनकी कुछ पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स। तो जैसे हमने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही है और गोल्ड मेडलिस्ट रही है, आज का दिन यानी कि 9th ऑफ जून सेलिब्रेट कर रही है वो अपना जन्मदिन, अपना बर्थडे। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा कि सक्सेस के बाद अमीषा पटेल ने कई सारे जॉनर्स में काम किया, रोमांस हो या फिर ड्रामा, उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। और जब बात रोमांस की हो तो एक गाना जो है वो जरूर याद आता है एंड वी हैव दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म कहो ना प्यार है। पिक्चराइज हुआ ऑन ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल, जहाँ पर एक सिंपल सा सलवार सूट नज़र आई वो इस गाने में एक बहुत ही गर्ल नेक्स्ट डोर के किरदार में। उनकी खूबसूरती को हर किसी ने पसंद किया और पहली फिल्म के लिए उनकी एक्टिंग रही लाजवाब। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए गाना गोज आउट फॉर ऑल द फैंस ऑफ कुमार सानू एज वेल एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ अमीषा पटेल। साथ दे रहे हैं आप ऑन रेडियो मनोरंजन, मैं हूं परी आपके साथ। शाम के 6 बजे तक यह है हमारा प्रोग्राम आपके सितारे।

0: के सितारे।
1: फ्रेंड्स यहां पर 5:27 हो रहे हैं और कुछ और मिनट और भी बचे हैं जहां पर अमीषा पटेल स्पेशल लेकर आए हैं आज हम आपके नाम सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। बॉलीवुड की एक गॉर्जियस एक्ट्रेस आज 9th ऑफ जून को अपना जन्मदिन मना रही है और करियर के दौरान अमीषा ने रोमांटिक फिल्म्स के साथ साथ थ्रिलर और ड्रामा जॉनर्स में भी काम किया और कुछ बहुत ही यादगार फिल्में हमें दी। अमीषा पटेल की स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा एलिगेंट और चार्मिंग रही। उनके हर सॉन्ग्स आज भी लिसनर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके लिए भी हम कुछ ऐसे ही गाने चुनकर लाए हैं जो रहे हैं हमेशा से पॉपुलर। सो अमीषा पटेल की अगर हम बात करें तो उनका पूरा नाम अमीषा अमित पटेल है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में अपना ग्रेजुएशन किया जिसमें वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है। उनकी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है साल 2000 की बिगेस्ट हिट्स में से एक रही। गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में शुमार है और 2020

1983 में उन्होंने गदर 2 के साथ सबीना के आइकॉनिक कैरेक्टर को एक बार फिर स्क्रीन पर जीवित किया। तो उनके कुछ बहुत ही प्यारे गानों में से ये एक और गाना आपके नाम। तो चलिए दोस्तों, फिल्म तो आपको याद ही होगी, फिल्म है क्रांति और इस फिल्म में उनके साथ नजर आए बॉबी देओल। So picturized on Bobby Deol and Amisha Patel, that's a beautiful song. Enjoy this one.

और वेल कहते हैं ना दोस्तों कि हर एक्टर के करियर में कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो उनकी पहचान बन जाते हैं. अमीषा पटेल के लिए सकीना और सोनिया दोनों ही ऐसे कैरेक्टर्स रहे जो फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे. और ऐसे ही अमीषा पटेल की जो फिल्म जर्नी है वो जारी रहे. अभी जैसे हमने 2023 में उन्हें एक बार फिर देखा इन गदर, जहां पर सकीना का किरदार उन्होंने फिर जिंदा कर दिया. सभी के लिए उनके सभी फैंस और हमारे सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, दिस वन गोज आउट आपके नाम और सभी रेडियो मनोरंजन लिसनर्स के नाम.

0: के सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, शाम के 5:55 और आज का हमारा ये प्रोग्राम डेडिकेटेड था अमीषा पटेल पर, जो आज ऑन 9th ऑफ जून अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सो गुड विशेस उनके सभी फैंस की ओर से। और आज का दिन 9th ऑफ जून है खास हमारे किसी खास के लिए भी। आज भविष्य अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी गुड विशेस ऑन योर स्पेशल डे भविष्य। आपको दिल से तहे दिल से विश करते हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे। खुशियों का हो साथ, मुस्कान रहे बरकरार, हर दिन हो खास और हर पल हो यादगार। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे माय डियर। आपके लिए बहुत सारा प्यार, गुड विशेस लेकर आई हैं मामा रीना एंड पापा विशाल, सभी विशेष परिवार और हमारे पूरे रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती टीम की ओर से आपको भेज रहे हैं प्यार एंड स्पेशल स्पेशल विशेज ऑन योर बर्थडे। इसे बनाने खास वी हैव दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। तो चलिए भविष्य, दिस वन गोज आउट फॉर यू। आपका जन्मदिन है, आपका बर्थडे है, सो बनाते हैं इसे खास विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। प्यार आशीर्वाद आपके लिए फ्रॉम योर पेरेंट्स मामा रीना पापा विशाल, साथ ही हमारी पूरी टीम की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां। स्पेशल दिन, स्पेशल विशेज, एंजॉय दिस वन।

0: मंगलवार 9 जून 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। अफ्रीका में इबोला महामारी की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर उठाए जा रही कदमों पर गौर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की अध्यक्षता में आज बेन में एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की बैठक लगी। सावधानी के तौर पर प्रभावित देशों से आने वाले मोर्शनों को अब से 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडीक प्रणाली का संचालन करेगा। इस बात की घोषणा मंत्री शकील मोहम्मद के आज इबन में प्रेस को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के स्तर पर लाए जा रहे सुधार से जवाबदेही, पारदर्शिता और बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी। देश का सबसे बड़ा जलाशय महोबा का करीब 2 लाख परिवारों को पानी पीने का पानी मुहैया करता है, लेकिन इस जलाशय का मौजूदा जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। इसके पीछे कारणों पर विस्तार इस बुलेटिन में। हमले रोकने के लिए ईरान और इजराइल के बीच बनी सहमति के बाद तेहरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को खोला गया। सऊदी अरब से हज यात्रियों के साथ कई उड़ाने तेहरान पहुंची। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। अफ्रीका में इबोला महामारी की स्थिति को लेकर स्थानीय स्तर पर उठाए जा रहे कदमों पर गौर करने के लिए आज बेन में एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी की बैठक लगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की अध्यक्षता में लगी इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, पुलिस और निजी सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल रहे। ये बात उल्लेखनीय है कि सावधानी के तौर पर प्रभावित देशों से आने वाले मोर्शनों को अब से 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इस पर ज्यादा जानकारी संतना पोंसोलो की रिपोर्ट पर करुणा लालू के विवरण के साथ।
1: रियोबेल रिक्रिएशनल सेंटर को क्वारंटीन केंद्र में परिवर्तित कर दिया गया है और कर्मचारी अंतिम तैयारियों को पूरा करने में जुटे हैं। यदि लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य, युगांडा और दक्षिणी सूडान के नागरिकों के लिए मॉरिशस में प्रवेश अस्थायी रूप से प्रतिबंधित हैं, फिर भी मॉरिशन नागरिकों और इन तीन देशों से आने वाले कुछ खास श्रेणी के यात्रियों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि उन्हें हवाई अड्डे से सीधे इस केंद्र में स्थानांतरित किया जाएगा जहां उन्हें 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। डॉक्टर फाजिल कोडाबुकस ने कहा उन्हें एक सैनिटेरी कॉरिडोर में भेजा जाएगा। एक सैनिटेरी इंस्पेक्टर उन्हें रियोबेल तक पहुंचाएंगे जहां एक मेडिकल टीम द्वारा उन पर निगरानी रखी जाएगी। डॉक्टर अकमेज मुलाबाकस ने कहा दिन में 2 बार तापमान लिया जाएगा। डॉक्टर और जिम्मेदार नर्स सुनिश्चित करेंगे कि यात्री में कोई लक्षण न हो। यदि लक्षण दिखाई दे तो संबद्ध स्पेशलिस्ट को सूचित किया जाएगा, फिर उन्हें चिकित्सा केंद्र तक भेजने का फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू की अध्यक्षता में आयोजित एक अंतर मंत्री स्तरीय बैठक में देश को इबोला वायरस से सुरक्षित रखने के लिए लागू विभिन्न प्रोटोकॉल की समीक्षा की गई। खास

0: चिंता का विषय ये है कि फिलहाल इस बीमारी के लिए कोई स्वीकृति का उपलब्ध नहीं। डॉक्टर फाजिल कोडाबुकस ने कहा, अभी के लिए कोई टीका नहीं, साझेदारों द्वारा इस वास्ते कड़ी मेहनत की जा रही है। मॉरिशस में इलाज लक्षण के आधार पर किया जाता है। यात्रियों की देखभाल, उपलब्ध दवाओं का भंडार, चिकित्सा कर्मचारियों की तैयारी, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई। कई प्रश्न उठाए गए और विभिन्न सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। बंदरगाह और हवाई अड्डे के लिए सुरक्षा उपाय पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं। बैठक में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि इसी प्रकार के प्रोटोकॉल होटलों में भी लागू किए जाएं। निजी स्वास्थ्य संस्थानों में इबोला के किसी भी उपचार की अनुमति नहीं होगी। जहां तक महामारी से प्रभावित इन तीन देशों के उन छात्रों का प्रश्न है जो मॉरिशस सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, अधिकारियों द्वारा उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
1: इसी सिलसिले में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला के प्रकोप के खिलाफ संघर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेजी किए जा रहे हैं। पुष्ट मामलों की संख्या 550 और मृतकों की तादाद 101 तक पहुंच गई है। ये बीमारी पड़ोसी देश युगांडा तक भी फैल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल की तरफ से $501 मिलियन की कॉन्टिनेंटल योजना शुरू किए जाने के बाद यूरोपीय संघ की संबंधी सहायता के लिए 5 मिलियन यूरो से ज्यादा की राशि जारी कर रहा है। रजनी बेकर की विवरण पर शेजा जुमन की का रिपोर्ट।
2: कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभावित करने वाली महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय सहायता जारी है। यूरोपीय संघ ने 5 मिलियन रुपए से अधिक के अतिरिक्त फाइनेंसिंग की घोषणा की। इससे सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में मरीजों पर जांच कार्रवाइयां, निगरानी और उन्हें संभालने संबंधी सत्र बढ़ाए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एबोला के बोंडीबुग्यो वायरस के फैलने से 550 मामलों की पुष्टि हुई है और 101 लोगों की मौत हुई है। इतुरी प्रदेश महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जाता है। यहाँ पर 94% मामले दर्ज। इसके अलावा पड़ोसी युगांडा में भी महामारी फैली हुई है, जहाँ पर 19 मामलों की पुष्टि हुई है और 2 लोगों की मृत्यु हुई है। फिर भी सैनिटरी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि इस स्तर तक कोई भी सामुदायिक ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। कंपाला के दौरे पर गए हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने युगांडा के जवाब की शीघ्रता की सराहना की और इसके साथ साथ कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सरहद के बंद किए जाने पर फिर से विचार करने की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक तेद्रोस अधानोम गेब्रियोसिस ने कहा,
3: इबोला नीड्स कांटेक्ट एंड इट्स नॉट लाइक कोविड, सो विद बेसिक प्रिकॉशंस मेनी कंट्रीज कैन प्रिवेंट केस फ्रॉम कमिंग और दे कैन मैनेज इट as soon as possible.
2: इलाके में दक्षिणी सूडान में चेतावनी बरकरार, वहां पर किसी मामले का संकेत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की ओर से निगरानी बढ़ाई गई है क्योंकि प्रभावित देशों से वायरस के फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है।
1: नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडिक प्रणाली का संचालन करेगा। इस बात की घोषणा मंत्री शकील मोहम्मद ने आज बैन में प्रेस को संबोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के स्तर पर लाए जा रहे सुधार से जवाबदेही, पारदर्शिता, बेहतर सेवा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस सुधार योजना के बारे में निवासियों को जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा जलाशय महोबा का करीब 2 लाख परिवारों को पीने का पानी मुहैया करता है, लेकिन इस जलाशय का मौजूदा जल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। ये देखा जा रहा है कि जलाशय हर साल ऐसी कठिनाइयों का सामना करता है, ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हम थोड़ी देर में फिर से वापस आएंगे एक रिपोर्ट के साथ। फिलहाल के लिए खबरों को आगे बढ़ाती है। एज रेटिंग्स अफ्रीका द्वारा हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस का पब्लिक फाइनेंस मजबूती की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन उच्च कर्ज और अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताएं अभी भी बजटीय संभावनाओं पर दबाव बनाए हुए हैं। हालांकि एजेंसी ने सार्वजनिक खर्चों पर बेहतर नियंत्रण के चलते वित्तीय अनुशासन में सुधार दर्ज किया है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
0: एज रेटिंग्स अफ्रीका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-2026 के दौरान मॉरिशस के सार्वजनिक वित्त में सकारात्मक प्रगति हुई। एजेंसी ने खास रूप से

0: सार्वजनिक व्यय पर बेहतर नियंत्रण का उल्लेख किया। हालिया आंकड़ों के अनुसार बजट के संबंध में भी सुधार हुआ और कई खर्चों में कमी देखी गई। इस बीच भावी बजट की प्रस्तुति से कुछ दिन पहले अर्थशास्त्रियों ने इस पर चिंता व्यक्त की कि सार्वजनिक ऋण अब भी ऊंचा है और मार्च 2026 के अंत तक ये देश के सकल घरेलू उत्पाद का 89.5% तक पहुंच गया है। अर्थशास्त्री गिरीश आलगू ने कहा, जीडीपी के करीब 90% कर्ज के साथ जनता की सुरक्षा के लिए सरकारी कदम सीमित हो जाता है। बाहरी झटकों से देश की मजबूती तभी होगी जब कर्ज नियंत्रित होगा। एक और अहम बात, देश की रेटिंग एक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम का आधार उसके कर्ज पर भी निर्भर करता है। अच्छी रेटिंग से निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और देश को बेहतर स्थिति में पूंजी प्राप्त होती है अच्छी दर में। यदि कर्ज ज़्यादा हो तो रेटिंग भी कम होगी। इसके अलावा मध्य पूर्व में जारी तनाव भी चिंता का विषय है। एजेंसी के सीईओ के अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और बिगड़ती हैं तो इसका असर मॉरिशस की आर्थिक वृद्धि पर भी होगा। इससे टैक्स की आय में कमी आ सकती है और सब्सिडी तथा सामाजिक सहायता उपायों से संबंधित सरकारी खर्च बढ़ सकता है। सौरव चटर्जी ने कहा, एक सकारात्मक बात, बजट घाटा कम हो रहा है। जीडीपी के 9.8% से 4.9% तक, लेकिन कर्ज सेवा लागत का भार ज्यादा से ज्यादा पब्लिक फंड पर पड़ रहा है। मध्य पूर्व में व्याप्त तनाव और दर के बढ़ने की संभावना के चलते केएच रेटिंग्स अफ्रीका ने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के दौरान कई ऋण भुगतान की समय सीमाएं पूरी होंगी। इस स्थिति से देश के उधार की लागत बढ़ सकती है, खासकर ब्याज भुगतान को लेकर। एजेंसी का निष्कर्ष है कि यद्यपि बजटीय मोर्चे पर प्रगति दर्ज की गई है, फिर भी सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र में सरकार के वित्तीय गुंजाइश सीमित बनी हुई है।
1: जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि नेशनल हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी NHDC के अंतर्गत एक नया विभाग स्थापित किया जाएगा जो उसकी सिंडिक प्रणाली का संचालन करेगा। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी मंत्री शकील मोहम्मद ने आज इबन में आयोजित एक प्रेस संबोधन के अंतर्गत उन्होंने दी। इस सुधार योजना के बारे में निवासियों को जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए भी एक अभियान चलाया जाएगा। कुलदीप रियोफा की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
0: भवनों का रख रखाव, साझा क्षेत्रों की स्वच्छता, मरम्मत कार्य आदि NHDC आवासों में सिंडिक की अहम भूमिका होती है। लेकिन वर्षों के दौरान कई समस्याएं सामने आई हैं जिनमें वित्तीय कुप्रबंधन, निगरानी की कमी और बकाया योगदान शामिल हैं। हर महीने मकान मालिक सिंडिक के साझा कोष में योगदान देते हैं। सरकार भी प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए 200 रुपये का योगदान करती है। जल्द ही एक समर्पित टीम सिंडिक के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगी। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा,
2: avec l'argent que le gouvernement contribuait pour chaque household dans NHDC, il arrive à peu près autour du 40 millions de roupies. 44% de ce que gouvernement peut donner, l'IPAL vert paye salaire ban membre syndic, tandis que 37% seulement al pour réparation et qu'entretien. La réforme, c'est créer un compte qui appelle National Syndicate Fund Account à la NHDC. Le ministère pouvait verser un fonds mensuel selon le nombre d'unités. Chaque résidence pourrait avoir son propre dedicated account. La subvention gouvernementale ira directement à la NHDC Limited au lieu qu'il y ait un paiement à un syndic. Un département dédié au sein de la NHDC qui appelle le Housing Estate Management and Community Development.
0: सिंडिक प्रणाली में सुधार के तहत कई आवासीय परिसरों का निरीक्षण किया गया। अनेक मामलों में सिंडिक का न होना, प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव और कई स्थानों पर अवैध निर्माण भी पाए गए।
2: Qu'est-ce qui va changer pour les résidents? Les parties communes seront plus propres. Les aires de jeu seront entretenues et les pompes à eau pour fonctionner. Il n'y aura plus de coupures d'électricité dues à des factures

0: de la CEB, impayés. Il y aura des réparations mineures plus rapides via une équipe de la NHDC, de sa département dédié là, qui pourra intervenir plus rapidement. Pour une transparence totale, le chaque roupie qui est capable de tracer dans un système de comptabilité qui est clair, net et transparent, qui paye là aujourd'hui.
1: नई सिंडिक प्रणाली के बारे में मकान मालिकों को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। न्यू सोशल लिविंग डेवलपमेंट लिमिटेड के नए अपार्टमेंट भी इसी प्रणाली के अंतर्गत लाए जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री शकील मोहम्मद ने यह भी घोषणा की कि 8000 सामाजिक आवासों में से अधिकांश इस वर्ष सौंप दिए जाएंगे।
2: रासायनिक उर्वरक के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के साथ साल दर साल ज़मीन की उर्वरता कम होती जा रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार जैविक पदार्थों खाद और बायो फर्टिलाइज़र के प्रयोग को बढ़ावा देकर मौजूदा प्रवृत्ति में सुधार लाने का विचार कर रही है। एग्रो इकोलॉजी खाद्य सुरक्षा की स्ट्रैटेजी योजना के मुख्य स्तंभों में से एक है। फ्लक्स स्थित फारे का मॉडल फार्म किसानों के बीच प्रोत्साहित की जा रही 100% जैविक खेती के तरीकों का एक ठोस उदाहरण है। इस मॉडल फार्म में नवीनतम और प्राकृतिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है जिससे ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ बनती है और रासायनिक पदार्थों से रहित स्वस्थ सब्जियां पैदा की जा रही हैं। माधवी जगन्नाथ की रिपोर्ट पर रजनी बेकर का विवरण।
3: सूर्या और सत्या भाइयों का फ्लक स्थित फागे के मॉडल फार्म में दौरा। मकसद स्पष्ट है, वे पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से खेती कर रहे हैं। पारंपरिक तरीका नहीं बल्कि बायो का इस्तेमाल। पहले चरण के अंतर्गत कंपोस्ट के बारे में बताया गया, यही है स्वच्छ और नियमित उत्पादन की कुंजी। फागे की बायो ट्रेनिंग यूनिट के सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर वीना धर्म सिंह दोहारू ने कहा, कोई व्यक्ति कंपोस्ट के बिना बायो नहीं कर सकता है। एक संतुलित भोजन जरूरी है, इसलिए सूखे पत्तों के साथ हरी चीजें भी मिलानी चाहिए। सब मिलाकर कंपोस्ट तैयार किया जाएगा और खेती में इसका इस्तेमाल। एक अन्य अहम चरण जमीन की उपजाऊता मजबूत करने और खतरों को सीमित करने के लिए पैदावार को डाइवर्सिफाई करना। जब मोनोक्रॉपिंग करते हैं तो जमीन पर दबाव बढ़ जाता है। तकरीबन एक ही प्रकार का खाद डालना चाहिए। पौधे में मिश्रित सब्जियां भी लगानी चाहिए। हर एक पौधे की अपनी अहमियत है। होड़ नहीं है बल्कि स्वाभाविक रूप से ये आते हैं। जमीन को नम और उपजाऊ बनाए रखने के लिए जमीन को तैयार करने की भी जरूरत होती है। सूखे पट्टे डाले जाते हैं। सूर्या और सत्या इससे भली भांति परिचित है। एक ऐसा फार्म जहां पर कीड़े आने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। इस तरह फार्म अपनी प्रतिरक्षा खुद करता है। कई पौधे जैसे तुलसी अवैवाद जो हानिकारक कीड़ों से बचाव करते हैं और जैव विविधता भी मजबूत होती है। सौर्य प्रणाल से संचालित सेंसर भी है जिसके माध्यम से समझदारी के साथ अमूल्य संसाधन जल का प्रयोग किया जाता है। फागे के रिसर्च साइंटिस्ट राम वेंकाता स्वामी ने कहा, सोलर पैनल से सौर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है और इससे सोलर पंप सक्रिय होता है जो बूंद बूंद सिंचाई में लाभदायक है। साथ ही मेट्रोलॉजिक स्टेशन का भी इस्तेमाल होता है जो इस मॉडल फार्म में है। मौसम संबंधी जानकारियों के आधार पर ही हिसाब करते हैं कि कितना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई से जमीन का भी रखाव हो जाता है क्योंकि पानी सीधा जड़ में ही जाता है। 2019 से ये फार्म पूरी तरह से बायो का ही इस्तेमाल कर रहा है। फ्लक के मॉडल फार्म की ओर से अन्य कृषकों को जागरूक कराने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। पेस्टिसाइड रेगुलेटरी ऑफिस की हालिया रिपोर्ट से पता चलता है कि जिन फलों एवं सब्जियों का मूल्यांकन किया गया है इनमें से एक पंचमांश नॉन कंप्लायंट है। इस तरह कृषि

0: पर्यावरण कृषि उद्योग मंत्रालय की स्ट्रेटेजिक प्लान का एक स्तंभ बना हुआ है। हरित ऊर्जा के लिए इंजन चालू और अब इन सब में हम ही को फायदा होगा, स्वच्छ खाद्य पदार्थ जो प्राप्त होंगे।
1: कुछ ही महीनों में दूसरी बार मॉरिशस के दौरे पर आई सेशल्स की परिवहन बंदरगाह और सिविल एविएशन मंत्री वेरोनिक लापोत ने आज लातुकेनिक स्थित एनटीसी के डिपो का दौरा किया। उन्होंने परिवहन मंत्री उस्मान मोहम्मद के साथ उन्होंने पिछले जनवरी महीने के अपने दौरे के बाद मॉरिशस में इलेक्ट्रिक बसों और चार्जिंग मूल ढांचों की स्थापना के सिलसिले में मॉरिशस में हुए विकास का जायजा लिया। असल में सेशल्स परिवहन क्षेत्र में मॉरिशस के अनुभव से फायदा उठाने की इच्छा रखता है। नेत्रहीन लोगों के लिए शिक्षा का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन, शिक्षा की आयु सीमा में वृद्धि और अनुकूलित उपकरणों की सुविधा, उनके लिए निर्धारित शिक्षा प्रणाली में अपनाई जा रही सुधार योजना में इन मुद्दों पर खास बल दिया जा रहा है। लुईस लाशेस ट्रस्ट फंड ने सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव पेश किए। कुनल गोजी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
2: लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड बोबासे में प्राथमिक स्तर के 17 और फिर प्राइमरी के 3 बच्चों को प्रशिक्षण और शैक्षिक सहायता दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम के अनुसार यहां 15 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का अनुपात निर्धारित है।
3: L'apprentissage, lui, repose au, certainement l'aubain des autres sens, comme le toucher, lui, des fois, odorat. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'aspects qui, comme si, comme si on a l'image, nous avons besoin d'adapter, les mettre en relief, soit mettre les en tactile. Et surtout mathématiques aussi, si je peux faire un calcul, si je tiens un outil adapté, qui, obviously, quand nous pouvons faire un calcul, nous pouvons trouver qui chiffre nous pouvons écrire, ben, nous prend beaucoup plus de temps pour faire un calcul.
2: इस वर्ष 2 विद्यार्थी पिसाक परीक्षा में भाग लेंगे। लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन का भी कार्य करता है। स्कूली पुस्तकों का ब्रेल लिपि में अनुवाद किया जाता है और हर वर्ष इस कक्ष से लगभग 2000 प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं।
4: Définir, adapter ce ban texte qui n'a pas adapté, fait là moi d'après ça. Mais par contre, mon livre collège, ça mon livre là n'est pas adapté. À ce moment-là, la nuit blanche, c'est adapté mon livre là.
2: हालांकि पिछले 5 वर्षों से कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसमें देरी हो रही है।
5: Par exemple, si nous avons un mini supermarché, que les enfants là, ils connaissent, ils n'ont pas fait un achat, alors comment ils font ce achat? Ces enfants là, ils ont besoin de faire ce bon transaction financière, ils ont besoin de la banque. À ce moment-là, ils connaissent comment ils peuvent faire quand il y a la banque qui qu'il y en a pour les faire.
2: माध्यमिक शिक्षा में सीखने के आयु सीमा बढ़ाना, उपयुक्त तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराना तथा विद्यालयों का विकेंद्रीकरण करना, ये कुछ प्रमुख सुझाव हैं जो सरकार को प्रस्तुत किए गए।
6: पुली रेट्रोब्ली मेम दा ले नूवो लैटमोस्फेयर लिपेडी फैसिलमेंट एन ऑन डेज एंड क्वा लिपेडी एन ऑन डेज एंड बे डेवन सा एट लिमिट ला विन एन ऑब्स्टेकल विन एन प्रॉब्लम की कोमा लिगे सो 20 एंड बिजन अरेटे बे मो वो पेंसे ले मिनिस्टर दे लेडुकेशन बिजन अबन डेरोगेशन पोर बन एनफान सुर सोन हैंडीकैप ली बिजन कैपेबल परमिट ली टर्मिन सो लेटुड।
2: 43 वर्षों के अस्तित्व के बाद लुईस लाजेस ट्रस्ट फंड शिक्षण पद्धति में सुधार और पुनर्संरचना की मांग कर रहा है, ताकि ये संयुक्त राष्ट्र की सिफारिशों के अनुरूप एक उपयुक्त समावेशी शैक्षिक वातावरण में संचालित हो सके।
1: फुटबॉल प्रेमियों के लिए ये खबर, 2026 विश्व कप के शुरू होने में मात्र 2 दिन रह गए हैं। 11 जून से 19 जुलाई के बीच सभी की निगाहें कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका पर टिकी होंगी, जो इस ऐतिहासिक संस्करण की मेजबानी करेंगे। मॉरिशस में भी प्रशंसकों में काफ़ी उत्साह है और फुटबॉल के इस विश्व उत्सव का पूरा आनंद लेने के लिए तैयारी। हमारी एक टीम ने कुछ मॉरिशनों की प्रतिक्रिया ली। प्रियंका हरी की रिपोर्ट पर एक बार फिर करुणा लालू का विवरण।
2: फीफा विश्व कप 2026 के उद्घाटन में अब केवल 2 दिन बाकी हैं। दुनिया के चारों कोनों में उत्साह चरम पर है और मॉरिशस

0: भी इस फुटबॉल बुखार से अछूता नहीं। कुछ लोगों के लिए ये विश्व कप के उस अनोखे और रोमांचक माहौल को फिर से महसूस करने का अवसर है जिसका इंतजार वे वर्षों से करते हैं।
1: Mon équipe préférée c'est Brésil. Nous gagnons ça tous les 4 ans. Nous bien vivre, moi encore là, moi j'ai 75 ans, moi qu'à vivre encore.
2: Nous ne pouvons pas nous mentir, nous manorifler.

0: L'anno scorso venne, malheureusement, on n'était pas gagné moins de fois en Angleterre. Et là, nous attendons la Coupe du Monde. Là, pour qu'on espérait qu'Angleterre a fait une beau face.
1: C'est là que nous pouvons parler un peu plus bien. Parce que moi, tout, c'est une compétition qui a un peu plaisir cette année-là. Tu vas pas rêver qu'on va une compétition avant là. Parce qu'il y a beaucoup de bon l'équipe qui est qualifiée.
2: Moi, je suppose que l'Angleterre pour gagner, moi.
3: De quoi bon pour gagner?
2: Mais d'imbécile. À ce moment-là, on a quitté place qu'ils ont pu faire pour grand. Pas faire vite, nous venons gagner.
4: दूसरों के लिए ये अपने परिवार और दोस्तों के साथ अपनी फुटबॉल प्रेम की भावना साझा करने का अवसर है और मैचों की धड़कन और दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल सितारों के शानदार प्रदर्शन इस उत्सव को और खास बना देते हैं।
5: टू हॉट मेम के नाला बिना पेशन की बेविनी पुपे अजीला टू बेविन पु गई मैंने उसी साल में से मां मो मैडम इतने गौस होना से नहीं सुई सुई पे इसे गीतो अलग अब का गीते Mais c'est moi qui ai fait bonheur, bonheur. C'est quand on sait là, là, là, on est capable de suivre.
6: Nous préparons nos gardiens, nous mettons nous bien à l'aise. Cousins, ma tante, tonton. Et là, nous gagnons la Coupe du Monde comme à Bizin.
7: La Coupe du Monde, comme d'habitude, pareil, entre familles. Où nous meilleure équipe au monde, c'est le Brésil. Mais voilà, nous supportons le Brésil à fond.
4: इंतजार अब लगभग समाप्त हो चुका है। केवल 48 घंटे बाद पूरी दुनिया फुटबॉल की धुन पर झूम उठेगी और मॉरिशन भी इस महान खेल महोत्सव के हर पल का आनंद लेने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।
8: अफ्रीकी पाक कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन 13 और 14 जून को मैडागास्कर की राजधानी अंतानानारिवो में किया जाएगा। इंटरनेशनल केटरिंग कप 2027 के लिए होने वाली इस पहली अफ्रीकी चयन प्रतियोगिता में मॉरिशस, मैडागास्कर, कुजीवो और गाबो की टीमें हिस्सा लेंगी, यानी कि आइवरी कोस्ट और गैबन की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिताओं को कई चुनौतियों का सामना करना होगा, जिनके जरिए उनकी रचनात्मकता, खाना बनाने की कला और अफ्रीकी स्थानीय उत्पादों के बेहतर उपयोग को परखा जाएगा। प्रतियोगिता के अंत में केवल दो देशों को जनवरी 2027 में होने वाले विश्व फाइनल में जगह बनाने का मौका मिलेगा।
9: प्रस्थान से कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात मॉरिशस की टीम से हुई। किचन में अंतिम तैयारियां जोरों पर हैं। तकनीकी अभ्यास, व्यंजनों की आकर्षक प्रस्तुति और टीमवर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि किसी भी पहलू में कोई कमी न रह जाए। टीम के कोच ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा निर्धारित नियमों और चयनित मेन्यू के कड़े मापदंडों को ध्यान में रखते हुए टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। टीम के कप्तान प्रवीण चतुरी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभ्यास कर रहे हैं। उनका कहना है कि तनाव और थकान के बावजूद वे व्यंजनों को बेहतर बनाने के लिए लंबे समय तक मेहनत कर रहे हैं।
10: Nous fiers qui nous paye l'occasion de représenter nos pays dans une grande compétition comme ça. Beaucoup cassé rangé, d'après produit tout ça là, parce qu'il y a un produit qui est imposé, il y a un produit qui nous oblige à servir.
11: L'entrée chaud et froid, vous êtes appelé ça le dieu de la mer, une totale créativité. Pour qu'ils nous présentent un menu avec quatre fruits de mer comme s'y intégrés, entre chaud et froid, présentés sur la même assiette. Comme plat principal, c'est le zébu Wellington qui est imposé. Et il y a une sauce albufera qui nous pour préparer, qui est aussi imposée pour accompagner main course.
9: वही सहकप्तान जूलियो राबो के लिए इस स्तर की ये पहली प्रतियोगिता एक बड़ी चुनौती है उनके लिए। उनका मानना है कि इस मुकाबले में हर मिनट और हर छोटा विवरण निर्णायक साबित हो सकता है।
12: Travailler en équipe, c'est difficile, mais il y a environ 3 mois, nous travaillons ensemble chaque semaine. Tout à fait économique. Et puis c'est un modèle bon, la fiche technique, tout le monde a fait pour nous, etc. Pour ne pas rater aucun détail.
9: मॉरिशस की टीम का एक ही लक्ष्य स्पष्ट है, शीर्ष दो देशों में स्थान बनाकर विश्व गैस्ट्रोनॉमी कप 2027 में अपना स्थान बनाना।
8: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमले रोकने के लिए ईरान और इसराइल के बीच बनी सहमति के बाद तेहरान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को खोला गया। सऊदी अरब से हज यात्रियों के साथ कई उड़ानें तेहरान पहुंची। बढ़ते हम अब मौसम के हाल की ओर, रजनी बेकर के साथ।
9: जो एंटी साइक्लोन था वो धीरे धीरे हमारे इलाके से दूर हटता जा रहा है। पूर्व की ओर से जो बादल बढ़ रहे हैं वो

आज रात से हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह रहकर बारिश भी हो सकती है, मुख्य रूप से टापू के आधे पूर्वी हिस्से में और सेंट्रल प्लाटो पर। दोपहर बाद में बादल छाए रहेंगे और वर्षा होती रहेगी, मुख्य रूप से देश के दक्षिणी इलाके में और सेंट्रल प्लाटो पर। उत्तर पूर्व की ओर से करीब 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। रात के दौरान ये हल्के रूप से कमजोर होते जाएंगे। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण पूर्व में 2 मीटर 50 की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी एवं दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी लगूनों में आज रात के दौरान धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 और 16 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 22 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम 27 एवं 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:37 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:41 पर सूर्योदय।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है और कंसल्ट पर हमारे सहयोगी लुडोविक हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। फोबाक रोड फोंजसक में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पद्मावती रूपचंद जिन्हें छुटकी चाची के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे शैलेश मुरत के घर फोंजसक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। नंबर 36 अबातवा रोड होशबुआ में 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री खेमराज चरितर जिन्हें जानों के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर होशबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही बोली शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। गुडचरण लेन मिडलैंड्स में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री आत्मदेव दोमन जिन्हें रांदाबेल के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर मिडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मोसलमो प्रोविडेंसिया दो प्रोविडेंस कॉचिमिलिटेर में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश्वर पत्तू जिन्हें सतीश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले पुलिस सर्जेंट मोका CID में थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 उनकी पत्नी श्रीमती तीहा मीनाक्षी पत्तू के घर कॉचिमिलिटेर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉडिमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 AM। मुलजी लेन प्लेनमानियों में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री सुखजन बिसुनी जिन्हें जीत सुफे ताक्सी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विशाल बिसुनी के घर प्लेनमानियों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 1 PM। भोगन रोड रिविया जोरोंपा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री कृतानंद भोगन जिन्हें जोकी के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर रिविया जोरोंपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। कैल्डरन रोड रे टॉनस्टोन ईस्ट लंदन इंग्लैंड में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र रुचाया जिन्हें रॉय के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले टैगोर रोड फोंजसक के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी दिन के 1:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती साबिता रुचाया के घर ईस्ट लंदन इंग्लैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वही शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। रॉय रोड प्रोविडेंस कॉचिमिलिटेर में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड

Kishimati Malyame Palyachi Munyan. Shimati Malyame Palyachi Munyan. पैदाशनाम सिनातोंबी और जिन्हें मनी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके नाती मुदाली बेन पाजानी के घर कौच मृत्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। रामचंद रोड रिपाई में 82 साल की 82 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कुसमावती रमन जिन्हें मौती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके घर रिपाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकों सैप एक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। बियानिका लेन नंबर दो ग्लेनपार्क वाकवा में 64 साल की 64 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुमित्रा बाय बाहू पैदाशाम लक्सिमो जिन्हें मानती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके घर ग्लेनपार्क वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामामेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9 AM। लोरेटो कॉन्वेंट स्ट्रीट क्यूपिप में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड के श्री जय परगासस रामसरन जिन्हें जगदीश के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती शांति बाय रामसरन के घर क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाह की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। सोलफेरिनो नंबर पाँच वाकुआ में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मरोध देवी जिन्हें राजेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी कल सुबह 10:30 बजे उनके बेटे कुशाल देवी के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। चंद्रलेन लागोजा में 89 साल के 89 ईयर्स ओल्ड के श्री रामासामी यमाना रेड्डी अपादू जिन्हें नारायण के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं उनकी अर्थी दिन के 1 बजे उनके बेटे दमा रेड्डी अपादू के घर लागोजा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौदालबेग शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्यसभा मॉरिशस एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित महान वैदिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पर विशेष प्रवचन देंगे। तारीख बुधवार 10 जून। जगह कौंदे मास पावे आर्य समाज। समय दोपहर 4 बजे।
2: रेडियो मॉरिशस
3: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस
3: रेडियो मॉरिशस

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Nee so.
4: देवियो सज्जनों, सभी सुनने वाले श्रोताओं को अजय प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। यह है आप लोगों का मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मनोरंजन, और साथ में आप हमें रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर भी देख पा रहे हैं। सभी का हम स्वागत करते हैं, और शाम के 6:40 हो रहे हैं, और अभी से लेकर रात के 7 तक कुछ भावगीत नई सोच कार्यक्रम में। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, उसका

भगवान होता है सो जब कभी भी आप अपने आप को अकेला समझें तन्हा समझें तो बस समझ लेना कि कोई है जो आपका साथ दे रहा है वो है प्रभु ईश्वर खुदा या पालनहारी

दुनिया के रचयिता उसे सब पता है कि क्या हो रहा है, कब कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है। और एक दिन जब बुलावा आएगा तो संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। धन दौलत पैसा रुतबा परिवार बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना पड़ेगा। क्या लेकर आए थे जो इतना घमंड करते इतना गुरूर करते हैं, क्या लेकर जाएंगे? खाली हाथ आए हैं और यहाँ से खाली हाथ ही जाएंगे। यही जीवन का कटु सत्य है।

महाभारत महाग्रंथ में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार एक प्राणी पुराने वस्त्र को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है अपने कर्मों के अनुसार। हम रोते हैं, विलाप करते हैं, दुखी होते हैं कि फलाना व्यक्ति मर गया, पर जब उसका समय आता है, जब किसी का समय आता है दुनिया से जाने के लिए, तो वो किसी को बताकर नहीं जाता। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, यही नियम है संसार का। हम चाहे रोए, चाहे विलाप करें, चाहे कुछ भी करें, पर जैसे ही समय आता है और हमारा शरीर जो है पुराना हो जाता है, तो आत्मा उस शरीर को त्याग कर एक नए शरीर में प्रवेश करता है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब समय हुआ है आत्मा को इस मैली चादर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करने के लिए।

देवियों सज्जनों संगीत प्रेमियों चादर हो गई बहुत पुरानी अनुप जलता के कैसे भावगीत के साथ ही भावगीतों पर आधारित प्रोग्राम नई सोच यहीं पर समाप्त होने वाला है। ठीक 7 बजे आप सुनेंगे अगला प्रोग्राम दिलों की आवाज। सुनते रहिए प्यार से MBC रेडियो मनोरंजन, RM3 रेडियो मनोरंजन।

0: चेक आउट योर टाइम इस समय मॉरिशस में रात के ठीक 7 बजे है। आप सुन रहे हैं आरएम प्री रेडियो मनोरंजन। आप हमें देख रहे हैं रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर।
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक आरएम प्री
2: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
0: लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइस एंड गर्ल्स, डियर जेंट्स, आप सभी को अच्छे प्रताप सिंह का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम जी, वेलकम, सुस्वागतम। दिलों की आवाज अभी से लेकर रात के 9 बजे तक, एंड टुडे इज ट्यूसडे नाइट 9th of June 2026। सभी का हम स्वागत करते हैं और बेशक अभी से लेकर 9 बजे तक बहुत सारे रोमांटिक तराने हम लाए हैं आप लोगों के लिए। Love is in the air, let's fall in love again and again. We'd rather say, let's rise in love. प्यार मोहब्बत की, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी अभी से लेकर रात के 9 बजे तक आपके साथ। और जी तो जी, कैसे बिना आपके, जी हाँ, कैसे जिया जाए। यस, दिस पहला गाना अफजल के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशेष सितलू, यह गीत आपके नाम, अभी आपके नाम भी यह गाना, यही गीत हम चलाएंगे। यस, प्रेमिला के नाम जो फ्रांस से हमें सुन रही है, हेलो एंजे अंजेल प्रेमिला, ये गीत आपके नाम भी, विलीन शनकेश, जया विजय लक्ष्मी, मंजुलिका, कतुना किरण, सरिता नमजान, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर, जो हमें सुन रहे हैं रेडियो पर, यह गीत आपके नाम, वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक ट्रैक्स ऑफ द यस्टरडेज, साजन, जिसमें नजर आए थे माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, सलमान खान साहब, वीना भोला भी हमारा साथ दे रही है। सो गीत आपके नाम, जी तो जी, कैसे बिना आपके। यस, और समिता की ओर से यह गीत उनके प्यार संजय के नाम ही, चलिए एक साथ सुनते हैं।

जहां साल फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुरू हो रहा है इस गुरुवार से, यह एशिया फुटबॉल का दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसे फीफा आयोजित कर रहा है। 2026 का विश्व कप इतिहास का सबसे बड़ा संस्करण माना जाता है। इसके मेजबान देश है यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको। पहली बार 48 टीमें खेलेंगी, पहले 32 होती थी। कुल 104 मैच होंगे। टूर्नामेंट लगभग 11 जून से शुरू होकर 19 जुलाई को ख़त्म होगी और 48 टीमों को 12 समूहों में बांटा जाएगा। हर समूह में 4 टीमें होंगी। हर टीम कम से कम 3 मैच खेलेगी। हर समूह की शीर्ष 2 टीमें और सर्वश्रेष्ठ 8 तीसरे स्थान वाली टीमें

आ जाएंगी। उसके बाद राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 और बेशक प्रमुख मेज़बान शहर जो है वो होंगे मेक्सिको सिटी, टोरंटो, वैंकूवर, लॉस एंजेलस, मियामी, अटलांटा, न्यूयॉर्क सिटी। और बेशक आप में से बहुत से लोग इसे फॉलो करेंगे और सुनने में आ रहा है कि नोरा फतेही विल बी डांसिंग यस फॉर द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ वर्ल्ड कप फीफा 2026। आप में से बहुत से दोस्त नोरा फतेही के ज़बरदस्त फैंस हैं कि नहीं। सो लेट्स होप कि वर्ल्ड फीफा 2026 में उसी देश की जीत हो जो सबसे अच्छा फुटबॉल खेले, है कि नहीं। एंड नेक्स्ट सॉन्ग चोरी चोरी हो वे मैंने अखियां मिलाई रे, एंड दिस गाना लवना, ये गीत आपकी मामा पिछली आपके जो रहती है समिता की ओर से, ये संचय के नाम, यह गीत भी ना भूला, ये गीत आपके नाम भी धनेश वरी जी, ये गीत आपके नाम, आपके पति, आपके बच्चों के नाम। एंड यही प्यार सा गाना अनिता पैतोब जी के नाम हम चलाएंगे और देवीना बिसी सर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू। लीला चम लगाई यह गीत आपके नाम भी, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं टिकटॉक पेज और रेडियो मनोरंजन पर सुन रहे हैं, सो गीत आपके नाम, फिल्म का नाम है दलाल, रोमांटिक गाना।

कहते हैं कि प्यार नसीब वालों को मिलता है और जिसे प्यार मिल जाता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है क्योंकि जिसे प्यार किया अगर उससे शादी की तो क्या बात है कि नहीं जिसे चाहा जिसे पूछा और वही अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो क्या बात है पर अफसोस हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में फिल्म जाबाज का गाना अब चलने वाला है ये गीत हम दीप्ति गंडोरी जी के नाम चलाएंगे फिर सौफ के नाम और बहुत से लोग हमें कॉल भी करे कत्सों जिस पर आप फ़ोन कर सकते हैं या अपने टिकटॉक पेज पर कमेंट्स डेडिकेशन भेज सकते हैं यस बिमला जी आपका स्वागत है सूरज सूरज जी नेक्स्ट गाना फॉर यू प्रीति प्रीति शानीश यह गीत आपके नाम और यही गाना नीलिमा जी के नाम यस वेलकम नीलिमा और फिर पूनम यह गीत आपके नाम भी हम करेंगे बहुत बहुत प्यार के साथ और जितने भी लोग इस समय काम करें बोको आज जो घर पे ही आराम कर रहे हैं और हमें सुन रही है सो गीत आपके नाम भी और ये गाना सेंट ओबेस एसएस कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स अध्यापक टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ और वहाँ के रेक्टर ने के नाम हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में

0: खुदा ने जब किसी को बनाया है तो क्या सोच कर बनाया। कुछ लोग इतने सुंदर होते हैं, सर से पांव तक परी रखते हैं, है कि नहीं। मन करता है कि हम उन्हें देखते रहे देखते रहे। इतना सुंदर, इतने सुंदर आंखें, इतना सुंदर चेहरा, इतनी प्यारी आवाज, ओए होए होए, कोई भी इसका दीवाना हो जाएगा। क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी। और इस प्रश्न जवाब में किसकी जीत होगी एक साथ सुनते हैं। फिल्म का नाम है कुर्बानी। यस, कोई किसी का तारीफ कर रहा है। यस, सो यह गीत हम चलाएंगे माला जी के नाम, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर असीम जी और फिर नाजरी। यह गीत आपके नाम, तरुण राम निकुशी में यह गीत आपके नाम भी, अश्विनी किरोडर, शर्मिला चांदनी सिंह भी ये गीत आपके नाम हम करेंगे, राजीव साहब ये गीत आपके नाम भी। यस, वेद जी हाँ अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये गाना हम चलाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस की सोशल स्टडीज के फैकल्टी ऑफ सोशल स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज की बीए फ्रेंच, एमए फ्रेंच और पीएचडी फ्रेंच में एनरोल स्टूडेंट्स और लेक्चरर के नाम। और यही गाना हम चलाएंगे बहुत बहुत प्यार के साथ उन लोगों के लिए जिन्हें लाइन तो नहीं मिल रही है, और अभी अगर लाइन मिल जाए तो हमसे बात कीजिए। ओके, एक दो से लाइन पर मुझसे मिलेंगे। हेलो, हेलो जी, नमस्ते।
1: मैं हूँ राधा, हमलेट से।
0: हाँ राधा जी, आपका स्वागत है, बोलिए।
1: एक गीत का फरमाइश करना चाहती हूँ। माँ बाप

0: माँ बाप का नहीं, अभी रोमांटिक गीत चल रहे हैं, प्लीज रोमांटिक गीत। एक गीत है, क्या देखते हो
1: रोमांटिक गीत नहीं,
0: पर हमने नहीं। हमने कहा था आपसे कि दिलों की आवाज में रोमांटिक गीत चलाएंगे, आपने सुना नहीं। ओके ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, ओके बाय बाय। यस, हमने बताया आप लोगों को, इसीलिए हम कहते हैं ध्यान से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमने आपको बताया था कि रात के 7 बजे से रात के 11 रात के 9 बजे तक हम चलाएंगे रोमांटिक तराने। सो लव इज इन द एयर, फॉल इन लव, ऑलराइट। माला झरी जी पेटी रिट्रीट से, और यह गीत आपके नाम शबनीज, यह गीत आपके नाम भी रोनी, गीत आपके नाम बबली जी हमारे साथ रही। हेलो वीना, दिस गाना विल बी फॉर यू। एंड प्रणव, यस प्रणव, कैसे हो प्रणव बेटा, कहाँ से हो प्रणव तुम? ओके, नेक्स्ट गाना फॉर यू। और जितने भी प्यार करने वाले हमें सुन रहे हैं, जितने लैला मजनू हमें सुन रहे हैं, यह प्यार से गीत आपके नाम भी, क्या देखते हो, चलिए एक साथ सुनते कि कोई क्या देख रहा है आज की रात। मणिप्रिया, ऑलराइट, यह गीत आपके नाम भी हम चलाएंगे। यस ऑलराइट, लेट्स लिसन दिस सॉन्ग।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना था, क्या देखते हो। हम तो आपको देख रहे हैं टिकटॉक पेज पर और आपसे बातें भी कर रहे हैं, आपके मैसेजेस भी है। सो ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतज़ार का और किसका इंतज़ार है आपको। समन स्पेशल आए है, क्या बात है, क्या बात है। यस सो बस इस प्यार के समा में आप भी खो जाइए, हम भी खो जाते हैं। रात के 7:35 हो रही है रेडियो मनोरंजन। अगला गाना वंदना कुमारी के नाम, यस दिस सॉन्ग फॉर यू। भूटान से उस ज्ञान पेल्जम है, ये गीत आपके नाम मनोज पियतिया, यह गीत आपके नाम हाय मीना, बीना के रोशन के दो बेटे उनके हबी और पूरे परिवार के लिए भी यह गीत हम चलाएंगे। यस एंड रिक श्रॉफ, यह गीत आपके नाम भी। यस सुवंदना रहती है जुभाई अपने पति और बच्चों के साथ और हमें सुन रही है। यस वंदना गुमानी, नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू, ये समा समा है ये प्यार का। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, थैंक यू जी। हाय फरीदा, संगीता मिरन लाहौजा से है, रेहाना हसन अली फेनिक से है एंड विशाल राम गुलाम, नमस्कार जी। और मीना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हेलो मीना। Yes, and I've got one more message. Dhama Vihari, yes, this gana for you as well. Ye sama sama hai ye bihar ka.

अब हम आप से पूछेंगे कि कैसे किसी का दिल जीता जाता है, हाउ टू विन समवनस हार्ट। मैंने मैक्स फिल्म का गाना है, बहुत ही प्यारा सा गीत आपका अग्नि की आवाज़ में, और ये गीत हम चला रहे हैं इन सब लोगों के नाम। यस ऑलराइट, सो यह गाना हम चलाएंगे रिहाना जो फिनिक्स से है। यस हमारा साथ दे रही है सुदेवी फ्रॉम वाकवा। यस अगला गीत त्रियोले की दीदी ललिता, कुशल परिवार, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा देवी, ना राम रतन फैमिली के नाम भी। और यस आपकी प्यारी बिटिया के नाम हम करेंगे अगला गीत, आपने अपना नाम नहीं बताया। यस और फिर यही गाना स्विट्जरलैंड के रंभा, अमृता, अमीशा और सब जो उनकी परिवार के नाम अगला गीत करेंगे। और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए ललिता, हाय ललिता, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन टिकटॉक लाइव। दिलान किरण, यह गीत आपके नाम, धनुष बाबना, यह गीत आपको पसंद है, सो चलिए एक साथ सुनते ये गाना, कैसे किसी का दिल जीता जाता है। अशोक सिवरत, वो भी किसी का दिल जीतना चाहते हैं, तो चलिए आज की रात हम भी आपके दिल जीतने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ द यस्टरडेज, इस गीत में बहुत सारी यादें छुपी है। जरा याद कीजिए वो जमाना जब आप भी यह गीत गाया करते थे, उन्हें देखकर कैसे दिल जीते हम आपका, आप ही बता दे हमें वो रास्ता। लेट्स फॉल इन लव। Yes, love is in the air.

कैसे दिल जीते हम आपका आप ही बता दे कोई रास्ता जी हमें रास्ता मिल गया है दिलों की आवाज़ हमारा दिल आपके दिल से मिल रहा है और दिल की बातें आप तक पहुंच रही क्या बात है अरे प्यार किया तो डरना क्या जब प्यार किया तो डरना क्या और अगला गाना दिल ने ये कहा है दिल से मोहब्बत हो गई है तुमसे बहुत ही प्यारा गीत प्रीति की ओर से शैलेंद्र जी के नाम शैलेंद्र बेचू का जन्मदिन है हैप्पी बर्थडे शैलेंद्र बेचू इंदिरा यह गीत आपके नाम चाचा दीनू हरिलाल की ओर से उनके पूरे परिवार के लिए हाय बेबो दिस गाना फॉर यू नितिन गोविंद जी यह गीत आपके नाम सायरा दाहू यह गीत आपके नाम और अब्दुल और सायरा बानू के नाम दिनेश गोपी यह गीत आपके नाम भी हेलो रीता दिस गाना फॉर यू एज वेल आपका दिल क्या कह रहा है आज की रात जरा हमें तो बताएं हमसे क्या शर्माना बोलिए ना आपका दिल क्या कह रहा है शायद हमसे कुछ

तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। काश हर कोई किससे प्यार करता तो इस दुनिया में इतनी नफरत नहीं होती। आज दिलों में कितनी नफरतें हैं, बहुत नफरतें हैं आजकल दिलों में। सो सैड सो सैड। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अब वही प्यारा सा गाना आ रहा है फ्रॉम द मूवी कुदरत, लव इज इन द एयर, दिलों की आवाज। रात के अभी 8 बजने वाले हैं और एक घंटा है हमारा साथ देने के लिए, और रोमांटिक तराने हम चलाएंगे। और नेक्स्ट गाना हमें तुमसे प्यार कितना, कविश के नाम और अवसी बालक या गीत आपके नाम, संध्या केरोसन की बेटी संध्या केरोसन उर्मिला, फौजी मथुरा यह गीत, कविता अरुण की बेटी रिया और सलीमा के नाम भी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, गायत्री बिसुंदत यह गीत आपके नाम भी, इंदिरा मथुर सिंह यह गीत आपके नाम, और यह गीत इंदिरा मथुर सिंह के ओर से राजेश और प्रकाश के लिए। उमा जरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू उमा जी फॉर लिस्टिंग टू ऑल इन फ्री रेडियो मनोरंजन। और हो जाए एक ये प्यारा सा गाना, मुझे तो ये गीत बहुत पसंद है। आई होप यू एंजॉय दिस सॉन्ग एज वेल। फिल्म कुदरत विक्रम साहब ये गीत आपके नाम भी। और फिर यह गीत हम चला रहे हैं कासम खान नटराज रामकोरन के नाम, जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोबेल फॉन्स से।

हम भी आपसे कह रहे हैं कहीं ना जा आज तू मत जा फिर मिले ना मिले ये पली बस आप हमारा साथ यूं ही देते रहे एंड रॉबर्ट दिस सॉन्ग फॉर फ्रॉम यू टू योर गर्लफ्रेंड माया एंड रॉबर्ट वांट्स टू टेल माया दैट ही लव्स माया सो सो मच सो माया रॉबर्ट आपसे बहुत प्यार करते हैं अमित तुम्हार को बालो बाशे एंड द नेक्स्ट गाना यस दैट विल बी साथिया तूने क्या किया फ्रॉम द मूवी लव फ्रॉम रॉबर्ट टू हिज लव टू हिज लाइफ माया नितिन गोविंद यह गीत आपके नाम देवंश अभिषेक यह गीत आपके नाम स्मिता श्वेता यह गीत आपके नाम वीना भैरव भी हमारा साथ दे रही है शी इज डेडिकेटिंग द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर हर बेटा प्रवेश बेटी सुदिशना एंड दामाद अक्षय एंड रॉबर्ट को यह गीत बहुत पसंद है एंड ही इज एंजॉइंग वो भी प्यार के मूड में है क्या बात है रॉबर्ट भैया प्रीतम जी यह गीत आपके नाम भी जय लक्ष्मण यह गीत आपके नाम यस साथिया तूने क्या किया साथिया ने क्या किया चलिए एक साथ सुनते हैं हमें तो नहीं पता साथिया ने क्या किया यस ऑलराइट सो चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर आई होप यू कैन टू एंजॉय दिस सॉन्ग दिस सॉन्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द यस्टरडेज़ एज़ वेल सलमान खान की पहली फिल्मों में से एक यू नो रेवती वाज इन दैट मूवी एज़ वेल रॉबर्ट यू आर मोस्ट वेलकम एंड दिस गाना फॉर यू एंड फॉर योर लव माया

होता है जी होता है, कभी पत्नी पति नाराज हो जाते हैं तो कभी पत्नी नाराज हो जाती है, कभी पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी ने मुंह फुला लिया, कभी पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति नाराज हो गए। कभी कभी ये नाराजगी भी, इसमें भी प्यार है, कभी प्यार में जलन भी है। और अगर पत्नी ने पति का मोबाइल ले लिया, उसमें किसी ने कह दिया आई मिस यू बेबी, बाप रे बाप, तब तो महाभारत हो गया घर में। इसे पति लोग अपने मोबाइल पत्नियों को नहीं दिखाते हैं कि नहीं। रात के 8:13 दिलों की आवाज स्ट्रेट फ्रॉम ऑल एंड फ्री रेडियो मनोरंजन, और लाइव टिकटॉक पर भी यह प्रसारण चल रहा है। सो द नेक्स्ट गाना विल बी मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी मैं तेरे लिए। करुणा भोला गीत आपके नाम, पूजा वृषल यह गीत आपके नाम, लाइबा नस्तरी परमा यह गीत आपके नाम भी। और जितने भी लोग हमारे साथ टिकटॉक पर जुड़े हुए, हमें देख रहे हैं प्यार से, हमारी आवाज़ को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू जी, सो स्वीट ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी बोथ टुगेदर ऑन रेडियो मनोरंजन एंड टिकटॉक पेज। मैं तेरे लिए तू मेरे लिए, काश हर कोई यही गीत गाता तो कभी पति पत्नी में झगड़ा ही ना होता। सोचने वाली बात है।

मैं तेरे लिए तू मेरे लिए। रात के 8:19 दिनों की आवाज, जी हाँ दिनों की आवाज हम तक पहुंच रही है रेडियो मनोरंजन और टिकटॉक पेज के जरिए। अगला गीत सनम संग दिल सनम, बहुत ही प्यारा सा गीत शिल्पा के रस से, उनकी माँ राधा, उनके भाई प्रशांत, वर्षा बेबी, बेटी रुद्रांश और उनके पति आकाश के लिए, और मौता बा के सब सिबालक परिवार के

नाम इब्राहिम पोट्री से करुणा भोला गीत आपके नाम भी और बहुत ही प्यारा सा गीत है सनम संग दिल सनम ये आप भी गाइए हम भी गाते हैं

सनम सनम संग दिल सनम मगर सनम ना हो तो कैसे जिया जाए उसके बिना। यस, बहुत से लोग इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए। दिलों की आवाज टिल 9 पीएम ऑन रेडियो मनोरंजन। अगला गीत तुम ही तुम हो मेरी जिंदगी, तुम ही तुम। बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी जुआरी। यह गाना हम चलाएंगे कविता दोलिप के नाम उज अगेन पेल्जम। यह गीत आपके नाम दिनेश जी, यह गीत आपके नाम भी और अनिसा मोहंगा, नसीमा बाजू हमारा साथ है, हाय राम्या। और फिर इस समय जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, यह गीत आपके नाम भी ना अमृत, यह गीत आपके नाम भी। और यही गाना हम चलाएंगे उन सब लोगों के नाम जो अभी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली और हमारा साथ देते रहेगी। और शमीदा मुतू भी हमारे साथ जुड़ी हुई, हाय कनुष। ओके, द नेक्स्ट गाना फॉर यू, हेलो क्विंसी, ऋषि शिवमाई, मुशीरा, अस्सलाम वालेकुम। यह गीत आपके नाम, तुम ही तुम हो।

जी कहता है कि बस यूं ही प्यार के गीत सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं और ये गीत कभी समाप्त ना हो, है कि नहीं? कसम की कसम

और न होगा कसम से। बहुत ही प्यारा सा गाना, मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म का गाना है। यस, बहुत ही प्यारा सा गीत रीना के, उसे उनकी बेटी रूही और पति अविनाश के नाम, और विश्वानी जवन हमारे साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू जी रेडियो मनोरंजन सुनने के लिए। अर्जुन राणा, विक्रम बुधना, यह गीत आपके नाम भी, विमला तीना बुधना भी हमारा साथ दे रही है, उनके पति रोशन, फिर दो बेटियां हैं और सब बुधना परिवार के नाम। अगला गीत जाएगा भावेश बिसेसर, आज उनका जन्मदिन है। भावेश, हैप्पी बर्थडे। और आपके पापा है विशाल, मामा, फिर पूरे परिवार। भावेश, भावेश

Ich bisse sir could he sara piara shirwad birthday boy. So he sara from pipe karne wale hai. Do your best and get excellent results. Hamara shirwad aapke saath hai. Bhavish bisse sir holiv sat la flora. प्रतिमा यह गीत आपके नाम भी प्रियंकर्म गीत आपके नाम और जितने भी लोग इस समय हमारा साथ दे रहे हैं गीत आपके नाम भी कसम की कसम से हमें प्यार है तो बस तुमसे और किसको किससे प्यार है ये तो भगवान ही जाने

रात के 8:40 हो रही है और आप सुन रहे दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और एम्प्री रेडियो मनोरंजन पर। इसका प्रसारण लाइव टिकटॉक पेज भी चल रहा है इंटरनेट के जरिए और बेशक हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों गीत को चलाने के लिए। फातिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हेलो फातिमा जी। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ये गीत जितना प्यारा है इसके बोल भी बड़े ही निराले हैं। जी हाँ, और बहुत से लोग हमारे साथ इस गीत को सुनने के लिए तैयार है, तो चलिए हम भी आपको ले चलते हैं प्यार मोहब्बत की दुनिया में, जहाँ बस लोग इस प्यार मोहब्बत को जो है इस प्यार मोहब्बत में डूबे हुए हैं और हमें सुन रहे हैं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। चलिए एक साथ सुनते हैं सभी प्यार करने वालों के नाम।

ग्लेन जॉन की आवाज़ में आप गीत सुनेंगे, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। होता है ज़िंदगी में कभी किसी के आने से क्या आप उसे अपना सब कुछ समझ बैठते हैं कि नहीं, और वो ही एक दिन आपको छोड़कर चला जाता है। सो रीड नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू, अरविंद करुणन, यह गाना आपके नाम, सावी यह गीत आपके नाम भी, और यही गाना हम चलाएंगे रोशन साहब के नाम, यस तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। ये गाना इमानुएल लॉन्गचिल एसएसएस के सभी स्टूडेंट्स के नाम जिस समय हमें सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन पर।

दिलों की आवाज दिल से दिल तक पहुंच ही गई और यह अंतिम गाना जी हां इंतहा हो गई इंतजार की किशोर कुमार आशा जी की आवाजों में और यह गाना हमें लेकर जाएगा ठीक 9 बजे यह प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा दिलों की आवाज शाम के 6 बजे से अभी तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया शुक्रिया करम मेहरबानी थैंक्स फॉर कॉलिंग मी फॉर टेक्सटिंग मी एंड फॉर वाचिंग मी लाइव ऑन टिकटॉक अब रेडियो मनोरंजन 9 बजे हमारी आपकी मुलाकात हो रही है रेडियो मॉरिशस पर और उसका प्रसारण यहाँ भी चलेगा पर लाइव टिकटॉक होगा रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर सभी के लिए हमें इजाजत दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आई विल कैच यू एट 9 PM on Radio Mauritius and Radio Manoranjan in Bhojpuri Tarka program. Bye-bye. See you on Radio Mauritius.

0: संगतिया लोग घड़ी मिला लाई बखत रात के ठीक 9:08 हुआ था। तू सुनते हुआ रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और प्रस्तुत बातों के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: Continuous music. RM3.
3: Bhojpuri, Tadka. भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
0: प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। सब संगत प्रताप सिंह के प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन और हमने के लाइव टिकटॉक रेडियो मॉरिशस के पेज पर हमने के देखा था बच्चा तो ये प्रोग्राम देखा जाता और सुना जाता भी। क्या बात है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मन करता कौन भोजपुरी गीत सुने कहते नंबर वा घुमाइया कार्य हो दे विद्याक या फिर टिकटॉक पेज पर अपन भेजा जा रिक्वेस्ट तो रिक्वेस्ट हमनी कोशिश करब सर। ये प्रोग्राम भोजपुरी के प्रोग्राम है तो हिंदी फिल्म गीत हिंदी के गीत बॉलीवुड के फिल्मी गीत

नेमंग या वो कहती तेरे वास्ते बोला था ही तो थे कोई नहीं समझता ल यहाँ भोजपुरी तरकाई की भोजपुरी कार्यक्रम भोजपुरी गीत मांगिया इधर उधर के बात नहीं करिया कोई के निंदा चुगली नहीं करिया गीत मांगे की प्रोग्राम है गीत मांगिया जा खाली ठीक बा हाँ और जब तेरे फोन ही करवा तो राजू के वॉल्यूम कमती कर दिया वरना नहीं सब बचाई है अगला गीत सब रेडियो मोशस और रेडियो मनोरंजन के संगत यालो के नाम जो नाम की सुना था भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में इंद्रासन से ढोलक

हम भी गमन कर आए हैं, चलो के संगे संगे रेडियो मॉन्स्टर्स रेडियो मनोरंजन पे अभी से लेके रात के 11 बजे रे। और ढेर कोई खुशिया रोटी खाए के तो ढेर कोई फाता, कोई खुशी रह रहा नान खाए के दाल पूरी पूरी या फिर लीटी। अब लीटी कौन सी है अभी के नौजवान लोग नहीं जाने लीटी, आगे लीटी मुर्गी के दिया दल खाए के, ढेर कोई लीटी खाता चटनी डाल के हो नहीं तो सबके अपन अपन पसंद है भैया। और बात करब सब मुर्गा के, और आगे के जमाना में सब कोई मुर्गा मुर्गी पोसत है, फुलाइए में जब फामी आई तो लगे घूमे तो बस को मुर्गा निकाल के तकारी पका देते सब मुर्गा लटपट मसाला में आलू डाल के, हाँ कि नहीं। लाल लाल मुर्गा के लंबा लंबा ठोरबा है गीत रोबर्ट भाई खातिर, ओकर प्रेमिका ओकर जान खातिर है गीत, बहुत बहुत प्यार के साथ अनिता गीत और खातिर, फिर शमीला हवन और है गीत आज चरावती सर, अशिता के नाम दिया जोगेसर, कविता सिरतन, मिकेश, सानिया, सुमन और है गीत चरावती सर, रोशन देवी, नानी और सब संगचार के नाम, और मागी भी हमने के साथ देवत हवन तमागी है गीत तो रो खातिर, बहुत बहुत प्यार के साथ। लाल लाल मुर्गा के लंबा लंबा ठोरबा, लाल लाल मुर्गा के भाई मुर्गा जो है मुर्गी बिना मकई नहीं खाला वो आगे आगे जाता मुर्गा, लाल लाल मुर्गा बाप रे बाप, तो मुर्गी के देखला तो नाचे लगल मुर्गा मुर्गी के नाच अभी के लेकर लोग नहीं जानी बा, अभी के लेकर लोग कब मुर्गी देख रहा कोई नहीं बा, तो कैसे जैसे मुर्गा मुर्गी के नाच कैसे होला है तो है कि तो खासम खास समी चलाओ सर, चित्रा और ज्ञान विश्राम खातिर रहेलन मौदल बे कमला दिनु है गीत थोरो खातिर, और सब संगतियों के नाम जो हमने की सुनत आ रही जो मोशस रेडियो मनोरंजन पर, बेबी है गीत और खातिर सुरेंद्र कुमार है गीत और नाम रिया और सुनीता के नाम है गीत लाल लाल मुर्गा के, सुना नयन की आवाज़ में

बिरल मुर्गा मुर्गी कहानी है मुर्गा लोग के सुनना मौका था मुर्गी और कानार बिचारा था क्वैंक क्वैंक क्वैंक क्वैंक कर रहा था रात के 9:20 हाँ कि तो बड़ी हंसी लगता है मुर्गा मुर्गी जैसे क्वैंक क्वैंक कर रहा था मुर्गा बोले रहा कुकू रुकू आगे मुर्गा जब गीत गावा था फजीत के तो सबको नींद से जागी शमीना बड़ा जोर हंसा था बोले प्रताप जी अभी भी मुर्गा मौके रहा फजीत के बाप हम तो नहीं सुन रहे का आज नहीं अभी मुर्गा मुर्गी हाँ जिक्र लगे मुर्गा मुर्गी बा तब फजीत के मुर्गा उठे तब बांके रहा कुकुरुकू कुकोरी को करे रहा था सबको नींद से जागे रहा और मुर्गी तो पक पक पक पक पक पक पक पक पक पक पक पक कर ले रहे दिन भर हाँ कि नहीं अगला गाना मरमीत में चढ़ा हुआ गर्म पानी कौन सी पकता हो तो अगला है गीत चलाती सा अजमेर खान खातिर दृष्टि खातिर फसीरा सफुरा गीत हो रो नाम साथ में गीत चली शमीरा खातिर और अनिल राम भजन हेमलाल मगर नैशिया सिबालक सुभाष बड़ा जोर हंसा था सुभाष सागर जी भी हंसा था मुर्गा के बौंकल सुन के कुकुरू कुक हाँ कि नहीं और अभी देखा था ढेर मना SMS भी आवा था ऐसे में सब पढ़ नहीं रहता तेरे न पढ़ लग पड़ता भाई एंजॉइंग योर प्रोग्राम फ्रॉम लंडन ओके राजेश रघुपत गीत तो रुका थे लंडन से इनके सुनो तो वन उंगले थे ऐसे सुने भी वाकवा से गीत मंगले वन थ्रियोले के दीदी ललिता कुशल परिवार आत्माराम भैया दीदी सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के रमलदन परिवार और हे गीत चलावत इस बदवज विदेशी के नाम तायाक रहेलन अनुषा खतीर जो रहेलन मौताबा और है ये तो हमने चलावब स खासम खास डॉक्टर अंजू के अशोकर मंगेतर चंपा और देविका रामगतिया वीना दुमा गीत और खतीर वीरानंद दीनदयाल के अशोकर संगतिया साइलेंट के नाम त चला भी मरमित में गर्म पानी चढ़ल बा और आगे के ज़माना में बड़ा बड़ा डेगची रहा बड़ा बड़ा मरमित में खाना पकतल चूल्हा में लकड़ी दलब आग पर बब आग धन की तब सब कोई जो है क्या तान कर सब खाए के पकी मसाला आलू उलू डाल दी बब डब कर करी तब को चीज दलब कर में ना हर कभी हर नाम गीत और खतिर क्रिस शाया साहिनाज इमाम पिराली होसेन सलाम अलैकुम भाई है गीत हो रो नाम मरमित में चढ़ल बा गर्म पानी अब गर्म पनिया में कौन छिपका था चलो एक साथ सुने

मरमित में चढ़ा बा गरम पानी और बुरीला से कि जे तू चाहत हो रात के थोड़ा नींदे लगी थोड़ा गई विजमा करके कि रात के कोनो काम बा करके त जमी नींद थोड़ा नहीं लगी त व्हाइट कॉफी काफे पिया काफे जब पीब त नींद नहीं लगेला उस अकेला व्हाइट कॉफी हो या काफे जुन है त थोड़ा सा दूध बुई करिया एक कुया काफे दे दिया मिलौसी करिया और पी लिया त दिखे थोड़ा नींद नहीं लगी और खासम खास जे कोई ड्राइव करेला रात के वक्त कहूँ जात हो जाता बेशक जन बोली हम थोड़ा कि अपने अब एक बुते में तो सुन काफ़ी ले लिया और जैसे हम बोली कुछ बढ़तरी हाँ जमीन जबरा नींद नहीं लगी तो काफ़ी पी लिया ताकि थोड़ा नींद नहीं लगी रास्ता पर या फिर लवंग एगो बर्तन में रखिया जैसे थोड़ा नींद लगी बोलो मैं हवा कोंचाई कर रहता हुआ तो लगवा पर मुंह में डाल दिया और दांत से होकर खास ही कर जाता हूँ जो तीखापन रही और कैसे थोड़ा नींद नहीं लगी या फिर एक बूते पानी रख दिया अपन जहाँ कोंचाई कर रहता हुआ सोफिया के बगल में जो सीट बा तो जब थोड़ा नींद लगी तो हम बूते पनिया से गैसे बन मुँह ऐसे कर लिया ताकि नींद थोड़ा नहीं पकड़ी कह के जब नींद लगेला भोलों पर अब थकेला दुर्घटना हो जाए हाँ कि नहीं तो चला अभी अगला गीत सुन सा पीछे पीछे ला मसाला हिला हिला के डोला डोला के पीसे पीसे ला मसाला अब हिला हिला के मसाला पीसे था बाप अभी रतुआ के जोयराम साहब से सुनब जा हाई गीत चलावती सा गौबे के रतन निहाल खातिर उकर बाप विजय पत्नी करुणा संजय हरिचंद उकर पत्नी संध्या बेटी हुविष्का के नाम और जितना कोई अभी उनकी सुनाता रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर और टिकटॉक पेज पर देखो हमने दिखा था जैसे कि कविता खुबलवा है गीत और खातिर तपन चौधरी पांचु संजय गीत तोहरो नाम शिवम और फजी फजीला सुफुरा

0: Manine Pandya, Serena Antoinette, Siddiq Rajbal, Shaivi, Ram Kumar, Tapan Chaudhary, Ashita Abdul Kadir, Roshan Devi. ये सब संगत यालोग हमनी के अभी देखा तो वंसा TikTok पेज पर Radio Mauritius के तहगीत तिलो के नाम भी और संजय पांचू बता हेलो हम बोलब नमस्ते भैया कैसे समाचार गमट हुआ था कि नहीं यहाँ तक खूबे गमट हुआ था हो गमटवा होते रही रात के 11 बजे रे भी रात की 9 बज का आधा होलबा यास्मीन भी बोलता चल गुच्छा का चक भोजपुरी गीत हम रो खातिर ते यास्मीन चल नाचे मस्ती से सिसिला मसाला हिला हिला के डोला डोला के
1: दीदिया ए दीदिया पीस दीदी पीस मसाला तसा तसा तकारी बा हरिन के मच्छी के पीस दीदी पीस

पिसे पिसे ला मसाला हिला हिला के अब हिला हिला के डोला डोला के मसाला पिसे तब गाय देख रहे ला कैसे मसाला जब गाय ताला कर रहा था मो रात के 9:35 रेडियो मोशन रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही हंसते गई थी रही हमने के साथ देते रहिए हम तक खूब गमत करते हैं हम बोलते हैं पिसे पिसे ला मसाला हिला हिला के डोला डोला के और हम कल गए थी बाजार रोजबेर को बड़ी अचरज के चीजें के लोकल पकल आम भाई फोमिएफा मलावी में लीविया में देखा था पकल आम कब हम नहीं देखते रही बहुत सा मांगला कौन सीजों सा था कौन गए थे आम है भैया कि आम पकल बा लीविया में और पिछला सामने की गर रही माइबू नहीं डूबे गर रही वहाँ पर ही हमने की शो रहा याद बना सामजी के बीच पार्टी रहा रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती तो वहाँ पर ही पकल आम बेचा तब लीविया में कैसे आम पका था ये थोड़ा बोले कि जीव सिल्वा पर हम देख लिए हैं और गुते भी कर ली अम्मा सुपर एकदम मीठा आम रहल का थोड़ा बोला भैया लीविया में भी आम मिला था सब कुछ बदल था भैया का कर भाई दुनिया ही सेवा जोड़ी जोड़ी पकल पकल आम दस्ती रहता तो लोग खाती रखती थी ना तो हो सकता गुथे करे तो चला अभी गीत सुनब जा बैगन बागी में करेला तुरे ना जाइया अब बैगन बागी में करेला कहा खोजे तो अब बैगन की बात कर सकते सब कहते बैगन बा पीती बैगन बड़ा बैगन अब बैगन के चटनी बनेला बैगन भुंजी रहा सा बैगन आलू मसाला में बैगन के गातू भी पकेला और बैगन के बैगन से ढेर मना चीज तैयार करी रहा सा हाँ कि नहीं ये पौष्टिक खाना फिर को बोलेगा तो मतलब बैगन नहीं खाए कि नहीं हो सक बस सब चीज़ खाए पर हिसाब से जब हिसाब से नहीं खाइबा तब ये प्रॉब्लम होला हाँ कि नहीं तभी सुनम सा बैगन बागी में करेला तुरे बता नहीं जाए कि कुणाल बाबूलाल गीतवा गए देवन और शास्त्री बनवालियम के साथ देव तो गीत और खातिर और चलो एक साथ सुने बैगन बागी में कौन कहानी कौन सी हुआ था

तो अब सब कोई नचले रहलन के याद बा जब गीत निकल पैंक पैंक कुछ झुलवालो तो शादी में चौथारी में सब कोई गीत पर खूब नाचता है आहा हम तो अभी दिन नचते हैं भैया पैंक पैंक कुछ झुलवालो तो पैंक पैंक कुछ झुलवालो तो नया नया सफेरवा तो जब वो छोकरा नौजवान छोकरा फिर कोई लाइसेंस मिलीला तो सीमा में गाड़ी नहीं चला रहा सीमा में उड़ेला आखिर बनी रहा हाँ कि नहीं नया नया सफेरवा अब नया नया सफेरवा की कहानी सुनब से पर वो कहानी से पहले अभी वो फिल्म के जिक्र होता है आजकल फिल्मों के नाम बंदर ये हिंदी सिनेमा में नई फिल्म रही है फिल्मों के डायरेक्टर अनुराग कश्यप पिकर में बा बॉबी देओल सानिया मल्होत्रा और साबा अराज फिल्म के नाम है बंदर जरा सोचा ऐसा भी नाम रहे राजी हाँ एगो बॉलीवुड मूवी रही अब फिल्म जब आए बड़ा पर्दा पर सिनेमा में तब बुझाए फिल्म कैसन रही तो फिल्म के नाम याद रखिया फिल्म के नामवे है बंदर फिल्म के डायरेक्टर है अनुराग कश्यप और फिल्म में मेन रोल में बॉबी देओल काम कर रहा बॉबी देओल के कमबैक हुआ था हाई फिल्म में जगह नाम है बंदर अब नया नया सफेरवा की कहानी जो है सुनब जाए गीत आशा मित्यु का तीर सोनन चितन के है गीत थोर नाम भाई धनी राफलवासेवन गौरंगा भाई है गीत तोरो खतीर पुलाश भाई है गीत तोर नाम बम बहादुर जी है गीत और खतीर सुमन है गीत और खतीर मुनीर नील ग्रीन है गीत तोहर नाम और फिर नीवा है गीत थोरो खतीर अनिता प्रताप है गीत और खतीर नील ग्रीन बोलता बैगन बागी चल गए भैया अब सुनब से नया सफेर हुआ के कहानी और सफेर भाई लोग अभी रात के ड्राइव करते थे गड़िया गाड़ी धीरे धीरे चलैया गड़िया लेके ओढ़िया नहीं भैया गाड़ी नहीं बनावल बा उड़ाए की गाड़ी बनावल बा चलाए की ठीक बा

हाँ तो पेमिया पॉइंट बिगिया बा भूलिया नहीं तो रास्ता में उड़िया नहीं जहाँ नहीं दुबले करके वहाँ दुबले नहीं करिया और जहाँ पर होन नहीं दबा के वहाँ होन नहीं दबाइया गुरदुरा हो तिमन से सीखिया और रोबो जब वे बात तब जाइया रोबो जब लाल रही तो चेहरा आगे थे हुई कि हो कि नहीं सब सफेर वा खातिर गीत चली से सफेर बोलता हाँ प्रताप भाई तोहर बा तोहर में दम हा हा फैशन के जमाना में भैया सब कोई खुशी रहेला जोरी से आप भी ये कि तेरे को जरा ब्यूटी पार्लर में मैनिक्यू पेडिक्यू करे फेस स्क्रब कौन सी है वो ऐसा ना कुछ चीज जो मुंह में घास बा तो जोरी दिख बा पुरुषों खातिर बा और महिला खातिर भी बा वो गो कैसे बोला मुंह सफा करे के गाल सफा करे के वो बेचारा ओके फेस स्क्रब बोला ला तो उसे डाल दे बा मुंह में लगा दे बा आधा घंटा ओके रहे जैसे मुंह में निमन से घास दिया बतावा तो टिकटॉक पेज पर कैसे लापता वाले की निमन से घास दिया तब दिमेतों के बाद ओके चेत पानी से धोया तो दिखबा तो चेहरा एकदम साफ हो जाए जोरी आगते लिखा दिखबा आखिर सिखा दिखबा हो कि नहीं तो भाई जगह लगे पैसा बातों तो ब्यूटी पार्लर जाए बेगी करी और देखो बेटा ब्यूटी पार्लर खाली माधाम लोग जा रहा मिश्र

जानना ही हो आजकल मिश्री लोग भी गंती रहता है बोलन से मिश्री लोग नहीं करे नए लोगों जान से लामो दुमुत करी कहे कि फैशन की जमाना बा कैसे बार में कोलोहों डाले के पियर्सिंग टैटूआज जोड़ी जोड़ी लुगा पहने के ब्रांड वाला जूता पहने के जोड़ी जोड़ी शमीज पंतालों और मैडम लोग कुछ साड़ी चूड़ीदार सब पहने के जोड़ी जोड़ी क्रॉप टॉप क्रॉप टॉप हम पहले फर्स्ट सुने थे हम पूछते थे क्रॉप टॉप कौन सी हम तो नहीं जाए ना भैया और बा शरारा शेरवानी सब तो फिर कोई कुछ जोड़ी दिखे के हम कुछ जोड़ी दिखे काहे नहीं तो तू भी जोड़ी दिखे जा और जाइया ब्यूटी पार्लर मैनिक्योर पेडिक्योर करिया फेस स्क्रब लगाइए और जोड़ी जोड़ी लुगा पहनिया ताकि सबके बोली गिस्सा जोड़ी मामजिल्ला दो जैसे कि बोली ए गिस्सा जोड़ी मिशिला दो भाग गल खसिया बाप रे बाप अब खांसी कहाँ भाग गल हम तो बोली राम बाबू के खांसिया के पकड़ के रखे के बांध ले के खांसी के कैसे ओके बांध के रख रस्सी तुर के भाग गल अब देखी रहा तो सौ एमबीसी मुका में खांसी चला बा तो है जो गीत है खसिया भाग गल भाग गल खसिया रस्सी तुर के है गीतवा जो हम चलावा तो इस अश्विन बच्चन खातिर उकर भाई और सब बच्चन परिवार जो नगवे जी पोसे अवन उदय धनी राम है गीत और खातिर तो सब परिवार के नाम किशन गुड़िया पर है गीत रीता सीतालू के रसों का बेटा शैलेश पिता साइलेन बहुरानी बहु रेशमा परी और अनुष्का खातिर साथ में है गीत चली माधव के ओर से ओकर चाचू साइलन के नाम अपन चाचा जान के बड़िए खुशी रहेला साथ में गीत ओकर पापा कवि मामा टीना पुपू रीना दादी माला और सब भैरव परिवार के नाम तो चला भी सुनब जाए कि कैसे है खसिया लबका रसी तुर के भागल रे बाबा चला खोजे खसिया के अरे खसी कहाँ हुआ और ये गीत चलावती सर शमीला जी के नाम देव कुमार गीत थोड़ो कहते अपदान है गीत थोड़ो नाम

0: Continuous music. RM3.
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
3: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
4: रात के 10:03 हुआ था। तू सुनो तो रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन। और हमने की देखा था रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर। अब हमने और एक घंटा ले तो लोग के साथ देव अब सब भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में रात के 11 बजे ले संगठन लोग कब सोचते हैं मच्छी मरवा के काम कितना आसान नहीं रह रहा, बहुत मुश्किल काम है। फजीर के 2-3 बजे फजीर के लोग चल जालन सब मच्छी मारी फांसी रहा नहीं ठंडवा में जाए के बातों लेके लामे में कबो लामे मूवे रह रहा आसान काम नहीं है। हाथ साफ वही रह सब मच्छी मरवा लो कभी कुछ संगत वाला लाइन पे कौन से मिल जाए। हेलो
5: हेलो
4: नमस्ते
5: नमस्ते प्रताप जी
4: के हवा जा
5: श्रीमती
4: तो राजो धे जोर बा श्रीमती राजो कमती कर दे बना पर टेलीफोन काटे के प्लीज।
5: हां ओ देखा
4: कमती कर दी। आज के दिन कैसे बीता श्रीमती जी?
5: आज के दिन अच्छा बीता भगवान के चोसे। हां और ये कृपा कर ली लक्ष्य भगवान हाथ गोर अच्छा से रख ले बा हबी।
4: हां इतबा देखे अभी किस ढेर कोई किताब बीमार बा हॉस्पिटल में ना दिखा तो।
5: हां दिखा तो ना अभी तक सुया के हॉस्पिटल में भी आज बीमारी सब आवा था ना
4: काज निको नवा नवा बीमारी सुनाता डेंग त चिकन गुनिया त काज निको ची
5: कैसे दिन जाए कैसे सब मलादी आवा था।
4: हां त कलयुग के अंत इसने होला ना मामा का करबा
5: का
4: कलयुग दूर कलयुग के अंत दूर नहीं बा। थेर कोई बोला था स्वामी लोग बोला था कलयुग के अंत दूर नहीं बा। बड़ी मूवी आदमी आजकल बड़ी मूवी
5: आदमी लोग बहुत मूवी
4: कोई पर विश्वास नहीं सकब करे
5: कोई पर विश्वास नहीं सकब रखे। और मलादी नहीं जन बा कहां से आवता
4: मलादी तो को बहाना है ना श्रीमती
5: कैसे आवता कैसे नहीं आवता
4: काजनी बाप
5: नहीं जाना
4: था
5: ऐसा। हां गीतवा डाल दिया हमर कति हम तो मच्छी मारी ना
4: मच्छी मरवा हमर नाम अभी हई गीता चली हां बोला तो खुशी रहला मच्छी खाई के मच्छी के तकारी
5: मच्छी
4: नहीं खाई हम तो गीतवा खुशी रहला सुने के आले कोई बात नहीं
5: ये परिवार था ये दुगो परिवार बा
4: हम जानी रहा तू हमेशा से मोहेश के मांगे ला चंद्रमणि परिवार हम जानी रहा सर
5: ये दुगो परिवार बा ना।
4: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

0: अच्छा, जो इतना रात के जीजे ओंजे रे तो लोग के साथ देवते हैं, हाँ कि नहीं?
1: हम तो दो दिन तीन दिन तक फाचिगे हो गई ली।
0: काहे?
1: दबाई से उंगली दुखा।
0: चाची है ने सुनिया टिकटॉक पर आया, टिकटॉक जाने टिकटॉक?
1: टिकटॉक नहीं जानी।
0: लेका लोग के बोल दिया कहे एगो लेका ने सकला बताई लिकुल से। लड़का
1: लोग
0: तो अपन अपन अपन अपन काम में रहे लड़का को नाती होती है बोलिए बताए कि दिख भर चाची श्रीमती भी टिकटॉक पर आवा था। अरे बहुत धन्यवाद चाची,
1: धन्यवाद आपको भी।
0: आली नमस्ते। अरे भाई राजन लक्ष्मण लाफलोआ से। हेलो भैया।
2: ठीक है भाई जी, ठीक है।
0: हम ठीक है, तू कैसे हुआ भैया?
2: बिल्कुल
0: ठीक। तो राजो के बोलूं ढेर जोर बा कमती करे वरना पर दे कॉल वा काटे के भैया प्लीज।
2: एको प्रॉब्लम बा, एको प्रॉब्लम है चमा।
0: आली
2: ठीक बा,
0: आली अब बचाओ। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं तो राजो जोर बा, तो राजो के बोलूं जोर बा, हम माफी चाहते हैं ने सकब से बतिया काहे कि है जो रिजोनी करेला यहां पर एकदम से बुजराम की कान फाटा था भईवा। राजवा के बोलूं कमती करला,
2: एको प्रॉब्लम बा वॉल्यूम पर।
0: अरे बोला बोला बोला, अरे सुनी ना से बोला।
2: तो क्या दादी समय हो तो?
0: हाँ,
2: उन्होंने हरिपाल, मैंने हरिपाल या मांगे अयोध्या के राज
0: गीतवा के गई लगभग।
2: मैन हरिपाल,
0: मन हरिपाल,
2: मैन हरिपाल,
0: माहन भोजपुरी की जा है गीतवा जन
2: अयोध्या के राज।
0: नहीं है गीतवा जन मंगला, ये को भोजपुरी की था या हिंदी की था?
2: भोजपुरी की था।
0: महेन हरिपाल
2: रेडियो में
0: लापरवाह में हम दबावत है यहाँ पर कंप्यूटर में हरिपाल। अरे खुद अब सर गीतवा का बोलेगा
2: या मांगे अयोध्या के राज,
0: या मांगे अयोध्या के राज। गीतवा के कर खातिर भैया
2: राजन लक्ष्मण
0: और
2: मेरी पत्नी माला एक बेटी अपराधना जिसकी मेरी प्रगति।
0: ओके। अभी क्या बज रही सुन रहे? रात की 11 बज रही। अरे खुद अब सब हाँ कभी हाँ तो बेशक गमटवा करती रही हमने की संगे संगे
2: प्रतिदिन।
0: कैसे बुझाला हमने की प्रोग्राम भोज हुई तरह का? अच्छा बुझाला
2: प्रोग्राम बड़ा
0: एकदम
2: चक्कर लाइन नहीं
0: मिला। ए ता टिकटॉक पर आओ, टिकटॉक टिकटॉक जाने ना। नहीं
2: अरे
0: बोलिया डाले के सकबा की देखिए और सकबा मिसाज से विदा करी। अरे बहुत धन्यवाद भाई राजन, तोह से बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। शुभ रात्रि एगो संगतिया बावर एगो। हेलो
3: हेलो प्रताप जी।
0: हेलो जी के हवा जा?
3: हाँ
0: मानू
3: है रोजबेर से। हाँ कैसे सब ठीक चला था?
0: हाँ चला था धीरे धीरे हौले हौले।
3: अच्छा हये चहला हौले हौले। अब एक भाई है गीतवा मंगलन।
0: हाँ
3: सिया जी मांगे अयोध्या के राज तब होना मांगेला, सीता जे मांगे ला राम ये सन पुरुष अहो सीता मांगे। अरे गिटवाता था
0: सीता मा सीता मांगे ला था उदसर बोला था, सीता मांगे ला नहीं बोला था। जो बोलक था तापे कहते नहीं पागल जो था लापागल
3: नहीं नहीं
0: है गिटवा सिया जे मांगे जब बोलक तो हम कॉपर नहीं गिटवा किसी सिया जी मांगे कैसे गीतवा कैसे बोले ना?
3: सिया जी मांगे रा
0: सिया जी
3: सिया अयोध्या के राज तब होना मांगे। हाँ
0: अरे खोजब सा भी खोजब सा फिकर नहीं
3: अति सास सा खोजे लन मैं बोले जाला ना गीतवा में। हाँ अरे हम एगो गीत मांगा था अब मेट्रो में चले के मन कर बाद ढेरी से नहीं चढ़ ले
0: ए ता चाची
3: मेट्रो में गीतवा डाल दिया चलो चले। अब एक हमारे को बेटा प्रेफेरे है अभी यही से नहीं भेटा था वन धर्म नन का
0: नहीं भेटा भाभी थोड़ा थे दिन
3: ना लोग का ताकि ना दिन से उनका पत्नी है वन संजा उनका दुगो लड़का अभी खास के हमारे नातिन है वन सिया वे 10 महीना के है वन और हमारे नाती है वन 7 बरिस के दूर है लन फ्लैक है गीतवा डाल दिया तोहरो खजीन चलब सा चढ़े मेट्रो में
0: काहे नहीं काहे नहीं।
3: हाँ तभी ढेर से नहीं सबसे के नहीं गल है होने ना
0: आले आई बात जरूर एमबीसी विजिट कर लिया ठीक बा।
3: हाँ आवा हाँ
0: आले बहुत धन्यवाद।
3: अच्छा है गीतवा डाल दिया बहुत

0: धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद शुभरात्रि हाँ तो गीतवा के बोल है अयोध्या के राजी खाती तो लोग सिया जी मांगेला हाँ बाकोलवा मैं सिर मो हमने के एल्बम में लिखल बा अयोध्या के राज और हरिपोल माहन हाँ तो यही गीतवा है तो तू लोग अच्छा से नहीं बोल रहा सब खाती जब यहाँ तापी करते गीतवा नहीं आवता गीतवा के शीर्षक हमेशा याद रखे तो रमन कथा को गीत सुने के गीतवा के टाइटल है अयोध्या के राज और गीतवा गैले वन महन हरिपोल अभिमन्यु ठीक बा तो आप लोग जो भाई हमके सुने कर लग तो थोड़ा बोला तो अभी ना मंगबा तो बोलिए एल्बमवा है अयोध्या के राज ठीक बा गीतवा चलाओ सर देख ला ना कितना फरल खोजे के पर तो लोग अगर निमन से टाइटल वा बोलबा सर तो हमने फांसी खोजे के अब बोलबा सिया के राज तो सिया के राज अब यहाँ तापी का तेलापाई में तक कुछ नहीं देवता अयोध्या के राज दली अब दली अभिमन्यु हरिपोल माहन तब गीतवा पागे थो तो चल अभी गीतवा सुनब जा भाई आप लोग जो भाई रहा सुने कर ले मन कथा सुने के तो चल गीतवा सुने अयोध्या के राज

रात के 10:20 हुआ था और तू सुना था रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पोच पितर का प्रोग्राम रात के 11 बजे ली और अगला गीत पियर पियर उठी है गीत वेरी लव खतीर चरावती सा माहिर खतीर और उमा दर्शन ओबीएम के साथ देवतवन साहिल दत्तू के जन्मदिन बाद वनिशा का गीत मांगने वन और बानु सुखिया है गीत तोहरों खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और बेशक जो उठे की बात कह रहे सोना के उठे के बड़ा मोल बा फौतेजियों के मोल बा नहीं बोलते नए पर सोना के उठी जब उंगली में दरबत निमन से देखिया कहीं

गिरू नहीं जाई ऊठी गिर जाई तो ऊठी के खोजे के बड़ी मुश्किल होला नसीमा उमन गीत और नाम अंजलो आई गाना तोरो खातिर और तोर सब परिवार के नाम पियर पियर ऊँठी पियर पियर ऊँठी की कहानी कौन सी बात चल एक साथ सुनी

संगतिया लोग जब सामदी की रात के अपनी हरदी में जायरा सत कौनच मिले ना खाई के पत्ता पर खायरा सत गरम गरम पूरी कोपवा की चकारी करी बरी की चकारी दाल

गारी चना दाल की और पूरी आहा और पट्टा में खाई बता रोटी सकबाई खाई खा ली और ढेर सानी चेहरा बस थोड़ा सुन गरम गरम गरम दाल कच्चू चना में और पूरी हाई हमने के सात दिन मिल गया खाए के भैया तो रोज के ही खा सक का बोलत हुआ है। और अगला गीत है जो गीत है गरम गरम दाल कच्चू संतोष संतोष महादेव गीत अगले वन है गीत चलावती सब विकास की ओर से कर पापा दयानंद लक्ष्मण परिवार और मामा फिफिन के नाम और जयराज के नाम भी गीत चली नेहा लाल माची सेवन आंतीश अंकुश बहु खतीर और सब दुला परिवार उमा दर्शन परिवार के नाम भी है गीत चली इंद हमने की देखा था वन टिकटॉक पेज पर तह गीत थोड़ो नाम गरम गरम दाल कच्चू अगर ई बखत और गरम गरम दाल कच्चू मिल जाए बनान के पत्ता में थोड़ा सुन भात और पूरी साथ में एक गोपी माँ के अचार बिलैबी के अचार ओए होए क्या बात है

कल हमने जो लोग बोले रिसा की फिलीपींस में गो भूकंप आ रहल बहुत ही बड़ा भूकंप आ रहल कल और काफी नुकसान पहुंचल बा चारों और फिलीपींस में और रिश्टर स्केल पर तीव्रता 7.8 माना जाता सारंगनी प्रोविंस के तट के पास ये भूकंप आल बा और ये भूकंप से ढेर मना बर्बादी होल बा वहां पर ही मिंडनाओ के समुद्र के आसपास में और लेकर कौन से मेरा रंस है कौन से की बात कर रेंट्री दे क्लास और काली चुन ट्रेम्बलमेंट दिया होल बा तो ढेर मना बच्चे में ढगल बा बधे कोई मल बा तले फसल वंस हरिया सूत्र से पता चला था कि 50 से 100 लोगों की मृत्यु हो गल बा सकल अवकर से ज़्यादा भी हो रहा ढेर मना घायल भी हो रहा वंस और ढेर कोई चीज पागित भी हो गल बा बिजली और पानी की आपूर्ति के काफ़ी नुकसान पहुँचल बा और अस्पताल में काम

0: शुरू हो गल बा त ई जन भूकंप आ रहल काल एकर बाद सुनामी के हालत करल कर रहल और बाद में सुनामी के हालत हटा देवल गल और है जन फिलिपीन है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित यानी कि जन प्लाक टेक्टोनिक पर है फिलिपीन बा वहाँ अक्सर लाटिया थ्रॉम्बली हो रहा है भूकंप जलजला हुई रहा और ये पहली बार नहीं है कि फिलीपींस में भूकंप बाबा की काल नेचुरल क्रामिटी बैला से कोई नहीं सकेला रोके पर हमने अपन सहानुभूति प्रकट कर रहे थे सर परिवार के प्रति जो कोई अपन लेका पति पत्नी कोई लगभग है नेचुरल क्रामिटी में जो भूकंप है बहुत ज़बरदस्त शहर और यूट्यूब पर सब कोई देख रही सर काल से रेजो सोशल पर दिखा थी सर कैसे है जो थ्रॉम देखते हैं फिलीपीन में अलबा कितना कोई की जान घर सब टूट गल बा लेकोल ढक गल बा बाची मौसम गिर गल बा ओहो भगवान ना करी ऐसा प्रकोप को ना देश में आई तो अरे मान ल मान ल हमने को टापू है सर मॉरिशस अब मान ल काल के नहीं स्वीति नहीं करा था ही पर मान ला कि सुनामी आई तो कुछ हाँ करे कि सबसे पहला जो है बोले न सकी ऊंचा जगह में जाए कि तो ऊंचा जगह कैसे घर के ला हो या पेड़ पर अब जो कोई समुद्र के पास सही रहा था सुनामी जो दस्ती समुद्र के पास मारे रहा था और जो नदमी लोग समुद्र के तट पर रह रहे लोग चला अपन घर छोड़ छाड़ के जाके ऊंचा जगह में जाइबा तो दस्ती सुरक्षा में रहा हाँ कि नहीं ऐसा न चला अगला गीत सुनब जा और कहाँ छुपी रानी मोरी किशोर कुमार रमेशर गीतवा गैली हवन बहुत बहुत प्यार के साथ और एगो संगत लाइन पे से मिलब जा हेलो हेलो
1: हेलो नमस्ते
0: नमस्ते तो शुभ नाम
1: सिगुलाम
0: को नाम बोला
1: सिगुलाम
0: सिगुलाम कहाँ से
1: रिमेरे
0: बोल से हाँ तो स्वागत बा बोला भैया
1: एगो गीत डाल दिया
0: हाँ कौन गीत है
1: चला था मुसाफिर मोहलिया रे पिंजवा रे
0: गीतवा के गई लगभग
1: मौका मना दे गए भाई
0: नहीं भोजपुरी गीत है
1: भोजपुरी गीत है बाप
0: फिल्मा के नाम जाने जा
1: फिल्मा के नाम नहीं जाने
0: गीतवा कैसे शुरू होला
1: चला था मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वा
0: चलत चलत खोजत ही है चलत मुसाफिर
1: मोहलिया रे
0: फिमा के नाम है तीसरी कसम सिया हवा भोजपुरी है बस की प्रोग्राम भोजपुरी है अली बोला गीतवा के कर खातिर
1: हमारे सब फैमिली के लिए हमें सिगुलाम
0: सिगुलाम कहाँ रहेला
1: रिविया
0: देख रहे हो और अभी रात के 11 बजे उनके साथ दीबा
1: हाँ
0: जिंदगी में कौन सी करेला भैया
1: अरे हम तो अभी यश हो काम कर रही अपने घर
0: हाँ रमनी के प्रोग्राम सुनेला कैसे बुझा रहा प्रोग्राम
1: तो प्रोग्राम तो सो दी पर
0: ए ता सो स्वीट अरे तो गीत चलिए चलो तो मुसाफिर तुरंत चलाओ थे ठीक बा अरे बाय बाय शुभ रात्रि हाँ मनाडी गई लगभग बोले तो भोजपुरी गीत और हमने की संगत है भूकंप कहाँ पर आलबा फिलीपींस फिलीपींस में आलबा भूकंप आप रे बाप हम तो देख रही था डर लगल कहे कि छोटा छोटा टापू लोग समुद्र में सब मॉरिशस तो समुद्र के पानी से पीती सन चुनती ही सब माप में चारों ओर पानी ही पानी तो हर बार समुद्र के पानी बढ़ ले जाता अब काज नहीं है चिलीर के कौन ची हो सिले बहिरा सत चल अभी सुनम जा कहाँ छुपी रानी और गीता के बाद चलत मुसाफिर ओके बैक टू बैक दुगो गाना

कल और आज में कितना अंतर बा समय के साथ साथ सब कुछ बदल गल बा आगे के खान पान आगे के जीने के तरीका बात करें कि सब कुछ बदला था और आज मॉडर्नाइजेशन में जो है इस टेक्नोलॉजी के युग में सब कुछ ताकि पर चल रहा था ताकि दबाई बा तो लुगा धोता ताकि दबाई बा तो खाना सुखता ताकि दबाई बा तो टिकटॉक पर हुआ ताकि दबाई बा तो रेडियो ऑन सब कुछ बहुत फैसिलिटी से हुआ था ये सब फैसिलिटी आगे नहीं रहल कहे कि आगे के ज़माना में लोग ढेर गरीब रहन सब पर आजकल शिक्षा के दम पे सब कोई आगे बढ़ल बा और सब कुछ बदल बा पॉजिटिवली निगेटिवली भी पॉजिटिव कौन फासों में कि सब कोई के निमन निमन काम बा अच्छा पगा सब कोई अपन अपन गाड़ी में जला काम करे पर निगेटिव जो है आगे सब कोई संगे रहतल आगे जो रहत कहे गरीब रहतल से पर सब कोई संगे रहल पर आजकल सब कोई अपन अपन दुनिया में व्यस्त बा अब जैसे कोई छोकरा शादी कर लग तो ओकर बीबी आल तब बच्चा होल तो ओकर जिंदगी थोड़ा बदल गल और आगे जो रहल तो सब कुछ समय के साथ बदलते जाला एक ही प्रगति प्रोग्रेस बोली रास और जहना समय के साथ चले कि समय के साथ चलब तो अकलमंद बनब जिंदगी में कोनो न कोनो फोगे करब समय के साथ नहीं चलब तो ढेर कुछ खो देब तो का सकब से करे नहीं सकब से कुछ करे कहे कि समय के साथ चेहरा चले की थोड़ा चना एक्सेप्ट हो कि कैसे आगे के बहू और हबी के बहू में ढेर अंतर बा ना आगे जो है सास के आगे पत्यो लोग कपाल में होड़नी डाल के खड़ा रहतलन सा और सास के मुंह पर नहीं ताकतलन सा अभी तो तू जाने ला हमने से हम खिचके नहीं करते हैं पर थोड़ा सच्चाई बोलत है और आगे जब सास जब पहुँची बोली तो पत्यो सुने और आजकल तो क्या बोलब भैया

0: क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास बनेगी, हम तो ईमानदार। पर समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है और आगे के छोके लोग उतना काम नहीं करता, घर पे रहता लंस सास के खुद में देवता राज करके तक घर में सब महिला लोग जरा काम करे, कोनो कोनो महिला लोग घर ही रहेगा पर ढेर कोई काम करे लंस घर में पैसा आने लंस तो ढेर नहीं सब बचाए बना बोल दे भी मुसीबत था भाई। बड़का मामा बड़का मामा के कर पतो या कर पतो या के कर पतो या है गीत। चलिए अभी सुदेश बोजू के गावल गीत इमाम जावी मानी है गीत और खातिर काव्या है गीत और खातिर प्रकाश है गीत और खातिर और अनिकेत पटेल है गीत और नाम साथ में रविश मंडू के उसे गीत होकर माँ बाप होकर भाई और सब परिवार खातिर सावन और जिमी दुखिया गीत तो लोग के नाम तो लोग के माँ के नाम भी राजमन्ना तो सब परिवार स्टीव चिबुक लोंग नानो राजा सुरेश जसवा गीत तोहर खातिर तोहर माँ राजकुमारी खातिर मुकेश गंगा है गीत तोहरों नाम दीपा तिवारी दुखित रहे नन कनाडा है गीत तो कर पति केविन कर बेटा के नाम और सब तिवारी और दुखित परिवार के नाम। और जिधर कोई विदेश में हमने के देखा था टिकटॉक पर और सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन की लहरों पे ताकि गीत लोग के नाम अभी को संगत चावल लाइन पे कॉल से मिल ले जा। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ बात कर रहा हेलो
1: हाँ मैं अमृता
0: अमृता जी तो स्वागत बा
1: पीटों से
0: जिंदगी में कौन सी करेला अमृता
1: Allez,
0: bola, bola, con gitsu.
1: Eta ego git mangti. Kisa noa dan rope la.
0: Ki gitoa ke gai lagba?
1: Lilo matur.
0: Allez, gitoa samay rehi ta chalap sa kaya ke paunch mitra galba. Gitoa ke kar khati? Ke kar khati?
1: Sab Ganesh paliwar khati.
0: ओके जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके नमस्ते
0: शुभ रात्रि। तभी चला बड़का मामा की कहानी सुनब जा।

बड़का मामा बड़का मामा के कर पतो या के कर पतो है वही से मुँह चरावेला कोई की बात नहीं सुनेला और सासू माँ अगर अपन बहू के अपन बेटी की तरह मानी तो पतो भी सास के मालिका मानी अब तू पतो के इतरांजे मंग बताओ हो थोड़ा इतरांजे भी लिखा देखी ना दोनों हाथ बजे रहा मार ताली मार हमारे संगे मार ताली मार दोनों हाथ से थपड़ी बजे रहा भैया तावे तो बोला था शबनी सन के साथ वन वनी श्री बंधु हेलो जी हाय शारीश विकी गणेश नमस्ते वनी श्री बंधु भी हमने के साथ देवथवन और बेशक हमने के संगे जो अक्षय टुका बॉय कैसे भैया नीरुसी सरन गीत तो नाम चली और ये गीत वनीसा खतीर भी चलाओ शिवांश हमने के साथ देवथवन हाय शिवांश तोहर स्वागत बा और अभी आरोगी चाहिए नमस्ते नमस्ते गीतवा गैरक बा मुकेश चेदी हाँ तो राम सलाम करते रहिए जब फजीर के जेब काम करे कोई भेटाल सीमा में या ऑफिस में तो एक राम सलाम करा से तो मुँह छोटा नहीं हो जाए भैया एक राम सलाम कर बा नमस्ते बोल बा तो अच्छा है एक ही बोला ला गुड मैनर्स बन मानिए बोला ला कि कभी कभी दिखे ऐसा जब क्लास में जैसा लड़का लोग बोंजू नहीं बोले रहता नहीं भैया जैसा जो पीना मानिए जबान अपन मानिए कौन प्रोफेसर कौन दर क्लास भेजे बोंजू मिस्यू बोंजू मैडम तो आजकल के लड़का लोग बेचारा नहीं जाने ना का कर भैया कैसन जमाना चला बा चला गीतवा सुने मुकेश शेरी की आवाज़ में नमस्ते नमस्ते शबनी जे गीत तोहर खातिर

नमस्ते नमस्ते नमस्ते बोलते प्रोग्राम के अंत चले जा और बेशक सांझ के 6 बजे से अभी हमने के साथ देवा था बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 11 बजे हो बा और ठीक 11 बजे सुन मजा सुना रिपल और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे रे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने और हमने के तो लोग मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 बजे से 11 बजे रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तड़का प्रोग्राम है लाइव टिकटॉक पेज ऑफ रेडियो मॉरिशस पर सब हमने के देखे काल भी। तो कल तक हमने की इजाजत है अजय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते सलाम। टिकटॉक पर हमने की देख ला रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर हमने की सुन ला बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय गॉड ब्लेस यू नमस्ते शुभरात्रि बाय।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक कुशल मंगल हैं। श्रोताओं, आइए इस मंगलवार की रात में सुनहरे पल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत अभिवादन करती हैं। तो आज हम जीनत अमान की दुनिया में आपको ले चले हैं। उनके गाने, उनकी मूवीज आपको पसंद थी, आज भी पसंद की जाती है, तो एक बार फिर उनके गानों को, उनकी यादों को फिर से ताजा करते हैं।

ग्लैमर, आत्मविश्वास और आधुनिक नारी की एक नई पहचान स्थापित की। उनका नाम 1970s और 1980 के दशक के सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली एक्ट्रेसेस में लिया जाता है। ज़ीनत अमान ने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और अलग अंदाज से हिंदी फिल्मों में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने उस दौर में ऐसे किरदार निभाए जो समय से काफी आगे थे और जिन्होंने महिलाओं की बदलती हुई छवि को पर्दे पर दर्शाया।

19 नवंबर 1951 को जर्मनी में हुआ था। उनके पिता अमानुल्लाह खान एक प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने कई फिल्मों के लिए कहानियां और स्क्रिप्ट्स लिखी। बचपन में ही पिता के निधन के बाद जिनत ने कई चुनौतियों का सामना किया। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और बहुत जल्द अपनी सुंदरता और व्यक्तित्व के कारण लोकप्रिय हो गई। साल 1970 में उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी।

वैसे फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने कुछ छोटी फिल्मों से की, लेकिन असली पहचान उन्हें 1971 में आई फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से। इस फिल्म में उन्होंने जैनिस का किरदार निभाया और उनका गीत दम मरु दम देश भर में बहुत लोकप्रिय हुआ। फिल्म में उनकी अदाकारी को दर्शकों और समीक्षकों ने बहुत सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी मिला। इस सफलता के बाद जिनत अमान बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में शामिल हो गई।

1970s और 80s के दशक में जीनत अमान ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। यादों की बारात, रोटी कपड़ा और मकान, अजनबी, डॉन, सत्यम शिवम सुंदरम, कुर्बानी, दोस्ताना, लावारिस, द ग्रेट गैम्बलर, इंसाफ का तराजू, अलीबाबा और 40 चोर जैसे फिल्मों ने उनके करियर को बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने उस दौर के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया और हर फिल्म में अपनी अलग छाप छोड़ी।

वैसे जिनत अवान की एक्टिंग स्टाइल बहुत ही प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, आत्मविश्वासी और मॉडर्न थी। उन्होंने बॉलीवुड की परंपरागत हीरोइन की छवि को बदल दिया। ऐसे किरदार निभाए जो स्वतंत्रता, मजबूत और अपने फैसले खुद लेने वाली महिलाओं को दर्शाते थे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना प्रभावशाली था कि दर्शक उन्हें देखते ही प्रभावित हो जाते थे। ग्लैमर के साथ साथ उन्होंने गंभीर और भावनात्मक भूमिकाओं में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वैसे फिल्म इंसाफ का तराजू में उनकी अदाकारी इसका एक उत्तम उदाहरण है।

बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं श्रोताओं। वैसे जिनत अमान को उनके योगदान के लिए कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड के अलावा कई अन्य नॉमिनेशंस और सम्मान भी मिले। मिस एशिया पैसिफिक के खिताब जीतना उनके जीवन

की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही। बॉलीवुड में उनका योगदान केवल सफल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरी पीढ़ी की अभिनेत्रियों को प्रेरणा दी कि वे नए और साहसी किरदार निभाने से ना घबराएं।

व्यक्तिगत जीवन में भी जिनत अमान ने कई उतार चढ़ाव देखे। चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी हिम्मत और सकारात्मक सोच ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज भी वे अपनी गरिमा, स्पष्ट विचारों और अनुभवों के लिए सम्मानित की जाती है।

जन्नत अमान का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने ग्लैमर को गरिमा के साथ जोड़ा, महिलाओं के नए रूप को पर्दे पर स्थापित किया और अपनी अदाकारी से करोड़ों दर्शकों का दिल भी जीता। वे केवल एक सफल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा में बदलाव की प्रतीक भी हैं। उनकी फिल्मों, उनके गीतों और उनके यादगार किरदारों को आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा याद रखेंगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: MBC Radio, your music companion.
1: श्री आर डी बर्मन जी हमेशा इंस्पिरेशन उनसे हमने लिया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स बहुत किए लाइफ में, कई इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किए, जैसे 12 स्ट्रिंग गिटार, मादल, बेस गिटार। एक बार इस इंडस्ट्री में म्यूजिशियनों की स्ट्राइक हो गई थी, कोई म्यूजिशियन बजा नहीं रहा था,
2: किसी को गाना रिकॉर्ड करना था। तो देखिए इंस्पिरेशन कैसे काम आती है। पंचम दा ने गाना रिकॉर्ड किया, वो गाना बहुत चला और उसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो उसमें जो म्यूजिक के इंटरलूड्स हैं वो कुछ नहीं है, रिदम चल रहा है, एक आदाब जैसी वॉइस डायलॉग बोलती है, एक इंजन का इफेक्ट दे दिया है और गाना स्मूथली निकल गया। देखिए

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है?
2: क्या है

एक साथ धड़के हैं।